मीडी वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:56 और 45 सेकंड हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक

0: और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। इसके अंतर्गत सुनिए लोबिया की खेती विषय पर दिनेश कुमार सिंह की ये जानकारी।
3: किसान भाइयों, आज हम लोबिया की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है।

0: खेत पूरी तरह से समतल होना चाहिए ताकि खेत में एक समान नमी मौजूद रहे। मिट्टी में जल निकास की भी व्यवस्था होना ज़रूरी है, क्योंकि खेत में पानी लग जाने से एक तो अंकुरण सही ढंग से नहीं हो पाता है और दूसरे यदि जमा हो भी जाता है तो ज़्यादा नमी की स्थिति में फसल की बढ़वार भी सुचारू रूप से नहीं हो पाती। खेत का सही चुनाव करने के बाद उसकी एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके दो जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। बगैर उर्वरकों के प्रयोग के कोई भी खेत तैयार नहीं कहा जा सकता। अतः लोबिया की सफल खेती के लिए 10 से 15 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में, यानी कि 25 किलोग्राम यूरिया एवं 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक के रूप में देना चाहिए। इतना करने के बाद खेत तैयार हो जाता है और फिर काम शुरू होता है बुआई का। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनमें प्रमुख हैं टाइप 5269, टाइप 2 और यूपीसी 4200। इनमें से जो भी प्रजाति मिल जाए लेकर के बुआई करें। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 30 किलोग्राम बीज लगता है। अगर दाने के लिए खेती करना है तो टाइप 2 प्रजाति लेना चाहिए। एक हेक्टेयर में बोने के लिए इसका 30 किलोग्राम बीज लगता है तथा इससे एक हेक्टेयर में 14 से 16 कुंटल दाना मिल जाता है। यह प्रजाति 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। जब अच्छी प्रजाति का बीज उचित मात्रा में मिल जाए तो बोने से पहले इसको शोधित कर लेना चाहिए, पहले थीरम नामक रसायन से और फिर विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से। थीरम की 25 ग्राम मात्रा 10 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए आवश्यक होती है। किसी घड़े में बीज एवं आवश्यक दवा की मात्रा डालकर घड़े का मुंह किसी पॉलीथीन से बांधकर घड़े को अच्छी तरह से झकझोर देते हैं। ऐसा करने से दवा बीज पर अच्छी तरह लग जाती है। फिर राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित कर लेते हैं। 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट पर्याप्त होता है। इसके लिए आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल करके फिर इस घोल को बीज में अच्छी तरह से मिला करके और फिर बुआई करते हैं। दाना व हरी फलियां प्राप्त करने के लिए बीज की बुआई पंक्तियों में ही करनी चाहिए, यानी दाने वाली टाइप 2 प्रजाति की बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर तथा टाइप 5269 जो कि फलियां प्राप्त करने के लिए होती है इसकी बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर चारे अथवा हरी खाद के लिए लोबिया बोते हैं तो बुआई छिटक कर कर सकते हैं। बरसात में सिंचाई की आवश्यकता तो होती नहीं है, हाँ यदि सूखे की स्थिति हो तो एक या दो सिंचाई कर देनी चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद यदि आवश्यक हो तो एक निकाई गुड़ाई भी कर देनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर लोबिया की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोबिया की खेती विषय पर दिनेश कुमार सिंह की ये जानकारी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शिव भक्तन का पकड़े हाथ, शिव संतन के सदा ही साथ। शिव ने है ब्रह्मांड रचाया, तीनों लोक है शिव की माया।

क्या तेरा क्या मेरा सब यही रह जाएगा। भरोसा रख बांसुरी वाले पर, विश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आज शामिल कलाकार थे हरिओम शरण और नंदिनी शरण, संजय तलवार और अनूप चलोटा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु।
1: धर्म की अवधारणा कई संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों का एक मूलभूत पहलू है, जो व्यक्तियों को जीवन में दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है। धर्म को एक व्यक्ति का कर्तव्य या उद्देश्य माना जा सकता है, जो एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए उनके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। इस अर्थ में धर्म एक व्यक्तिगत दिशा सूचक यंत्र है, जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने और ऐसे विकल्प चुनने में मदद करता है जो उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। धर्म को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का पहला कदम ये समझना है कि ये क्या है और ये आपसे कैसे संबंधित है। धर्म आपके उद्देश्य या कर्तव्य की भावना है, जो आपको उन कार्यों और निर्णयों की ओर मार्गदर्शन करता है जो आपके मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप होते हैं। सनातन धर्म में धर्म व्यक्तिगत विकास और आत्म प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अपने धर्म की खोज करके और उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करके आप जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना का अनुभव कर सकते हैं और इस तरह से जी सकते हैं जो आपके प्रति सच्चा हो और आपके गहरे मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हो। जैसे ही आप ये यात्रा शुरू करते हैं, ध्यान, योग या सत्संग जैसी प्रथाओं में शामिल होना और किसी विश्वसनीय शिक्षक या गुरु से मार्गदर्शन लेना सहायक हो सकता है। हालांकि अपने धर्म की खोज करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन

0: चिंतन और अपने मूल्यों और विश्वासों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। धैर्य और दृढ़ता के साथ आप अपने धर्म की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं और इसे सार्थक और संतोषजनक तरीके से अपने जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने धर्म को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये क्या दर्शाता है, तो ये मान लें कि ये समय धर्म को दैनिक जीवन में शामिल करने का सबसे उपयुक्त समय है। प्रथम चरण के रूप में आत्मचिंतन को प्राथमिकता दें। अपने धर्म के संपर्क में रहने और ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित आत्मचिंतन महत्वपूर्ण है कि आपके कार्य और निर्णय आपके मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हों। अपने विचारों और भावनाओं पर विचार करने के लिए हर दिन समय निकालें और इस बारे में ईमानदार रहें कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। अपने धर्म पर विचार करें और पूछें कि कौन से विकल्प आपके उद्देश्य और मूल्यों के अनुरूप हैं। ये आपको अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में मदद कर सकता है, ये जानते हुए कि आप उस चीज के तहत कार्य कर रहे हैं जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है। आप अपने दैनिक जीवन में धर्म को शामिल करके बड़े उद्देश्य, शिक्षा और संतुष्टि के साथ जी सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन में अधिक गहन अर्थ की तलाश कर रहे हों या ऐसे तरीके से जीना चाहते हों जो आपको अधिक प्रामाणिक लगें, धर्म निर्णय लेने और जीवन जीने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान कर सकता है, वो जीवन जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। धर्म केंद्रित जीवन जीने के सबसे संतुष्टिदायक और शांतिपूर्ण तरीकों में से एक माना जा सकता है। ये किसी उद्देश्य और मूल्य के अनुरूप जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे आंतरिक संतुष्टि और खुशी की भावना पैदा होती है। धर्म केंद्रित जीवन अपनाने के अनेक लाभ हैं और इसका व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके लाभ दूरगामी हैं और किसी के समग्र कल्याण पर गहन प्रभाव डालते हैं। अपने उद्देश्य और मूल्यों के साथ जुड़कर व्यक्ति अधिक मानसिक स्पष्टता, मजबूत रिश्ते और बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव कर सकता है, जिससे वो अधिक पूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। सनातन में धर्म मनुष्य के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है और इसे किसी की क्षमता को पूरा करने और आत्मिक संतोष प्राप्त करने के मार्ग के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म में धर्म का तात्पर्य बुद्ध की शिक्षाओं और आत्मज्ञान के मार्ग से है और जैन धर्म में अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान के सिद्धांतों का पालन करना शामिल है। विशिष्ट परंपरा के बावजूद व्यापक संदेश स्पष्ट हैं। जीवन में अर्थ और खुशी ढूंढने में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने धर्म को अपनाकर और अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को जिम्मेदारी और नैतिक रूप से पूरा करने का प्रयास करके हम उद्देश्यपरक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं, दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे, इस विषय पर डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी की ये जानकारी।
2: नमस्कार श्रोताओं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं दांतों के प्रत्यारोपण की और डेंट, उसी को हम लोग कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। और डेंटल इम्प्लांट इसको हम लोग एक तरह से इस समय कहते हैं थर्ड डेंटिशन, मतलब तीसरा दांतों का समूह। पहला समूह होता है जो दूध वाले दांत होते हैं, दूसरा समूह जो होता है असली दांत होते हैं, और तीसरा समूह होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल डेंटिशन, थर्ड डेंटिशन, मैन मेड डेंटिशन, इसको कहते हैं कि आदमी ही इस डेंटिशन को बनाता है। अब देखिए, कायदे से तो डेंटिशन या दांत जो है जिंदगी भर के लिए होते हैं, और लेकिन उसमें कुछ न कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं हमारे खान पान की वजह से, उसके स्वस्थ न रहने की वजह से। तो दांत तो फिर हम लोगों को इंडिकेशन होता है कि हम लोग दांत निकालते हैं, ऐसे समय पे फिर हम लोग इम्प्लांट लगाते हैं, डेंटल इम्प्लांट। अब डेंटल इम्प्लांट के ऊपर जब असली फिक्स दांत लगा देते हैं तो उसमें प्रिकॉशन भी हम लोगों को लेना पड़ता है। और प्रिकॉशन क्या होता है, जैसे कि दांत तब निकालते हैं तो हम लोगों को कोई नशा पानी नहीं करना होता होगा, क्योंकि अगर आप उसमें कोई सुरती, पान, तंबाकू इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये डेंटल इम्प्लांट में बहुत सहायक नहीं होता है। और

0: कोई स्पेशली स्मोकिंग तो होता है, तो दांत तो उसमें जो मेटल होते हैं, जो दांत अंदर होते हैं हड्डी के, उसके ऊपर दांत लगाए जाते हैं, वो बड़े सक्सेसफुल नहीं, पर हिलने लगते हैं, जैसे दांत नॉर्मल हिलता है वैसे ये भी हिलने लगते हैं। और इम्प्लांट एक तो हमारे खाने पीने का प्रिकॉशन, दूसरा है हम लोगों को लोड, जैसे अब कहते हैं कि दांत एक निकाल दें तुरंत, तो तुरंत एक लगाए जाते हैं, उसको हम लोग अर्ली लोडिंग 1-2 दिन के अंदर हम लोग लगा देते हैं। अगर कुछ दांत होते हैं कि जैसे है होता है कि जो सर डिले लोडिंग कुछ 1-2 महीने के बाद लगाते हैं, और असली जो होता है असली होता है कि 3 से 6 महीने तक दांत अगर नहीं है उसके बाद हम लोग लगाते हैं, और 3 से 6 महीने बाद लगाने के बाद हम लोग पूरा दांत पे लोड देते हैं, तो उसको कहते हैं कि डिले लोडिंग, और प्रॉपर लोडिंग वही होती है। तो उसमें हम लोगों का पूरा फंक्शन, हम लोग दांत का जो चबाने का काम होता है, मुख्य काम दांतों का चबाने का काम होता है। इसके अलावा मुंह में दांतों का रहना और भी ज़रूरी होता है कि इससे सपोर्ट मिलता है हम लोगों के पूरे ऊपर नीचे के जबड़ों का, इसमें हंसने पे चेहरे का सपोर्ट मिलता है। इसमें खान पान अगर हम करें तो जैसे अब दांतों का हम लोग प्रॉपर चबा नहीं पाते हैं, तो हमारे शरीर की कई बीमारियां होती हैं, तो डेंटल इम्प्लांट लगाने से कई बीमारियों का इसमें अपने आप निदान हो जाता है। ये करना है कि बहुत लोड हम लोग नहीं दें, और दांतों को डेंटल इम्प्लांट लगा के एक कुशल दंत चिकित्सक से लगवा के उसकी उतनी ही केयर करें, क्योंकि जो दांतों में बीमारियां होती हैं वैसी बीमारियां डेंटल इम्प्लांट मेटल में भी हो सकती है। मेटल जो इंसर्ट होता है वहां भी मसूड़े चारों ओर इस तरह जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, या थोड़ा सा और कोई हड्डी की बीमारी है तो वहां भी हो सकती है। ये सब चीज देख के हम लोग यही कह सकते हैं कि डेंटल इम्प्लांट जो है बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन इसको उतनी ध्यान की जरूरत होती है जितना और विधाओं में और जो नॉर्मल दांतों में जरूरत होती है। अब एक दांत अब्सेंट हो तब भी डेंटल इम्प्लांट करके उसके ऊपर क्राउन लगाते हैं, जो डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम इम्प्लांट होता है, या दो या तीन जैसे देखो। इसको लगाने से इतना होता है कि हमारी हड्डी जो है ऊपर और नीचे की हड्डी जो है वो सुरक्षित होती है, दांतों का यही काम होता है, वही इम्प्लांट लगाने से भी सुरक्षा होती है। तो असली दांत जो है अगर हम लोग प्रॉपर इम्प्लांट लगवाएं तो 3 से 6 महीने लगते हैं, और 3 से 6 महीने बाद हम उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं जो असली दांत, और वो उसके हम प्रॉपर फंक्शन करते हैं। अब वही जो पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब ये दांत चलेंगे कि नहीं पुराने, ये जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है। देखिए वही हमें बात फिर से कह रहा हूं कि असली दांत भी जिंदगी भर के लिए होते हैं, लेकिन उसके हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए उसको पहले चला जाता है दांत, तो इसको भी हमें पूरा ध्यान रखना है। उसी तरह हमें सफाई करनी है, कोई खान पान नशा ऐसी चीज नहीं करनी है कि इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो, और सुरक्षित अगर हम लोग मुंह का ध्यान रखें तो हमारा दांत हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है।
1: अभी आप सुन रहे थे दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे, इस विषय पर डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी की ये जानकारी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावें, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल

हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। मानस पाठ की इस कड़ी के आज के कलाकार थे जयराम, वाणी जयराम और ए हरिहरम। मीडिया वेव के मीटर पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए एक नज़र डालते हैं आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों पर। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण सुनिएगा रात्रि 10 बजे और संसद समीक्षा का समय होगा रात्रि 8 बजे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथी का शहनाई वादन सुनिएगा सुबह 7:31 पर और ज्ञानेश चंद्र पांडे का शास्त्रीय गायन सुनिएगा दिन में 12:45 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात्रि 9:30 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में चारुलता मुखर्जी के गाए भजन सुनेगा दिन में 12:30 पर। किसान भाई रोजाना की तरह सुनेंगे कृषि जगत शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा होगी आवासीय भवन बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें विषय पर अनूप कुमार सिंह से सतीश कुमार यादव की बातचीत। अलावा इसके खुशबू कुमारी का गाया लोकगीत सुनेगा। इनके गाए लोकगीतों को आप दिन 1:45 पर और सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी सुनेगा शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की बात होगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर। कारगिल विजय साहस शौर्य और राष्ट्रभक्ति इस विषय पर सौरभ त्रिपाठी की सुनेगा वार्ता। अलावा इसके कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण होंगे यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी दिन 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों का प्रभाव विषय पर रश्मि शर्मा की सुनेगा वार्ता। साथ ही साथ कार्यक्रम में होगा गीत संगीत और गृह लक्ष्मी टिप्स। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 12:00 से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रसमाद्री सुनेगा रात्रि 8:15 पर। रसरंग शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत शाम 7:00, शाम 6:10 पर और शाम 5:00। व्हाट्सएप पर आधारित भोजपुरी फिल्मी गीतों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनेगा दिन में 2:30 पर। और पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत सुनेगा दिन में 11:00 से। झंकार का समय होगा सुबह 10:00 और 8:45 पर सुनेगा कार्यक्रम मधुरिमा। और अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7:00 से सुनेगा आपका अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दंड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षा मंत्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गत शनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मंत्रालयैः सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य संपूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रास नगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्ध विराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती। इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: मॉर्निंग बनारस।
1: हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग बनारस। मैं स्तुति एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबका फेवरेट शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। तो बनारस, कैसा चल रहा है आजकल? सावन माह की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं कि नहीं? हम काशी वाले तो इस महीने का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो चलिए बनारस, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज बात करते हैं कुछ हटके। बनारस, वो कहते हैं ना, बहादुरी सिर्फ इस बात में नहीं होती कि हम किसी मुश्किल के सामने डट कर खड़े हो जाएं, बल्कि असली बहादुरी तो तब होती है जब मुश्किलों के बावजूद हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। क्योंकि कई बार ना सिर्फ बहादुर होना काफी नहीं होता। आपके सामने कोई मुश्किल है, आप उसमें बिना सोचे कूद जाएं, तो ये बहादुरी तो

सकती है लेकिन समझदारी नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप हर चीज से डट कर पीछे हटते रहें तो समझदारी होने के बावजूद आगे बढ़ना आसान नहीं होता। शायद इसीलिए जिंदगी में इन दोनों का बैलेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। दिल कहता है ट्राई करते हैं और दिमाग कहता है एक मिनट पहले थोड़ा विचार कर लिया जाए। कभी कोई नया काम शुरू करने का मन करता है, कभी किसी बात का जवाब तुरंत देने का मन करता है और कभी दिमाग कहता है कि नहीं थोड़ा रुक कर सोचते हैं। यानी जिंदगी में हर दिन कहीं ना कहीं करेज और इंटेलिजेंस दोनों साथ चलते हैं। वैसे गुरु अपने बनारस की सुबह में भी ना एक अलग ही इंटेलिजेंस है। हाँ, यह जिंदगी को देखने का नजरिया ही कुछ अलग है। कहीं कोई चाय की दुकान पर बैठकर दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल रहा होता है तो कहीं घाट पर बैठा कोई इंसान बिना कुछ कहे बस सामने बहती गंगा में सुकून ढूंढ रहा होता है। यही तो है अपनी काशी की खासियत। यहाँ लोग जिंदगी को बहुत गंभीर होकर जीने के बजाय थोड़ा मुस्कुराकर, थोड़ा ठहर कर और थोड़ा अपने अंदाज में जीने की आदत बना लेते हैं। लेकिन पता है बनारस, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सोचने और सपने देखने का मतलब ही बदल दिया। जी हाँ, ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और सबसे बढ़कर युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय व्यक्तित्व। डॉक्टर कलाम की कहानी इसलिए भी खास लगती है क्योंकि उनका जीवन किसी एक पहचान तक सीमित नहीं रहा। वो विज्ञान से जुड़े देश का महत्वपूर्ण अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में योगदान दिया, राष्ट्रपति बने, लेकिन इसके बावजूद उनका जुड़ाव सबसे ज्यादा रहा छात्रों से। सभी स्टूडेंट्स के लिए वो आज भी एक प्रेरणा है और शायद इसीलिए डॉक्टर कलाम की तस्वीर के साथ अक्सर एक चीज याद आती है, एक शिक्षक जैसी सरलता। और शायद यही चीज उन्हें बाकियों से अलग बनाती है क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं कि आपके पास कितनी जानकारी है, इंटेलिजेंस शायद ये भी है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। एक साइंटिस्ट से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक का सफर ये कोई छोटी जर्नी नहीं थी। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इतने पद पर रहने के बावजूद उनकी सबसे मजबूत पहचान लोगों के बीच एक प्रेरणादायक इंसान की बनी। डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी का आखिरी समय भी स्टूडेंट्स के बीच बिताया। 27 जुलाई यानी आज ही के दिन सन 2015 को वो स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे, इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। और इसीलिए हर वर्ष 27 जुलाई को देश उन्हें याद करता है, एक साइंटिस्ट के रूप में, एक प्रेसिडेंट के रूप में, एक टीचर के रूप में और एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने की वजह दी। इसी तरह करेंगे बनारस और भी बहुत सारी बातें। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी वाणी, आकाशवाणी।

वेलकम बैक बनारस। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं अपने शहर बनारस का हाल समाचार। सावन माह 2026 में श्री काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इस बार प्रवेश व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाया गया है। जी हाँ, मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 7 प्रमुख प्रवेश मार्ग निर्धारित किए हैं, जिनके माध्यम से बाबा के दर्शन कराए जाएंगे। सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा जांच अनिवार्य होगी, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन की सुविधा मिल सके। इस वर्ष सावन के दौरान लगभग 70 से 80 लाख श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। मंदिर प्रशासन द्वारा जारी व्यवस्था के अनुसार श्रद्धालु 7 प्रवेश मार्गों से श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश कर सकेंगे। गेट नंबर 4 काशी द्वार मार्ग 4B, नंदू फेरिया प्रवेश द्वार, सिल्को गली प्रवेश मार्ग 4A, रुंडीराज प्रवेश मार्ग, सरस्वती फाटक प्रवेश मार्ग और भैरव द्वार प्रवेश मार्ग। इन सभी मार्गों को भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे अलग अलग दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं का दबाव एक ही स्थान पर ना पड़े और दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रहे। आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम और उससे जुड़े प्रवेश मार्गों का कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। इतने बड़े क्षेत्र में बैरिकेडिंग, कतार प्रबंधन, सुरक्षा जांच और श्रद्धालुओं की आवाजाही की व्यवस्था की गई है, जिससे अत्यधिक भीड़ होने पर भी दर्शन प्रक्रिया प्रभावित ना हो। मंदिर प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार विगत वर्ष सावन माह के दौरान लगभग 63 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि सावन 2026 में ये संख्या 70 से 80 लाख के बीच पहुंच सकती है, जो अब तक के सबसे बड़े आंकड़ों में शामिल है। इस वर्ष सावन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को श्रद्धा, सेवा, सुरक्षा और सुगम दर्शन उपलब्ध कराना है। हाँ जी बनारस, तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने दर्शन व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले शिव भक्तों को बिना किसी परेशानी के बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ मिल सके। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि मंदिर के सभी प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा जांच अनिवार्य रहेगी। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो निर्धारित प्रवेश मार्गों का ही उपयोग करें, सुरक्षा जांच में सहयोग करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, जिससे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षा और व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराए जा सके। आगे आपको बताएं बनारस की कारगिल विजय दिवस के अवसर पर BHU कृषि विज्ञान संस्थान स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन छात्रावास में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वाराणसी हेल्प ग्रुप के सहयोग से आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर के दौरान कुल 61 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान शिविर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन छात्रावास, बाल गंगाधर तिलक छात्रावास और विश्वविद्यालय के अन्य संकायों के विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास की छात्राओं ने भी स्वैच्छिक रक्तदान कर सामाजिक सरोकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। प्रतिभागियों के उत्साह और सहयोग से 61 यूनिट रक्त का सफलतापूर्वक संग्रह किया गया। आयोजन के दौरान कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी वीरता और बलिदान को स्मरण करते हुए भारत की ऐतिहासिक विजय को सम्मान पूर्वक याद किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि एक यूनिट रक्त कई जरूरतमंद मरीजों के जीवन की रक्षा कर सकता है। उन्होंने युवाओं से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान

रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस पर रक्तदान करना देश के वीर सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के साथ साथ मानवता की सेवा का भी श्रेष्ठ माध्यम है। रक्तदाताओं और स्वयं सेवकों के लिए फल, हल्का नाश्ता, स्वयं पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के समापन पर सभी रक्तदाताओं को वाराणसी हेल्प ग्रुप और छात्रावास प्रशासन की ओर से प्रमाण पत्र, स्टील की बोतल और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों ने युवाओं को देश प्रेम, महामना मदन मोहन मालवीय के आदर्शों और समाज कल्याण की भावना को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। इसके साथ ही साथ बनारस आपको बता दें कि जैसे मैंने आपको कहा कि सावन में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ अत्याधुनिक तकनीक का भी उपयोग कर रही है। जी हां, श्रावण मास के दौरान काशी में जल, थल और नभ तीनों स्तरों से निगरानी की जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सहित प्रतिबंधित क्षेत्रों को ड्रोन, टेडर्स ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरा और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन प्रणाली के जरिए पूरे शहर और मंदिर क्षेत्र पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इसके अलावा बनारस आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने रविवार को कैंप कार्यालय में राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी आयोजित कर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित विवेचनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। साथ ही आपको बताएं कि पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी विवेचना को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए, प्रत्येक मामले की जांच निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो और कोई भी विवेचना 30 दिनों से अधिक लंबित ना रहे। इसके लिए नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में लंबित गैर जमानती वारंट के निष्पादन की समीक्षा करते हुए 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अभियान के दौरान वंचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और प्रतिदिन उसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। समीक्षा बैठक में न्यायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर भी विशेष बल दिया गया। पुलिस आयुक्त ने ई समन, ई नोटिस और ई वारंट का 100% निष्पादन सुनिश्चित करने और तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ई साक्ष्य पोर्टल पर डिजिटल साक्ष्यों को समय पर अपलोड करने और प्रत्येक प्रकरण में साक्ष्यों की समुचित संधारणा और उपयोग को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही बनारस भारत विकास परिषद काशी शाखा द्वारा आयोजित सेवा और सांस्कृतिक सप्ताह 2026 के अंतर्गत रविवार को दुर्गा कुंड स्थित श्री संकट मोचन मंदिर में आराधना भक्ति का संगम नामक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को समर्पित इस आयोजन में भगवान श्री संकट मोचन के श्री चरणों में मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान हो उठा और श्रद्धालु देर तक भक्ति रस में सराबोर रहे। भजन संध्या का शुभारम्भ भारत विकास परिषद काशी शाखा के सदस्यों द्वारा भगवान श्री का संकट मोचन की सामूहिक आरती के साथ किया गया। इसके बाद परिषद के सदस्यों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु भजनों के साथ झूमते और प्रभु भक्ति में लीन नजर आए। शाखा अध्यक्ष सौरभ जैन ने मेरी चौखट पर चलकर आज श्री राम आए भजन की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को राम भक्ति में डुबो दिया। वहीं बरका जैन, डॉक्टर श्वेता सिंह, शिल्पी खन्ना, संगीता रस्तोगी और रश्मि शाह ने सामूहिक रूप से श्री राम की गली में तुम आना भजन प्रस्तुत किया। इसके अलावा सपना बहल ने मंगल मूर्ति राम दुलारे और राजेंद्र मेहरा ने लोकप्रिय भजन बम बम बोल रहा है काशी प्रस्तुत किया, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारत विकास परिषद काशी शाखा सेवा, संस्कार, संस्कृति और समर्पण की भावना को
समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती रही है।

परिषद उन चुनिंदा सामाजिक संस्थाओं में शामिल है जिन्हें श्री संकट मोचन मंदिर में भजन संध्या आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार। इसी के साथ अब मुझे यानी स्तुति को दीजिए अनुमति, मिलूंगी आप सबसे फिर एक नए दिन फिर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आस पास वालों को भी खुश रखिए। टाटा बाय बाय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, ये आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में काम करेगा ये विशेष कार्यबल।
1: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश विदेश के लोगों से साझा किए अपने विचार। कहा रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इटावा और मैनपुरी में किया विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आयोग निदेशक तपन बेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा।
2: हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित

0: करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है।
2: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
2: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में हुए वृहद पौध रोपण का भी उल्लेख किया।
2: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहाँ एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है।
1: प्रधानमंत्री ने बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार चाय का जिक्र करते हुए कहा कि इस चाय ने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है।
2: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई।
1: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश में हुए वृहद पौध रोपण का मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। वहीं बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी का प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करने पर ग्रुप की एक महिला सदस्य ने प्रसन्नता जताई।
3: जो प्रोडक्ट्स हैं विदुर हर्बल टी और या विदुर से जुड़े हुए और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको एक नेशनल मार्केटिंग मिलेगा और उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो हम लोग सभी दीदियां बहुत खुश हैं कि अब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और बढ़ जाएगी, हमारी आजीविका में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगरा से विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1.5 से 3 करोड़ रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर योजना की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों को 1,28,000 शिक्षकों और उनके परिवार के लोगों को लाभ मिलेगा। कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कल ही मैनपुरी में 682 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं और इटावा में 646
4: 4 करोड़ रुपए की

128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं जिले के उझानी रेलवे स्टेशन से कल कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले रेलवे परिसर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि लखनऊ के लिए नई ट्रेन शुरू होने से व्यापारी, मरीज और छात्रों सहित सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भी पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में देश की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कल स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं ऋषिकांत सिंह चानबम ने इन खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। हापुड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के स्याना चौपला के निकट कल देर शाम हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली से बिजनौर जा रहा एक चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और दूसरी ओर से आ रहे एक अन्य चार पहिया वाहन से टकरा गया। हापुड़ पुलिस के अनुसार दुर्घटना में घायल करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में काम करेगा ये विशेष कार्यबल। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश विदेश के लोगों से साझा किए अपने विचार। कहा रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इटावा और मैनपुरी में किया विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथी का शहनाई वादन। राग है नट भैरव।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथी का शहनाई वादन, राग था नट भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के।
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन

0: किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों की गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संदिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और

0: और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट UG प्रश्न पत्र लीक

0: प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
0: The bill has strong penal provisions to deal with

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकणी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने रابطوں को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारत की माया नाज वेटलिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। ऋषिकांत सिंह ने मर्दों के 60 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल आज कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमे को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मसौदे को मंजूरी दी थी ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के सभी अरकान से अपील की है कि वो इम्तिहानात की इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि नौजवान नस्ल की आवाज सुनकर और तलबा के मुस्तकबिल के लिए वजीर आजम मोदी की तरफ से किए गए तारीखी फैसले के बाद वो सभी अरकान पार्लियामेंट से अपील करते हैं कि वो आज बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक रिपोर्ट।
1: इस बिल में पेपर लीक के किसी भी केस से निपटने के लिए सख्त सजाओं पर मबनी शिकायत शामिल की गई है।

0: इस बिल में 7 अहम तरामीम की गई हैं जिनका मकसद कानून लागू करने में खामियों को दूर करना, खुसूसी अदालती निज़ाम कायम करना और फौजदारी मुकदमात में तेजी लाना है। इस बिल में तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए एक सख्त फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है जिसका मकसद 2024 के फ्रेमवर्क में खातिरखा बेहतरी लाना है। रियासती सरकारों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इंतज़ामिया को, सेशन अदालतों को खुसूसी टास्क फोर्स अदालतों के तौर पर नामजद करने के अख्तियार दिए जाएंगे जो मजकूरा कानून के तहत जराइम के खिलाफ खास तौर पर कानूनी कार्रवाई अंजाम देंगी। बिल की शिकों के मुताबिक खुसूसी टास्क फोर्स की अदालतें रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात की सुनवाई करेंगी जिनके लिए लाजमी होगा कि वो फर्द जुर्म दाखिल किए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर अंदर मुकदमे का फैसला सुनाएं। न्यूज डेस्क से कौमुदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इम्तहानात की इस्लाहात के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकणी की क्यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तहानात का निज़ाम काबिले एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डीका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनिता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शकों वाला एक नया बिल पेश करेगी। जनाब मोदी ने मुकाबला जाति इम्तहानात की दयानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया।
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मजबूत बनाएं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से विकसित दरख्शां गांव पर प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। वजीर आजम ने मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क की तामीर में नौजवानों के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि जब नौजवान समाज की निचली सतह पर हकायक से वाबस्ता होते हैं तो सबकी शमूलियत वाली तरक्की की जानिब भारत के सफर को मुस्तहकम बनाते हैं।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
1: वजीर आजम ने विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के बारे में कहा कि ये कदम नौजवानों को तहरीक देने के लिए उठाया गया है ताकि वो मुल्क के सरहदी गांवों का दौरा करें, उन्हें समझें और इस सिलसिले में सरगर्म हो। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में नौजवानों ने जबरदस्त जोश व खरोश जाहिर किया और तकरीबन 3 लाख नौजवानों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया जिनमें 400 से ज्यादा नौजवानों को मुंतखब किया गया है।
2: विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है।

ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज साबिक सदर जमहूरिया और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक दूरंदेश और रोशन ख्याल शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने भारत को एक तरक्की याफ्ता, खुद कफील और मजबूत भारत बनाने का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि मुल्क की टेक्नोलॉजी से मिसाइल तैयार करने तक और भारत के खलाई प्रोग्रामों को नई बुलंदियों तक ले जाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खिदमात को भारतीय साइंस की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। कौम आज साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। उन्होंने भारत के खलाई और मिसाइल के तरक्याती प्रोग्रामों में एक कलीदी रोल अदा किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। उनका 2015 में आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर कलाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के खलाई और मिसाइल प्रोग्राम का मैमार बताया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के यौम तासीस पर सभी फौजी एहलकारों, अफसरों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि CRPF मुल्क को बाइख्तियार बनाने और उसकी सलामती में मुसलसल सरगर्म अमल है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन हमलों का सिलसिला रोके रखा, जिससे तकरीबन दो हफ्ते से जारी फौजी कार्रवाई के बाद एक उबूरी जंगबंदी के बारे में ताजा मुजाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर माइक वॉल्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप सिफारती कोशिशों का मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हालिया हफ्तों में हर सतह पर बातचीत में सरगर्म रहे हैं। ईरानी फौज के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान से खित्ते में जवाबी हमले रोक दिए हैं और जब से अमरीका ने अपनी कार्रवाई बंद की है पिछली दो रातों से कोई हमला नहीं किया गया है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में भी आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, गुजरात खित्ते, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, पंजाब, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम का इम्कान है। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को मुल्क के लिए सोने का पहला तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेट लिफ्टर ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वेट लिफ्टिंग में भारत ने चांदी के भी मजीद दो तमगे हासिल किए हैं। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि प्रीति पवार खवातीन के 54 किलोग्राम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों की क्रिकेट में कल हरारे में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत की तरफ से जीत के लिए 193 रन का निशाना रखा गया था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इससे पहले भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम, हिफाजती इकदाम और अवामी बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा सेहत आम्मा के माहिर और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर कंट्रोल के कौमी मरकज के साथ डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय धारीवाल और एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-2331-4444।

0: इसके अलावा आप अपने सवाल 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या हैशटैग आस्क एआईआर के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये दी खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने इम्तिहान में इस्लाहात पर टास्क फोर्स कायम करने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इम्तिहानी इस्लाहात के लिए आला सतही कमेटी के क्याम का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, नंदन नीलकनी कमेटी की सरबराही करेंगे, हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशां। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर वज़ीर आज़म के बयान की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, खलाई शोबे में निजी शराकत दारों का मुस्बत नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, ट्रंप का अमरीकी फौज को ईरान पर जारी हमले रोकने का हुक्म, दो हफ्तों से जारी जंग थमा, ईरान ने भी हमले रोके। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, प्रहलाद जोशी ने वजारत तालीम का चार्ज संभाला, मल्लाह बहिरे असवद इलाके में काम करने से पहले खसूसी एहतियात बरतें, वजारत खारजा का बयान। गुजरात महाराष्ट्र और उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकानी की सरबराही में आला इख्तियारती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत की मायानाज वेटलिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। इसी के साथ ये खबर।
2: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658
3: 0542227658

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. मधुरिमा प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार। श्रोताओं, ये दास्ता है भारतीय सिनेमा की सबसे जबरदस्त गायिकाओं में से एक कृष्ण नायर शांति कुमारी चित्रा, जिन्हें हम के एस चित्रा या फिर चित्रा कहकर भी संबोधित करते हैं। इनका जन्म 27 जुलाई 1963 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। तो आज की प्लेलिस्ट होगी

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658,
3: 0542227658।

KS चित्रा, इनके अंदर जबरदस्त प्रतिभा है। इनका इसका अंदाजा लगाना कठिन था कि ये आगे चलकर कितने कीर्तिमान स्थापित करेगी। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है और 2021 में पद्म भूषण से। इनको 6 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिले और राष्ट्रीय पुरस्कारों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। KS चित्रा पहली भारतीय महिला रही जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमर्स में सम्मानित किया गया, और ये मात्र भारतीय गायिका थी जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने शंघाई इंटरनेशनल म्यूजिक ऑफ फेस्टिवल में सम्मानित किया।

इन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए, जैसे मलयालम, तमिल, हिंदी। दक्षिण भारतीय व हिंदी भाषा में इनकी गायकी का कोई जोड़ नहीं। यकीनन भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण गायिकाओं में से एक उभरी की यश चित्रा। इन्होंने 25,000 गाने अलग अलग भाषाओं में रिकॉर्ड किया। आप इन्हें जब भी देखेंगे एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ। इंडिया की लिटिल नाइटिंगल इन्हें कहा गया।

इनके जन्मदिन के दिन पर इनको ढेरों शुभकामनाओं के साथ अब आज की मधुरिमा से लेते हैं विदा। नमस्कार।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बाराबंकी और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद का।
1: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विगत दिनों जनपद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा रामनगर के श्री लोदेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा रामनगर और दरियाबाद में 542 करोड़ से अधिक लागत की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर यहां के लोगों को विकास की सौगात दी। इस दौरान लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी विरासत सनातन धर्म की पहचान है। याद रखना, इसी विरासत के संरक्षण, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। इस विरासत के संरक्षण, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विगत दिनों जिला अस्पताल पहुंचकर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान बताते हुए लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। आगामी श्रावण मास मेले की तैयारी के डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक विजय वर्गी ने गत दिनों महादेवा मंदिर परिसर का व्यापक एवं गहन निरीक्षण कर सुरक्षा, निर्माण कार्यों, विद्युत व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं का स्थली जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रवण मास मेले की सभी तैयारियां सेफ्टी फर्स्ट की अवधारणा के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने कहा कि श्रवण मास मेले में श्रद्धालुओं कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र में पुलिस बल की तैयारियां, बैरिकेटिंग, सीसीटीवी निगरानी, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा आपातकालीन रिस्पांस व्यवस्था की पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। प्रत्येक संवेदनशील स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए तथा किसी भी प्रकार की सूचना एवं त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनपद के कटुआ धाम स्थित जगजीवन मंदिर को नया पर्यटन स्वरूप देने की योजना है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास परियोजना के तहत 202.51 लाख रुपए की लागत से यहां पर्यटन विकास कार्य कराए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य सतनाम पंथ से जुड़े आस्था स्थल को विशिष्ट पहचान

दिलाते हुए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि समर साहब बाबा जगजीवन दास जी ने सतनाम पंथ की स्थापना की थी। ये पंथ सत की उपासना, मानवीय समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। इसकी मूल भावना आडंबरों और भेदभाव से परे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सभी धर्मों, पंथों और समुदायों की आस्था का सम्मान करते हुए धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास कर रही है। इसी क्रम में कोटवा धाम में जगजीवन राम मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 150 लाख की राशि जारी कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश के दृष्टिगत संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विगत दिनों रामनगर

0: प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विगत दिनों रामनगर तहसील अंतर्गत सूरजगंज विकास खंड के तेजपुरवा गांव पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ संभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील प्रशासन, सिंचाई विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बाढ़ सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री ने नदी तटबंधों, कटान संभावित स्थलों तथा जल निकासी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। नई दिल्ली में सांस्कृतिक विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में देश भर से 25 यानी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी DDR योगदान कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बाराबंकी की बेटी सिंपी मौर्य ने किया। सिंपी मौर्य को सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुलकर द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सिंपी मौर्य ने 200 से अधिक गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन, संघर्ष और बलिदान की गाथाओं पर गहन शोध कर उन्हें अपने लेखन के माध्यम से दस्तावेजीकृत किया है।
1: बाराबंकी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
2: कौशाम्बी जिले में राज्य मंत्री पशुपालन एवं दुग्ध विकास कृष्णा पासवान ने गौ संरक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गौवंशों का टीकाकरण आवश्यक है। 2,62,400 गौवंशी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। गौवंशों को खुरपका, मुंहपका, एक विषाणु जनित संक्रमण रोग से बचाना है। उन्होंने कहा कि संक्रमण जनित पशुओं को बुखार आता है, मुंह से लार गिरती है, पैरों में छाले पड़ते हैं और चारा खाना छोड़ देता है तो उसे पशुओं के झुंड से अलग कर दिया जाए। वर्षा काल में पशुओं को चारा, दाना, भूसा प्रतिदिन दिया जाए। गौवंशों का ईयर टैग आवश्यक है। राजमंत्री एक पेड़ माँ के नाम मुरतगंज गौशाला में आम का वृक्ष रोपित किया। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमें फल के साथ साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। पौधों का जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। कौशाम्बी जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने महिला उत्पीड़न मामलों की जनसुनवाई की। उन्होंने बताया कि महिला उत्पीड़न के मामलों में दहेज हत्या, घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न में 2 दर्जन से अधिक फाइलों की जनसुनवाई की गई। जिला प्रशासन अधिकारियों को शिकायती पत्रों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कौशाम्बी जिले में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को जागरूक किया गया। जिला अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार पाल ने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को जागरूक किया गया। रासायनिक खाद, बीज और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण संतुलित उर्वरक का प्रयोग करने के लिए किसानों को जानकारी दी गई। मृदा परीक्षण स्वास्थ्य कार्ड भी किसानों को जारी किया गया। कौशाम्बी जिले में संकल्प अभियान के अंतर्गत हर बच्चा स्कूल जाए गांव-गांव भ्रमण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्षा कल्पना सोनकर ने कहा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 100% स्कूलों में नाम दर्ज किया जाए। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क किताबें, यूनिफार्म, जूते, मोजे क्रय करने के लिए अभिभावकों के खाते में धनराशि जारी की गई। शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि बच्चों का प्रवेश कराकर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाए। कौशाम्बी जिले में किसानों को खरीफ फसलों के बीज निःशुल्क वितरित किया गया। उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि किसान ऑनलाइन आवेदन स्मार्टफोन या जनसेवा केंद्र से कृषि विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। किसानों को अरहर, उर्द, मूंग, तिल, सावा, कोदो, रागी, संकुल बाजरा, संकुल ज्वार, काकुन और कुटकी के बीज वितरित किया गया। चायल विकास खंड में 1546, मुरतगंज विकास खंड में 1495, नेवादा में 1898, मंझनपुर में 1713, सरसवा में 2234, कौशाम्बी में 2783, सिराथू में 1978 और कड़ा में 1824 किसानों को बीज वितरित किया गया। कौशाम्बी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सिराथू विकास खंड में साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण साक्षरता अभियान का आयोजन ब्लॉक परिषद में किया गया। पैरा विधिक स्वयं सेवा सतीश सिंह ने बताया कि लोगों को नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन योजना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कानूनी सेवाओं के लिए गरीब बेसहारा लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध है। कौशाम्बी जिले में वृक्षारोपण महायज्ञ दिवस पर कपिवन आश्रम में फलदार आम का पौध मंडलायुक्त ने रोपित किया। मंडलायुक्त समय रोपित किया। उन्होंने कहा कि 39,81,200 पौधरोपण का लक्ष्य जिले को निर्धारित किया गया है। वन विभाग द्वारा 24 लाख, कृषि विभाग द्वारा 7 लाख, उद्यान विभाग द्वारा 3 लाख।

0: तथा पर्यावरण विभाग द्वारा 1 लाख, पंचायती राज विभाग द्वारा 1 लाख, राजस्व विभाग द्वारा 1 लाख, नगर विकास विभाग द्वारा 74,000, पशुपालन विभाग द्वारा 23,000, स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा 19,000, सिंचाई विभाग और जलकर संसाधन एवं रेलवे द्वारा 15,000, लोक निर्माण विभाग द्वारा 14,000, उद्योग विभाग द्वारा 11,000, बेसिक शिक्षा एवं गृह विभाग द्वारा 9,000, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 8,000, नमामि गंगे द्वारा 7,000, सहकारिता एवं शिक्षा विभाग द्वारा 5,000, श्रम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा 2,000 पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में जिला जेल का जिला जज द्वारा निरीक्षण किया गया। जिला कारागार अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कारागार की साफ सफाई, मरीजों का उपचार और बंदियों को भोजन वितरण की एक एक बंदी से जानकारी ली गई। महिला बंदियों से उनके साथ मौजूद बच्चों के खान पान एवं दुग्ध वितरण की जाँच की गई। जिला कारागार में निरुद्ध असहाय बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना दे दें। पहली जानकारी है थानाध्यक्ष देहात मिर्जापुर से प्राप्त। आस्था यादव पुत्री नरेश यादव निवासी हैं ग्राम अघौली पोस्ट हरिहरपुर बिदौली देहात जिला मिर्जापुर। आस्था दिनांक 21 मई 2026 को रात्रि 3 बजे घर से गायब हो गई थी और लौटकर वापस नहीं आई। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है इनकी 14 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, गहरा बदन है। लापता होने के समय इन्होंने गुलाबी रंग की कुर्ती और काला प्लाजो सफेद दुपट्टा ले रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना अध्यक्ष मिर्जापुर को 9454404012 पर सूचित करें।

अगली सूचना है क्षेत्राधिकारी चकिया चंदौली से। यास्मीन पत्नी है मुरसलीन की, निवासी भोड़सर पोस्ट थाना शहाबगंज जनपद चंदौली। यास्मीन दिनांक 7 जून 2026 को रात्रि 12 बजे अपने घर से शौच के लिए बाहर निकली थी और लौटकर वापस नहीं आई। इनके बारे में जानकारी की बातें कुछ इस प्रकार हैं। उम्र है इनकी 30 वर्ष, कद 4 फिट 8 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। लापता होने के समय इन्होंने पीले रंग का सूट और काला नकाब पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या क्षेत्राधिकारी चकिया चंदौली को 9454401619 पर सूचित करें। थानाध्यक्ष चकिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृता पुत्री है रामजन्म मौर्या की, निवासी ग्राम गोपालपुर पोस्ट बसंत नगर। अमृता दिनांक 25 जून 2026 को दोपहर 12:30 बजे घर से कहीं चली गई थी और वापस नहीं आई। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र है 19 वर्ष, कद 5 फिट 1 इंच, रंगोरा है। लापता होने के समय इन्होंने सफेद रंग की कुर्ती, नीचे ब्राउन लोअर और पैर में हवाई चप्पल पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष चकिया को 9454401822 पर सूचित करें।

निवास बयापुर, थाना शहाबगंज, जिला चंदौली। वंदना दिनांक 16 मई 2026 को से अपने घर से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र है 29 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा है। लापता होने के समय इन्होंने साड़ी पहन रखी थी। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना अध्यक्ष साहबगंज को 7880732559 पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। सुनेंगे लखनऊ केंद्र से उर्दू कार्यक्रम, बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: रात कितनी ही तारीख क्यों ना हो, सुबह का सूरज हमेशा एक नई उम्मीद लाता है। इसी पैगाम के साथ रेडियो प्रयागराज मरकज से मैं निकहत सिद्दीकी आपकी रफीके सफर एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम। पुरखलूस आदाब कबूल फरमाएं। सामिन, अदब इंसानी जज्बात का वो आईना है जिसमें हम अपना अक्स देखते हैं, और जब हम बज़्मे अदब को आरास्ता करते हैं तो इसके दो अजीम सुतून हमारे सामने आते हैं, एक है नस्र और दूसरा है नज्म। नस्र जहां हमारे फहमो इदराक को शऊर और संजीदगी का लहजा अता करती है, वही नज्म हमारे दिल की धड़कनों को सुर ताल और तासीर बख्शती है। आज की इस महफिल में हम इन दोनों असनाफ से आपकी समातों को मुअत्तर और शादाब करेंगे। तो सामिन, उर्दू बज्म का बाकायदा आगाज करते हैं नस्र की सदारत से। नस्र यानी वो इजहार ख्याल जो बहर रदीफ और काफिये की बंदिशों से आजाद होकर भी अपने अंदर मानी का एक बेकरा समंदर समेटे रहता है। आज की इस महफिल में नस्र निगारी की नुमाइंदगी के लिए पेशे खिदमत है एक नहायत ही मुनफरिद मकाला जिसका उन्वान है उर्दू में जासूसी नॉवेल निगारों की रिवायत और इब्ने सफी का मुकाम। मकाला निगार हैं जनाब आफताब रश्क मिसबाही। समाद फरमाएं।
2: इंसानी जिबिलत का एक बुनियादी और कदीम तरीन वस्फ तजस्सुस है। कुछ जानने, कुछ खोजने और नादीदा दुनिया के असरार से पर्दा उठाने की यही तड़प जब अदब का लिबास ओढ़ती है तो उसे हम जासूसी फिक्शन या सस्पेंस के नाम से जानते हैं। एक तवील अरसे तक उर्दू के संजीदा अदबी हलकों में जासूसी नावल निगारी को अवामी या बाजारी अदब कहकर नज़रअंदाज किया जाता रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस सिनफ अदब ने करोड़ों कारीन को किताब की समत मोड़ा, उनमें मुताले का ज़ौक पैदा किया और उर्दू ज़बान को घर घर पहुँचाया, वो यही जासूसी अदब है। और जब हम उर्दू जासूसी फिक्शन का नाम लेते हैं तो एक ऐसी अबकरी शख्सियत का नाम जहन के उफक पर उभरता है जिसने उस पूरी रिवायत को बदल कर रख दिया, यानी मोहतरम इब्न सफी। उर्दू में जासूसी फिक्शन का सफ़र अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि उसके नकूश हमारे कदीम दास्तानों में पाए जाते हैं। हमारी क्लासिकी दास्तानों जैसे दास्तान अमीर हमज़ा या तिलिस्म होशरुबा में जो अय्यार होते थे, मसलन उमर अय्यार या अफरासियाब, वही दरअसल हमारे कदीम सुराग रेसा या जासूस थे। चेहरा बदलना, भेस बदलकर दुश्मन के कैंप में घुसना, खुफिया इशारों का इस्तेमाल करना और अपनी ज़हानत से मुहिम सर करना, ये तमाम अनासिर दौर जदीद की जासूसी के ही इब्तदाई रूप थे। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में जब मगरबी अदब के असरात हिंदुस्तान पर पड़े तो जासूसी अदब बाकायदा सिनफ की शक्ल में उभरा। इस दौर में मुतरजमीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तीरथ राम फिरोजपुरी, उन्होंने अंग्रेज़ी के मशहूर जासूसी नाविलों, ख़ास तौर पर आर्थर कोनन डॉयल के शरलॉक ह्यूम्स के

0: कि खुद कफीली थी तो अमान में था, इस्तेकामत के सायबान में था, और अब जरूरत नहीं तो जिक्र नहीं, कि अब जरूरत नहीं तो जिक्र नहीं, कल तलक खूब वो बयान में था, कि कल तलक खूब वो बयान में था, और था मुआफिक हवा का रुख लेकिन, कि था मुआफिक हवा का रुख लेकिन, ऐब कश्ती के बादबान में था, कि ऐब कश्ती के बादबान में था। और मुलाजा फरमाएं कि मुझसे पहले पहुंच गया मुझ तक, कि मुझसे पहले पहुंच गया मुझ तक, जाने वो किसके कारवान में था, कि मुझसे पहले पहुंच गया मुझ तक, जाने वो किसके कारवान में था। और मुलाजा फरमाएं कि हम ही थे जो सबक न ले पाए, कि हम ही थे जो सबक न ले पाए, वरना सब कुछ तो दास्तान में था, कि हम ही थे जो सबक न ले पाए, वरना सब कुछ तो दास्तान में था। और उसके हिस्से जमीन ही आई, कि उसके हिस्से जमीन ही आई, जो ख्यालों में आसमान में था, कि इसके हिस्से जमीन ही आई, जो ख्यालों में आसमान में था। मुलाजा फरमाएं कि वक्त के जर्ब से वो टूट गई, जोम हद से सिवा चट्टान में था, कि जोम हद से सिवा चट्टान में था। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि एक दूजे के गम गुसार थे सब, कि एक दूजे के गम गुसार थे सब, ये चलन पहले खानदान में था, कि एक दूजे के गम गुसार थे सब, ये चलन पहले खानदान में था। और कैसे देता भला जवाब कमर, कि कैसे देता भला जवाब कमर, उसका खत दूसरी जबान में था, कि उसका खत दूसरी जबान में था। मुलाहजा फरमाएं एक गजल का और एक मतला और दो तीन शेर हाजिर कर रहा हूं कि दौरे जफा में खून की तहारत का इम्तिहान, कि दौरे जफा में खून की तहारत का इम्तिहान, हम दे रहे हैं रोज शराफत का इम्तिहान, कि दौरे जफा में खून की तहारत का इम्तिहान, हम दे रहे हैं रोज शराफत का इम्तिहान, और नजरों में रख के अपने बुजुर्गों की जिंदगी। मुलाहजा फरमाएं कि नजरों में रख के अपने बुजुर्गों की जिंदगी, दीजे सद इफ्तिखार कनात का इम्तिहान, कि दीजे सद इफ्तिखार कनात का इम्तिहान। शेर मुलाजा फरमाएं कि सर पर लगा ये जख्म नई बात तो नहीं, कि सर पर लगा ये जख्म नई बात तो नहीं, हर दौर में हुआ है मोहब्बत का इम्तिहान, कि हर दौर में हुआ है मोहब्बत का इम्तिहान। और मुलाजा फरमाए मक्ता कि लेकर कमर तबीयत खुददार आ गया, कि लेकर कमर तबीयत खुददार आ गया, हो जाए अब जहान की दौलत का इम्तिहान, कि हो जाए अब जहान की दौलत का इम्तिहान। एक गजल के एक मतला और चंद शेर मुलाजा फरमाए कि जज्बा बुलंदियों का तो पैदा करे कोई, कि जज्बा बुलंदियों का तो पैदा करे कोई, है आसमां करीब इरादा करे कोई, कि है आसमां करीब इरादा करे कोई। और मुलाजा फरमाए कि है फासले का असल मदावा तो कुर्ब ही, ख्वाबों में ही करीब तो बैठा करे कोई, कि ख्वाबों में ही قریب تو بیٹھا کرے کوئی. اس سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تاکہ امیر شہر نہ غافل ہو شہر سے, کہ تاکہ امیر شہر نہ غافل ہو شہر سے, زنجیر در کو روز ہلایا کرے کوئی, کہ زنجیر در کو روز ہلایا کرے کوئی, اب کتنا اپنے خون کو سستا کرے کوئی. بہت شکریہ.
1: ابھی آپ محظوظ ہو رہے تھے ڈاکٹر قمر عابدی کے کلام سے, اور سامعین, انسانی جذبات کی اسی خوبصورتی کے ساتھ اردو پروگرام کو مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج مقالہ اور کلام کا یہ سفر ضرور پسند آیا ہوگا. جلد ہی ہم پھر ملیں گے ادب کی نئی خوشبو اور نئے لفظوں کے ساتھ. تب تک کے لیے ریڈیو پریاگ راج مرکز سے اپنی میزبان نکہت صدیقی کو دیجیے اجازت میر کے اس شعر کے ساتھ کہ اب تو چلتے ہیں بتکدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اس پروگرام کی پیشکش تھی پردیپ کمار مشر کی. آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے اردو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا. یہ आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है. सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम. पहले सुन लेते हैं यह संदेश.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
2: डायल कीजिए
4: 0542227658.
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658.
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं खुशबू कुमारी. इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं देवी गीत.

0: बिटिसिया के साथ ही समाप्त होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार थी खुशबू कुमारी। इनकी गायकी गीत आप दोपहर 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम झंकार।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
0: झनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, हर कोशिश के बाद भी अगर मंजिल 2-4 कदम से दूर रह जाए, फिर भी अंधेरा मत चुनना। जब कभी चिराग जलेंगे तो रोशनी कुछ दूर तलक जाएगी। मन किया कुछ खूबसूरत बात आपसे साझा करूं, तो चलिए इस खूबसूरत बात के साथ आज की प्लेलिस्ट कुछ बेहद ही खूबसूरत गीतों के साथ

जंगली फिल्म से अभी आपने सुना इस खूबसूरत गीत को लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल लिखे थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अनपढ़ से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजा मेहंदी अली खां हसन का ये लिखा हुआ गीत है और संगीत है मदन मोहन का।

0: अगली पेशकश है फिल्म छोटी सी मुलाकात से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

आप सुन रहे हैं जनकार कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से। आवाज है लता मंगेशकर की, बोल दिए हैं शैलेंद्र ने और संगीत लिखा है शंकर जयकिशन ने।

अगली पेशकश है फिल्म घराना से। रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और संगीत है रवि का।

ससुराल फिल्म से आइए सुनते हैं अगला गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से। रवि की आवाज है, मजरूह के बोल और संगीत ओपी नैयर का।

एक फूल दो माली इस फिल्म का। आइए सुनते हैं अगला गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। प्रेम धवन के बोल हैं और संगीत है रवि का।

फिल्म लव इन टोक्यो से आइए सुनते हैं अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।

यू हंसी जैसे परी, ये सुबह मस्ती भरी यू हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

मेरा सपना हुआ, अजनबी अपना हुआ, सच मेरा सपना हुआ। सारे जहां पे लोचा गए हम, सारे जहां पे लोचा गए हम।

अगली पेशकश है फिल्म हमसाया से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शहीन रिज़वी के बोल और संगीत है ओपी नैयर का।

कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म हम दोनों से आशा भोसले की आवाज है, संगीत है जयदेव का और इसको लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे अनुरोध फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ, रायगढ़ बाबा कुटीर से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, अंजलि, ऋतिका और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश आई है नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी, मदनेश्वर सिंह, अमित कुमार, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरव, अर्पित, हर्षित, लाल बहादुर, जयराम बिंद, विद्या, संध्या और वीरेंद्र पांडे। मुबारकपुर।

चितकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर और हसीना दिलशाद, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, सुरभि शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ये फरमाइशी पत्र है जवानिया रेलवे स्टेशन से देवी दयाल चौरसिया, डीडी चौरसिया, दर्पण कुमार, पवन कुमार और जगमोहन चौरसिया। वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह, हर्षित, पुलकित और दादी जी। छोटी पियरी वाराणसी से काशी प्रसाद सिंह, मदन कुमारी, राधा रानी, पुष्पा, विजय लक्ष्मी और कुसुम। पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह। फरमाइश आई त्रिलोचन घाट वाराणसी से राजेंद्र प्रसाद केशरी, सावित्री रंगोली केशरी और आशुतोष की। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म का गीत। गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत मदन मोहन का था।

और कार्यक्रम का जो अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे, येसुदास और हेमलता की आवाजों में, चितचोर फिल्म का ये गीत है। गीत और संगीत रविंद्र जैन का, और इन दोनों ही गीतों की मिलीजुली फरमाइशें इन सभी श्रोताओं की। धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। स्टेशन रोड बस्ती से जयप्रकाश भारती, नीलेश कुमार, कविता, स्वाति। इसी गीत को सुनना चाहा था, ये अनपढ़ गीत के लिए है। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और शाइना। ये फरमाइशी पत्र छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक। मीरापुर बसही से शगुन यादव, मनीष पटेल, ओपी पटेल, संजय, गोविंद, सनी पटेल, नागेश पटेल, संतोष पटेल और इनके परिवार के सभी सदस्य। जौनपुर से ये फरमाइशी पत्र चंदा चांदनी, आकाश कुमार और इनके मम्मी पापा का। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद।

सहावर टाउन कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका और सुशांत, कच्ची सराय दालमंडी वाराणसी से मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नाजिया रहनुमा, चौरहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, सेराज आलम, मोहम्मद समद, रोजी अलीशा, गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर चौहान, संदेश कुमार चौहान, अनुराग कुमार, अनिल कुमार और बड़क चौहान। ये संदेश है दिनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव, मुस्कान, बरेली से। अगला ये फरमाइशी पत्र है सुनील साठे, लता साठे, शुभम साठे और शुभांगी का, अकोले अहमदनगर से। अहमदाबाद से जतिन मेहता, भालचंद्र बड़के, फुलवा मेहता, विकास और नीलेश। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, छितचोर फिल्म का।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। और आपकी ही पसंद का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे। साथ साथ फिल्म का ये गीत है, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें हैं। गीतकार जावेद अख्तर, संगीत कुलदीप सिंह का। और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, रचिता और चैतन्य मस्कीन। नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह, पिंटू, सुरेंद्र कुमार और जगमोहन साहनी। दसमले चौक परतूर जालना से जयश्री दसमले, शिवानी, अर्चना, आकांक्षा और इनके परिवार के सभी सदस्य। मस्तानपुरा पूर्णा से आनंता भगत, लोचना भगत, अरुणा भगत और चेतन कुमार। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। ग्राम भड़भूजी मध्य प्रदेश, रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश। चंडीगढ़ से यश कुमार वर्मा, सुषमा, ज्योतिका, लोकेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। आलिका डब्बवाली से वसंत सिंह, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। ये फरमाइशी पत्र है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। करौता लोहता वाराणसी से कन्हैया प्रजापति, सरिता, किशन प्रजापति, अनन्या, चंद्रकृष्ण प्रजापति, विनोद कुमार प्रजापति, सीमा, शिवानी, सिमरन और शिवम प्रजापति। हरिपुर झज्जर से प्रदीप वधवा, आशा, गीतेश, मोक्ष, यश, निखिल और खनन वधवा। पंचकुला सेक्टर से आशु, अश्विन, गोविंद, टोनी और इनके मित्रगण। त्रिपुरी पटियाला से मुकेश बाछल, राकेश बाछल, संदीप, अमनदीप, आकाशदीप, मनीषा और जतिन बाछल। सुनिए ये गीत, फिल्म का नाम है साथ साथ।

आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम का अगला गाना तपस्या फिल्म से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजें हैं, गीतकार एम जी हशमत और संगीत रविंद्र जैन का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। धनबाद से प्रभात रंजन प्रसाद, शोभा रंजन प्रसाद, रितेश रंजन प्रसाद, स्वाति और प्रतिभा रंजन प्रसाद। चांडूर बिस्वा तालुका नांदूरा बुल्डाना महाराष्ट्र से नारायण भाऊ, रक्षाताई, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक, मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। फरमाइश है।

DLW वाराणसी से शिल्पा, रीमा, रिशु, सीमा, प्रीति, छोटी और मिठी की, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप, केशव पटेल और सरला प्रकाश, और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा।

स्वीकार किया मैंने। ये नाम था फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़, गीतकार निदा फाजली, संगीत उषा खन्ना का, और पसंद आप सभी श्रोताओं की। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, शुभम जायसवाल और शिवम जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, राजेश, अवधेश और डिंपल जायसवाल, स्टेशन रोड जमानिया से आशुतोष, अभिनव, दिलीप और दुर्गेश जायसवाल, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा और हनुमान बोड़खे, रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, सविता, स्वाति माखीजा और इनके परिवार के सभी सदस्य, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, और सुरेवारी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर।

लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का गीत। गीतकार वर्मा मलिक। पसंद आप सभी श्रोताओं की यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और इनके परिवार के सभी सदस्य, मेहर नगर उमरखेड़ से अभिजीत गोहानकर, सरिता वैशाली, शैलेश गोहानकर, सुमित कुमार, सिद्धांत गोहानकर, अस्तुपुरा मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद, ईदगाह मच्छरहट्टा वार्ड रामनगर से लंबे बाबू नौशाद, लखू बेलाल, शमा सुगन, नाहिद जरीन और बाबू अंसारी, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, और संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, डॉक्टर शहनाज, शकील अहमद, इस्लामुन निशा और इनके परिवार के सभी सदस्य। और अब अगले गीत की तरफ चलते हैं।

तुम्हारे लिए। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार नक्श लायलपुरी, संगीत जयदेव का था और आवाज लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर की ही आवाज में अब आप सुनेंगे रेशमा और शेरा फिल्म का गीत। इन दोनों ही गीतों के लिए फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। रजानगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी, अजीज अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, अनीश अहमद अंसारी, शकील अहमद अंसारी और सुनील रस्तोगी। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, मोपका भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा, बलवंत कुमार, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति और अतुल, प्रमीलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से, राम सकल चौधरी, सूरज शिवम सत्यम आकाश और इनके परिवार के सभी सदस्य मौनी बाबा धाम चोचकपुर गाजीपुर से, ग्राम सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार और गजेंद्र कुमार चंदन, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी, डुमरांव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अहमद। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा, फरमाइश है अमरपुर छत्तीसगढ़।

से रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी और दिशा श्रीवास्तव, विद्यानगर पदली वैजनाथ से मास्टर आरजी फड़, विजय धनंजय, गणेश ऋषिकेश, अर्चना और प्रतीक्षा, ये फरमाइश आई एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा की। और ये पत्र है मस्तूरी ग्राम मचहा छत्तीसगढ़ से राजकुमार पटेल, गोमती पटेल, धनय कुमार पटेल और टीकेश पटेल। रेशमा और शेरा फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

रेशमा और शेरा फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी रेडियो हमसफर अंजना झा के साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी, हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है, इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी, ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं, धन्यवाद साहेब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीशोरी, पूजा और पायल कुमारी
0: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद।

0: संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर है मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं कि बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
1: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।

0: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
1: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
0: वो उन्हें मार डालता था। वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
2: नाथ,
3: महात्मा,
2: प्रभु,
3: महात्मा,
2: प्रभु,
4: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
5: वहाँ अंगुलीमाल है।
4: हाँ प्रभु।
5: वो बहुत बड़ा डाकू है।
6: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
5: ना जाएं।
6: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
7: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहाँ?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत।
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ ठीक है।

0: तुमको जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते? जी।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
2: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
5: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
5: 1935 में

मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही

0: उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुल्के, आपका स्वागत है।
4: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
4: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
4: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
5: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
4: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
5: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
6: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
4: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
6: जी जी,
4: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
6: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
4: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
6: जी,
4: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
6: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
4: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
6: जी।

0: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
0: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
0: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
3: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
0: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
2: महान शब्द

0: शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: चेतना
2: और फैजान के साथ फिमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
8: 0542227658।
4: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भजन। कलाकार हैं चारुलता मुखर्जी।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं चारुलता मुखर्जी। इनकी आवाज़ में आप सुनिए कबीर दास की रचना

ये था आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थी चारुलता मुखर्जी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायन। कलाकार हैं डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे। राग है वृंदावनी सारंग। तबला संगति कौस्तुभ सिंह के।

0: प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698, जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना और

कार्यक्रम विवरण। पहले आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे। संसद समीक्षा का समय होगा रात्रि 8 बजे का। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 का। आज शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम, जिसमें आवासीय भवन बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। इस विषय पर अनूप कुमार सिंह से सतीश कुमार यादव की बातचीत के साथ ही किसान भाई सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगी खुशबू कुमारी। इन्हीं के गाए लोकगीत आप दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवा साथी अपना युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और इसके साथ ही साथियों को सुनवाएंगे वार्ता, कारगिल विजय, साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति। वार्ताकार होंगे सौरव त्रिपाठी। बहनों के लिए उनका गृह लक्ष्मी कार्यक्रम लेकर आएंगे दिन 1:15 पर, जिसमें सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों का प्रभाव, इस विषय पर बहनें सुनेंगी रश्मि शर्मा की वार्ता। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम का समय होगा दिन 2:30 का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी गीत, जो कि व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 5 बजे। शाम 6:10 पर शाम 7 बजे रसरंग कार्यक्रम में सायं 7:31 पर और रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, और अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार, गुड़िया जिनके पिता का नाम मुन्नू चौहान है, ये निवासी हैं तेंदुई थाना सकलडीहा जनपद चंदौली की। गुड़िया 11 जुलाई 2027 से लापता हैं। ये 11 जुलाई 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 23 वर्ष, लंबाई 4 फुट 5 इंच, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। अगर आपको गुड़िया के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थाना अध्यक्ष सकलडीहा चंदौली को सूचित करें, और सूचना के लिए नंबर है 9120115540। नंबर एक बार फिर से सुन ले, 9120115540। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त सूचना के अनुसार, मुस्कान गुप्ता जिनके पिता का नाम है शिव पूजन गुप्ता, ये निवासिनी है जफरपुर थाना अली नगर जनपद चंदौली की। मुस्कान गुप्ता 11 जुलाई 2026 से लापता हैं। मुस्कान गुप्ता के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 21 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा गोल और इनकी लंबाई है 5 फुट 2 इंच। अगर आपको मुस्कान गुप्ता के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थाना अध्यक्ष अली नगर चंदौली को सूचित कर सकते हैं, और सूचना के लिए नंबर है 8887868187। नंबर एक बार फिर से सुन ले, 8887868187। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:10 होने वाले हैं। इलाकाई खबरें आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से।

0: चार पहिया गाड़ी से टकरा गया। हापुड़ पुलिस के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले नेस्त दर्जन से जायद अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महकमा मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मशरकी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरियासना बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने से बदायूं में दरियाए गंगा के आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो चुके हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों के बाद,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: नमस्कार सखियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी और मैं हूं आपकी रेडियो सखी शीला।
5: और मैं हूं आपकी अपनी ही रेडियो सखी प्रज्ञा। तो स्वीकार करिए सबसे पहले शीला और प्रज्ञा का प्यार भरा
4: नमस्कार।
5: और शीला, कहते हैं ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, यानी जीत और हार का पहला मैदान हमारे विचारों में होता है।
4: सही
5: और है। इस कारण हमारी जीत और हार का निर्णय हमारी सोच हमारे विचारों में ही तय हो जाता है।
4: हाँ, और हमारी सोच हमारी जिंदगी बदल सकती है।
5: जी,
4: देवी है कि जैसी सोच वैसा जीवन।
5: बिल्कुल।
4: तो इस जीवन को हंसी खुशी के साथ जीना है तो हमें सकारात्मक सोच रखना ही होगा।
5: बिल्कुल,
4: क्योंकि अच्छी सोच का परिणाम हमेशा अच्छा
5: ही
4: होता है।
5: अब देखिए ही ना, हम लोग अपने जीवन में, शहर की जिंदगी में या गांव की जिंदगी में, कितनी भागदौड़ भरी जिंदगी अपनी होती है। चाहे हम प्रोफेशनल्स हों, चाहे हम गृहिणी हों, हम माँ हों, हम दोस्त हों, या ये सारे किरदार हम एक साथ निभा रहे हों, तभी भी हमको हर एक व्यवस्था को उसी रूप में देखना पड़ता है जैसा हम परिणाम सोचते हैं अपने मन में। और हमेशा ये सोचते हैं ना कि हमारा आउटकम, हमारा परिणाम हमेशा अच्छा होगा। तो सकारात्मक सोच ही वो ताकत है जो हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की, कार्य को अच्छे से करने की ऊर्जा देता है।
4: प्रज्ञा, देखिए, जैसे आपने कहा ना कि हर किरदार को हम निभाते हैं, तो अगर इस किरदार, किसी भी किरदार को हम निभा रहे हैं या सारे किरदार को हर महिला, हर व्यक्ति निभाता ही है, तो उस किरदार को निभाने के लिए अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हम सकारात्मकता से लेंगे और उस कार्य को करने में एक संलग्नता दिखाएंगे, तो देखिए वो कार्य बहुत अच्छे से होगा। और अगर उदास होकर करेंगे ना, तो वो चीज होती ही नहीं है और कहीं ना कहीं बहुत, मतलब लगता उसको करने में समय
5: लगता है। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, आज सुबह की ही बात है या हम अपने दैनिक दिनचर्या की ही बात करें, किसी एक आम बात को ले लेते हैं कि जब सुबह अगर हम टाइम से उठे और हमने उठते ही ये सोचा कि आज का दिन के लिए हम अपने ईष्ट को धन्यवाद दें और हम उसको कार्य, जो भी हमारे सामने हमने प्लान करके रखा हो, हम वो शुरू कर दें और अच्छे अच्छे मूड के साथ। और अक्सर हम लोग रेडियो ऑन करना नहीं भूलते हैं। सुबह उठते ही मेरा तो हाथ सबसे पहले जाता है रेडियो के बटन पे, भाई उसको ऑन होना और मेरी दिनचर्या का साथ साथ शुरू होना, तो एकदम एक साथ जैसे कहते हैं सोना और सुहागा। ऐसा मेल है हमारा। तो अगर हम ऐसे काम शुरू करते हैं, अगर कोई छोटी बड़ी परेशानी आ भी जाती है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम इसे ओवरकम कर लेंगे। और हमेशा ही ऐसा होता है कि कोई भी दिन शायद ऐसा नहीं जाता होगा कि जिस दिन कोई परेशानी ना आती हो।
4: सही कहा प्रज्ञा आपने। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हर चुनौती का सामना हम विश्वास, धैर्य और उम्मीद के साथ कर सकते हैं।
5: और सकारात्मक सोच का असर सिर्फ हमारे मन पर ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम अपने विचारों को आशा और विश्वास से भरते हैं, तो हम अपना परिवार और साथियों लिए खुद ही प्रेरणा बन जाते हैं और अपनी मुस्कान से हम उनके चेहरे खिला देते हैं।
4: सही बात है। देखिए, अगर हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, या कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है ना कि वो नेगेटिव वाली बातें करती हैं, तो मन उदास सा हो जाता है।
5: हाँ।
4: तो 2-4 बार हम उनसे बातें करते हैं, फिर लगता है कि थोड़ा सा कट जाए।
5: पता है, इसके लिए एक बड़ा अच्छा आइडिया है
4: क्या,
5: कि सबके लाइफ में उतार चढ़ाव, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो जब आप सोने जाएं, अगर

0: ना लिख पाए तो
1: हम्म,
0: अपने से आप अच्छी बातें उस दिन के बारे में 3 अच्छी बातें कहिए, और जब सुबह उठिए तो अपने लिए कहिए कि मैं सक्षम हूं, मैं कर सकती हूँ, और देखिए ना पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी कि
1: क्या
0: आप
1: बात
0: सक्षम हैं,
1: है
0: आप कर सकती हैं, और ये प्रयोग आप अपने साथ जरूर करिएगा।
1: क्या बात है प्रज्ञा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई और मैं भी आज से कोशिश करूंगी
0: जी जी बिल्कुल, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं।
1: हाँ, और अक्सर हम असफलता से घबरा जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। अगर हम हार मान लें तो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो वही असफलता सफलता की ओर ले जाती है।
0: बिल्कुल, तो याद रखिए कि प्रगति की दिशा में पहला कदम हमेशा सकारात्मक सोच होती है, यही सोच हमें आगे बढ़ाती है।

0: कदम हमेशा सकारात्मक सोच होती है, यही सोच हमें आगे बढ़ाती है, यही
1: हम्म,
0: सोच हमें गिरने के बाद उठना सिखाती है। तो मुझे लगता है एक और सकारात्मकता भरा कोई म्यूजिकल ट्रैक अगर हम अपने सारी सहेलियों को सुनवा दें तो वो ओतप्रोत हो जाएंगे इस भावना
1: बिल्कुल
0: से।
1: बिल्कुल, इस कार्य में देर नहीं करनी चाहिए।
0: तो लीजिए ये आया।

0: पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।

डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े

0: प्रज्ञा,
1: जी
0: देखिए हम सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया या नेटवर्किंग का प्रयोग करते समय कई बार हम जब मोबाइल देखते हैं ना, तो बहुत सारे विज्ञापन भी आ जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो कभी कभी उसका आकलन करना भी, हम कुछ उसका फायदा उठाना भी चाहते हैं, कोई चीज़ लेना भी चाहते हैं, तो उसका आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: हाँ, ये तो है। और इसी के बारे में हमारे से बात कर रही हैं रश्मि शर्मा, और बात कर रही हैं सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों के प्रभाव के बारे में। तो
0: और
1: आइए सुनते
0: वार्ताकार
1: हैं।
0: हैं रश्मि शर्मा।
2: महिलाओं को शिक्षा और जागरूकता से जुड़ी बहुत सी जानकारी भी मिलती है। वे अपने अधिकारों, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। हम किसी न किसी रूप में डिजिटल दुनिया से जुड़े रहते हैं। आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का ही माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह शिक्षा, व्यापार, समाचार, रोजगार और सामाजिक संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। हम घर बैठे देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार और मित्रों से जुड़ सकते हैं, नई नई चीजें भी सीख सकते हैं। लेकिन हर सुविधा के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों का महिलाओं और बच्चों पर विशेष रूप से गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यह प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। सबसे पहले हम महिलाओं पर सोशल मीडिया के प्रभाव की बात करते हैं। सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपनी प्रतिभा और विचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक बड़ा मंच दिया है। आज महिलाएं घर बैठे अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। वे अपने बनाए हुए कपड़े, आभूषण, भोजन, कला और अन्य उत्पादों का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकती हैं। बहुत सी महिलाएं प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा, खाना बनाने, सिलाई, कला, स्वास्थ्य, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों से संबंधित जानकारी साझा कर रही हैं। सोशल मीडिया ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के नए अवसर प्रदान किए हैं। आज एक महिला

अपने घर से ही ऑनलाइन व्यवसाय चला सकती है। वह अपने उत्पादों का डिजिटल विज्ञापन भी कर सकती है और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले ग्राहकों तक पहुंच भी सकती है। इस प्रकार सोशल मीडिया महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा और जागरूकता से जुड़ी बहुत सी जानकारी भी मिलती है। वे अपने अधिकारों, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का अवसर भी देता है। यदि किसी महिला के साथ अन्याय होता है तो वह अपनी बात समाज के सामने रख सकती है। इस प्रकार सोशल मीडिया महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन दूसरी ओर सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। आज बहुत सी महिलाएं सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली सुंदरता और जीवन शैली से प्रभावित होती हैं। डिजिटल विज्ञापनों में अक्सर सुंदर चेहरों, महंगे कपड़ों, महंगे सौंदर्य उत्पादों और शानदार जीवन शैली को दिखाया जाता है। इससे कई महिलाओं में अपने रूप, शरीर और जीवन को लेकर असंतोष पैदा हो सकता है। कई बार विज्ञापन यह संदेश देते हैं कि सुंदर दिखने के लिए किसी विशेष क्रीम, मेकअप या उत्पाद का उपयोग करना आवश्यक है। इससे महिलाओं पर अनावश्यक मानसिक दबाव पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर दूसरों का जीवन देखकर भी कई लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर चीज वास्तविक नहीं होती। लोग अक्सर अपने जीवन के केवल अच्छे और खुशहाल क्षणों को ही देखते हैं। इसके पीछे की परेशानियां और समस्याएं उन्हें दिखाई नहीं देती। इसीलिए सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर चीज को वास्तविक जीवन का पूरा सच नहीं समझना चाहिए। अब हम बच्चों पर सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों के प्रभाव की बात करते हैं। आज के बच्चे बहुत कम उम्र से ही मोबाइल फोन, इंटरनेट का उपयोग करने लगे हैं। ऑनलाइन वीडियो गेम्स, शैक्षिक एप्स और डिजिटल सामग्री बच्चों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक का बच्चों के लिए कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है। बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वे नई भाषाएं सीख सकते हैं, विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से बच्चे चित्रों और गतिविधियों के द्वारा बहुत सारी चीजें आसानी से सीख सकते हैं। विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए रंगीन और मनोरंजक डिजिटल सामग्री सीखने को रोचक बना सकती है। डिजिटल विज्ञापन बच्चों को नई चीजों और उत्पादों के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन बच्चों पर डिजिटल विज्ञापनों का प्रभाव बहुत अधिक होता है, क्योंकि बच्चे विज्ञापनों को आसानी से सच मान लेते हैं। विज्ञापनों में खिलौने, चॉकलेट, फास्ट फूड, गेम्स और अन्य उत्पादकों को बहुत आकर्षक तरीके से दिखाया जाता है। बच्चे इन विज्ञापनों से प्रभावित होकर अपने माता पिता से उन चीजों को खरीदने की जिद कर सकते हैं। कई डिजिटल विज्ञापन बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उनमें चमकीले रंग, संगीत, कार्टून और आकर्षक पात्रों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी विज्ञापनों की ओर आकर्षित होता है। इसके अलावा बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग कई समस्याएं पैदा कर सकता है। लगातार स्क्रीन को देखने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, उनका ध्यान कम हो सकता है और वे खेल कूद तथा शारीरिक गतिविधियों से दूर हो सकते हैं। आज कई बच्चे बाहर जाकर के खेलने के बजाय घंटों मोबाइल फोन पर वीडियो देखते हैं या ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। इससे उनके समय का सही उपयोग नहीं हो पाता। अधिक स्क्रीन टाइम बच्चों की नींद और दैनिक दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। बच्चे देर रात तक मोबाइल का उपयोग करते हैं और सुबह समय पर नहीं उठ पाते। इससे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं। सोशल मीडिया का एक और गंभीर प्रभाव है ऑनलाइन सुरक्षा। बच्चों को इंटरनेट पर अजनबियों से बात करने, अपने निजी जानकारी को साझा करने और अनजान लिंक पर क्लिक करने से होने वाले खतरों के बारे में जानकारी नहीं होती। इसीलिए माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में उन्हें समझाएं। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे अपना नाम, पता, फोन नंबर, स्कूल की जानकारी, पासवर्ड और फोटो किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए फर्जी खबरें और गलत जानकारी भी

0: एक बड़ी समस्या है। सोशल मीडिया पर हर जानकारी सही नहीं होती। कई बार लोग बिना जांच किए किसी खबर को आगे भेज देते हैं। इसीलिए हमें किसी भी खबर की जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना और सही होना दोनों अलग अलग बातें हैं। डिजिटल विज्ञापनों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव हमारी खरीदारी की आदतों पर भी पड़ता है। जब हम किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसी प्रकार के विज्ञापन बार बार हमारे सामने दिखाई देने लगते हैं। इससे हमें यह लगता है कि हमें उस वस्तु की आवश्यकता है, भले ही वास्तव में हमें उसकी जरूरत न हो। महिलाएं सौंदर्य उत्पादों, कपड़ों और घरेलू वस्तुओं के विज्ञापन से प्रभावित हो सकती हैं। बच्चे खिलौनों, चॉकलेट, फास्ट फूड और गेम्स के विज्ञापनों से प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हमें विज्ञापनों को समझदारी से देखना चाहिए और हर आकर्षक चीज को खरीदना आवश्यक नहीं समझना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि हम सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों के नकारात्मक प्रभावों को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला उपाय है समय का सही प्रबंधन। हमें सोशल मीडिया के उपयोग के लिए निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए। बच्चों के लिए माता पिता को स्क्रीन टाइम की सीमा तय करनी चाहिए। दूसरा, बच्चों को मोबाइल फोन के साथ साथ किताबें पढ़ने, खेल कूद करने, चित्र बनाने और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, माता पिता को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। यदि बच्चों को परिवार से पर्याप्त प्यार, बातचीत और ध्यान मिलता है, तो वे हर समय मोबाइल फोन पर निर्भर नहीं रहते। चौथा, बच्चों को डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी देनी चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर हर व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होता। पांचवा, महिलाओं और बच्चों को डिजिटल विज्ञापनों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि विज्ञापन का उद्देश्य किसी उत्पाद को बेचना होता है, इसीलिए विज्ञापन में किए गए हर दावे को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापन अपने आप में न तो पूरी तरीके से अच्छे हैं और न ही पूरी तरीके से बुरे। इनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इनका उपयोग किस प्रकार करते हैं। यदि हम सोशल मीडिया का उपयोग शिक्षा, जागरूकता, रोजगार और सकारात्मक संवाद के लिए करते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। लेकिन यदि हम इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं, हर जानकारी पर बिना जांच के विश्वास करते हैं और विज्ञापनों से बिना सोचे समझे प्रभावित होते हैं, तो यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए डिजिटल दुनिया में जागरूकता और सावधानी बहुत आवश्यक है। हमें बच्चों को तकनीक से दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग करना सिखाना चाहिए। महिलाओं को सोशल मीडिया का उपयोग अपनी प्रतिभा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया हमारे जीवन के साधन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। तकनीक हमारे हाथ में होनी चाहिए, न कि हम तकनीक के हाथ में। इसलिए आइए हम सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों का उपयोग समझदारी, सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करें और एक ऐसे डिजिटल समाज का निर्माण करें जहां तकनीक महिलाओं और बच्चों के विकास का माध्यम बने, उनके जीवन पर नियंत्रण करने वाला साधन नहीं।
1: तो सखियों, अभी आप सुन रही थी सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों का प्रभाव। वार्ताकार थी रश्मि शर्मा।
2: प्रज्ञा, देखिए बरसात का मौसम तो वैसे बहुत ही सुहावना होता है।
1: बहुत अच्छा।
2: हाँ, लेकिन थोड़ी नमी होती है, उमस भी होता है और हाँ। नमी के कारण बाल भी बहुत झड़ते हैं।
1: मुझे लग रहा है आप सुबह से कुछ परेशान दिख भी रही है मुझे।
2: सही कहा आपने, तो बाल जब बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो हर किसी को भाई अपने बालों की,
1: मैं खुद परेशान हूँ और हमारी सहेलियां परेशान होगी। तो चलिए इसी बात में आपको कुछ क्विक टिप्स दे देती हूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और हमारी सखियों, आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो जब बारिश का पानी बालों को नुकसान पहुंचाने लगे, यानी अगर आप सीधे पानी में भीगेगी तो आपको पक्का पक्का इस तरीके की नमी पैदा होने वाली चीजें होंगी, ऐसे डैंड्रफ हो जाएगा। तो इसका सबसे बेसिकली आपको घर आकर अपना हेड वॉश करना है, अपने हेयर वॉश करना है, बालों को धो लेना है, जिसके लिए आप माइल्ड शैम्पू और माइल्ड कंडीशनर का जरूर प्रयोग करें। शैम्पू के बाद कंडीशनर अक्सर लोग नहीं लगाते, ऑल्दो आजकल ये सब अडेप्ट होने लगा है धीरे धीरे, मगर अभी भी बहुत

0: लोग अवॉइड करते हैं, मगर इस मौसम में लगा लेना चाहिए।
1: हम्म।
0: और बालों को खुला ना रखें, इनको चोटी में गुथ कर रखें,
1: अच्छा,
0: और
1: उससे क्या होता
0: वो
1: है?
0: उससे फंसेंगे नहीं, टूटेंगे
1: अच्छा,
0: नहीं, उलझेंगे नहीं। तो अगर आपके बाल गुथे रहेंगे तो आपको ज्यादा सुलझाने में उनको तोड़ना नहीं
1: तो ये तो
0: पड़ेगा।
1: बहुत मतलब साधारण सी बात है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते
0: और
1: हैं।
0: बहुत अच्छी बात यह है कि और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज करिए। जैसे आजकल लोग सीरम तो लगाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यानी कि नारियल का तेल, वो भी जो आप कोल्ड प्रेस ऑयल होता है वो यूज करें, तो वो आपके बालों को अच्छा रखता है। समझ में आया कुछ कुछ
1: बिल्कुल
0: आपको और
1: समझ में
0: हमारी
1: आया है। लेकिन
0: सहेलियों
1: बाल गीले हो
0: को?
1: ना, तो गीले बालों में कभी कंघी नहीं करनी चाहिए,
0: ये तो
1: इससे
0: आपने
1: बहुत
0: बिल्कुल,
1: ज्यादा
0: ये
1: बाल
0: बड़ा
1: टूटते
0: मेजर पॉइंट था जो मुझसे मिस हो गया था।
1: हैं हाँ, तो इससे बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मतलब बाल धोने के बाद अच्छे से सुखाएं और चौड़े दांतों वाली कंघी का
0: और
1: प्रयोग
0: नहीं तो फिर
1: करें।
0: आपके बाल कहेंगे इधर चला मैं उधर चला।

0: ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले कि आपकी कोई भी बात आपके हाथ से फिसले। इसलिए अच्छे आचरण जो अक्सर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि थैंक यू बोलिए, सॉरी बोल दिया करिए और अच्छे से बात करिए, अपनी भाषा को शुद्ध रखिए, वो हमें भी याद रखने
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: और अपने नियमित दिनचर्या में स्वच्छता को अपनाइए।
0: बिल्कुल। और
1: और
0: इसी दो बातों के साथ शीला और प्रज्ञा आज के कार्यक्रम में आपसे लेती हैं विदा, तो स्वीकार करिए हमारा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ सखियों की बात, सखियों के जज्बात, गृह लक्ष्मी।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं खुशबू कुमारी। इनकी आवाज में पहले आपको सुनवा रहे हैं सोहर।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं खुशबू कुमारी। इनकी आवाज में आप सुनिए दादरा।

अभी आप सुन रहे थे दादरा। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। कलाकार थी खुशबू कुमारी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद दोपहर समाचार। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता मनु भाकर को कांस्य पदक और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्तु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
5: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।

0: टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
1: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगी, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिका

0: विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगत सिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे, साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई।

0: डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण, पद्म विभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
2: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:23 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम है और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो हमसफर अंजना झा के साथ। तो चलिए आपको बता देते हैं आज के कार्यक्रम में उन फिल्मों के नाम जिनके गीत सुनने के लिए आप हमें संदेश भेजेंगे। हमारी आज की फिल्में हैं सजाई द मांग हमार, सांची पीरितिया हमार, विदेशिया और बलम परदेसिया। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। सजाई द मांग हमार, सांची पीरितिया हमार, विदेशिया और बलम परदेसिया। इन्हीं फिल्मों के गीत सुनने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना है। कार्यक्रम के नियम तो आप जानते ही हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक श्रोता केवल एक बार ही अपना संदेश हम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं कार्यक्रम और आपको सुनवा रही

सजाई द मांग हमार, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और अगला गीत आप सुनेंगे सांची पीरितिया हमार फिल्म से। और उसके पहले बहुत सारी फरमाइशें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये फरमाइश आई है सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। अगला संदेश बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी, अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम, अदीबा, वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, मेहताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। संदेश आया जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गम्भरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ग्राम गहमर पकड़ीरथ हनुमान मंदिर गाजीपुर से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी और शिवनाथ जायसवाल। मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार गाजीपुर से राम सकल चौधरी। ये संदेश आया छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश।

राशि और शीतल। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर, राजेश राकेश और ऋषिता। कोटुआ नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। अगला व्हाट्सएप संदेश छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदिनी कुमारी का ये संदेश है। अगला संदेश दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। ये संदेश आया सुमंत कुमार प्रजापति का हथौज बलिया से। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ग्राम चक फुटही असनाव बाजार भदोई से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार यादव। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मोराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। डांडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर। ग्राम पिपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का संदेश। अगला संदेश आया गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केशरी, पूनम और प्रतीक केशरी। शिवपुर बागान हावड़ा से अब्बास अंसारी, शहबाज अंसारी और बेबी हयात मोइन अंसारी का। अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। और एक और संदेश पढ़ते हैं फिर हम गीत की तरफ चलेंगे। ये संदेश आया अंश गुप्ता, रमा शंकर गुप्ता, रामांता यादव, राजेंद्र तिवारी, लकी गुप्ता और ओम प्रकाश तिवारी। सुनिए ये गीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गाने। आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम है और बहुत सारे संदेश कंप्यूटर स्क्रीन पर। और हम आपको बता दें, अगला जो गीत आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है विदेशिया। पसंद आप सभी श्रोताओं की शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल हनुमानपुर मुगलसराय से, डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल सोनारी जमशेदपुर से, कृष्णा और पूनम जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से, विनोद जायसवाल, पिंकी जायसवाल। ये संदेश आया मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा,

अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। दिलदार नगर ग्राम पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम शाह। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। अंश गुप्ता, सिद्धू गुप्ता, सिद्धि गुप्ता, लकी गुप्ता, अनु गुप्ता, शिवम गुप्ता, शिवांगी गुप्ता, रुद्र गुप्ता और इनके परिवार के सभी सदस्य जौनपुर किराकत से। चोचकपुर गाजीपुर से भास्कर दुबे और भोलानाथ यादव। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। देवकली किराकत जौनपुर से डॉक्टर राजेश यादव, भोलानाथ यादव, गुड्डू सिंह और कमलेश प्रजापति। ग्राम बहुवरा पोस्ट दिलदार नगर गाजीपुर से अक्लू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह। कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री सारंग, ओमनाथ, शिवांग, अदिति और निर्मला त्रिपाठी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है विदेशिया।

गीता दत्त, कौमुदी मजुमदार और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे विदेशिया फिल्म का गीत। और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाएंगे बलम परदेसिया, इस फिल्म का गाना। जितने संदेश आए हैं उन श्रोताओं के नाम हम पढ़ते हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहानकर, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत गोहानकर, अर्जुन गोहानकर, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गोहानकर, सुमित कुमारी ध्वनि और प्रिंस एकांश। ये संदेश आया जौनपुर गोपालपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी, शिवांगी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, बाबा यादव और रामाश्रय तिवारी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश घनेश्वरी वर्मा। ग्राम हांडी खेरा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और ये संदेश आया है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी का। अगला संदेश बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से। और खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप।

श्रोताओं, आप गीत सुनते रहिए। दो संदेश अभी और कंप्यूटर स्क्रीन पर आए हैं, उन श्रोताओं के नाम हम आपको बता देते हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला, और ये संदेश आया दिलदार नगर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, मुसाफिर चौहान और कयूम शाह।

ये था आज का फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी रेडियो हम सफ़र अंजना झा के साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस मीडियम वेव के 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। शाम की 5 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

0: अगला गाना है फिल्म एक फूल दो माली से, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। इस गीत को लिखा है प्रेम धवन और रवि ने, संगीत है रवि का।
1: ये पर

अगली आवाजें आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है एक नजर।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म एक नज़र के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम सुने युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के युवाणी कार्यक्रम में। और मैं हूं आपकी रेडियो साथी आयुषी।
1: और मैं हूं तनिष्का।
0: तो दोस्तों, चलिए आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत से और धमाकेदार गीत के साथ।

0: अनजान ऐप से बचें।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, ये सिर्फ एक खूबसूरत विचार नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए उम्मीद का संदेश है। और ये शब्द हैं उस शख्स के जिन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।
3: दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। आज 27 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ हमारा आकाशवाणी भी उन्हें याद कर रहा है। इसीलिए आइए उनके जीवन के कुछ ऐसे पन्ने पलटते हैं जो हर किसी व्यक्ति को प्रेरित करते हैं।
2: दोस्तों, डॉक्टर कलाम का जन्म सन 1941 में 15 अक्टूबर को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, बड़े सपने देखने के लिए बड़ा घर नहीं लेकिन बड़ा फैसला चाहिए होता है।
3: जी बिल्कुल, तनिष्का, तुमने सही कहा। दोस्तों, सपने देखने के लिए बड़ा घर नहीं, बड़े हौसले होने चाहिए। और यही हौसला बचपन से उनके अंदर था। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वे सुबह सुबह अखबार बांटा करते थे। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों को भी संभाल रहा था।
2: शायद इसी संघर्ष ने उन्हें इतना मजबूत बनाया। विज्ञान के प्रति उनका जुनून उन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक ले गया। फिर DRDO और इसरो में काम करते हुए उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों को नई पहचान दी।
3: और जब अग्नि और पृथ्वी जैसे स्वदेशी मिसाइलों के विकास में उनका योगदान सामने आया, तब पूरा देश उन्हें प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगा। लेकिन इतनी उपलब्धियों के बाद भी उनकी सादगी कभी नहीं बदली।
2: साल 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन सच कहें तो वे सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, वे हर स्टूडेंट के टीचर थे। जहां भी जाते थे, बच्चों से मिलते थे, उनके सवाल सुनते थे और हमेशा कहते थे, बड़ा सोचो और बड़े सपने देखो।
3: और शायद यही वजह है कि आज भी जब युवाओं की जब प्रेरणा की बात होती है, तो सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही नाम याद आता है। उन्होंने हमें सिखाया, हम युवाओं को सिखाया कि सफलता असफलता हार नहीं होती, बल्कि सफलता की तैयारी होती है।
2: आज ही के दिन यानी कि 27 जुलाई 2015 को वे IIM शिलोंग के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। मंच पर अपने पसंदीदा काम यानी कि युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा।
3: आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सिर्फ उन्हें याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके सपनों को भी याद कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि एक युवा का सपना ही देश का भविष्य बनाता है।
2: तो दोस्तों, अगर कभी लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो डॉक्टर कलाम का जीवन याद कीजिए। साधारण शुरुआत से असाधारण मंजिल तक का उनका सफर हमें यही सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और विश्वास से हर सपना पूरा किया जा सकता है।
3: और दोस्तों, इसी प्रेरणा के साथ भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ चलिए सुनते हैं सौरभ त्रिपाठी की वार्ता, जिसका विषय है कारगिल विजय दिवस, शौर्य, साहस और राष्ट्रभक्ति।
4: नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हिंदी विभाग का शोध छात्र हूं। आकाशवाणी के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। आज की इस विशेष वार्ता का विषय है कारगिल विजय, साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति। यह विषय केवल एक सैन्य विजय का स्मरण नहीं है, बल्कि उन अमर वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है, जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर भारत की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा की। कारगिल विजय भारतीय इतिहास का ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो आने वाली प्रत्येक पीढ़ी को साहस, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता रहेगा। भारत का इतिहास वीरता और बलिदानों से भरा हुआ है। इस देश की मिट्टी में ऐसे असंख्य वीरों की गाथाएं समाई हुई हैं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा को अपने जीवन का सर्वोच्च धर्म माना। 1999 का कारगिल युद्ध भी उसी परंपरा का आधुनिक उदाहरण है। यह युद्ध केवल सीमाओं की रक्षा का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारत के आत्मसम्मान और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा का भी युद्ध था। 26 जुलाई को जब हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं,

जो कि उसकी 27वीं सालगिरह भी है, तब हमें यह समझने की जरूरत है कि लगभग 11 हफ्तों तक चली वह लड़ाई क्या थी, एक सीमित सशस्त्र युद्ध या कुछ और। इस जंग की एक आश्चर्यजनक बात यह भी थी कि जब दोनों देशों की सेनाएं लड़ रही थीं, तब भी भारत और पाकिस्तान में पूर्ण कूटनीतिक संबंध कायम थे। सन 1999 की गर्मियों में जब पूरा देश सामान्य जीवन में व्यस्त था, तभी पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों और नियमित सैनिकों ने कारगिल, द्रास, बटालिक और तोलोलिंग की दुर्गम पहाड़ियों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया। उनका उद्देश्य था श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना तथा लद्दाख और कश्मीर के बीच संपर्क तोड़ देना। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता और नियंत्रण रेखा का स्पष्ट उल्लंघन था। भारतीय सेना को जैसे ही इस घुसपैठ का पता लगा, उसने ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया। भारतीय वायुसेना

सामान्य जीवन में व्यस्त था, तभी पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों और नियमित सैनिकों ने कारगिल, द्रास, बटालिक और तोलोलिंग की दुर्गम पहाड़ियों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया। उनका उद्देश्य था श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना तथा लद्दाख और कश्मीर के बीच संपर्क तोड़ देना। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता और नियंत्रण रेखा का स्पष्ट उल्लंघन था। भारतीय सेना को जैसे ही इस घुसपैठ का पता लगा, उसने ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से सेना का अभूतपूर्व सहयोग किया। दुर्गम पर्वतों, बर्फीली हवाओं और शून्य से नीचे तापमान में भारतीय सैनिकों ने जिस साहस का परिचय दिया, वह विश्व के सैन्य इतिहास में अद्वितीय माना जाता है। कारगिल का युद्ध साधारण युद्ध नहीं था। सामान्यतः युद्ध समतल भूमि पर लड़े जाते हैं, लेकिन कारगिल में दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था और भारतीय सैनिकों को सीधी चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना पड़ा। यह स्थिति अत्यंत कठिन थी, क्योंकि ऊपर बैठे शत्रु को रणनीतिक बढ़त प्राप्त थी। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और असाधारण धैर्य का परिचय देते हुए एक एक चोटी को पुनः अपने नियंत्रण में लिया। दरअसल 3 मई 1999 से ही पाकिस्तान सेना ने बैंजो और कुकुरथांग क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी थी। शुरू शुरू में पाकिस्तान ने इसके पीछे मुजाहिदीनों का हाथ बताया था, पर उसकी यह झूठ उस वक्त पूरी दुनिया में उजागर हो गई जब भारतीय इंटेलिजेंस ने जनरल मुशर्रफ की चीन रावलपिंडी टेलीफोन वार्ता को पकड़ा। विश्व भर में उसकी बहुत भर्त्सना हुई। उस टेप से यह स्पष्ट हो गया था कि यह घुसपैठ परवेज मुशर्रफ द्वारा रची गई एक सुनियोजित सैनिक कार्रवाई का हिस्सा थी। द्रास की टोलोलिंग चोटी टाइगर हिल 0.5140.4875 और बटालिक क्षेत्र की अनेक चोटियां भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य की साक्षी हैं। इन चोटियों पर विजय प्राप्त करना केवल सैन्य उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में भी अटूट संकल्प और वीरता की जीत थी। पाकिस्तान के लिए तो यह 1947-1948 के जम्मू कश्मीर युद्ध, 1965 के युद्ध, 1971 के युद्ध के बाद एक और शर्मनाक हार थी, श्रृंखला में चौथी। कारगिल की करारी हार ने पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान के प्रतिपक्ष और उसके पालतू आतंकवादी संगठनों में भारी असंतोष पैदा कर दिया था, विशेषकर उन वर्गों के बीच जो भारतीय सैन्य ताकत के आगे घुटने टेकने के खिलाफ थे, उन कट्टरपंथियों के बीच जो भारतीय सैन्य ताकत को कमतर आंकते थे। कारगिल युद्ध ने भारत को अनेक ऐसे वीर दिए जिनके नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको भारत का बच्चा बच्चा जानता है, उनका यह उद्घोष, ये दिल मांगे मोर, आज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय में जोश भर देता है। उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए अद्भुत वीरता दिखाई और अंततः मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने अद्भुत पराक्रम का परिचय देते हुए अनेक शत्रु चौकियों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा था, यदि अपना शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मृत्यु आ जाए तो मैं मृत्यु को भी मार डालूंगा। उनके जीवन ने इस वाक्य को सत्य सिद्ध कर दिया। उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लड़ाई जारी रखी और दुश्मन की गोलियों की वर्षा के बीच उन्होंने अपने साथियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। राइफलमैन संजय कुमार ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए शत्रु के बंकरों पर कब्जा किया। इन सभी वीरों का पराक्रम भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। जहां कारगिल युद्ध में लगभग 527 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और 1000 से अधिक सैनिक घायल हुए, इन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध किया कि भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय सैनिक किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वहीं इस युद्ध में पाकिस्तान के 4000 सैनिक खेत रहे। यह आंकड़ा स्वयं नवाज शरीफ ने कहा था। इस युद्ध में पाकिस्तान के लिए एक और शर्मनाक बात यह थी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने पेशेवर सेना के कायदे का पालन न करते हुए अपने 249 मृत फौजियों और कई घायलों को छोड़कर भाग खड़े हुए। आखिरकार भारतीय सेना ने घायल युद्ध बंदियों की देखभाल की और मृत सैनिकों को सैन्य परंपरा व उनके धार्मिक संस्कारों के अनुसार दफनाया। कारगिल विजय केवल सैनिकों की विजय नहीं थी, यह पूरे भारत की विजय थी। युद्ध के समय देश के कोने कोने से नागरिकों ने सेना के प्रति अभूतपूर्व समर्थन व्यक्त किया। विश्वविद्यालयों के बच्चे सैनिकों को पत्र लिखते थे, महिलाएं राखियां और शुभकामनाएं भेजती थीं। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने
सैनिक

परिवारों की सहायता की। पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बंधा हुआ दिखाई दिया। यही राष्ट्रीय एकता की हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। राष्ट्रभक्ति का अर्थ केवल युद्ध के समय सीमा पर जाकर लड़ना ही नहीं है। राष्ट्रभक्ति का वास्तविक अर्थ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और देश के विकास में अपना योगदान देने में भी निहित है। एक शिक्षक अपने ज्ञान से राष्ट्र का निर्माण करता है, किसान अपने श्रम से, वैज्ञानिक अपने अनुसंधान से, चिकित्सक अपनी सेवा से और सैनिक अपने युद्ध एवं बलिदान से। प्रत्येक नागरिक का दायित्व राष्ट्र निर्माण में समान रूप से महत्वपूर्ण है। कारगिल विजय हमें यह भी सिखाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तभी राष्ट्र सशक्त और सुरक्षित बनेगा। आज भारत अपनी सैन्य शक्ति, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की मिसाइल प्रणाली, अत्याधुनिक युद्धक विमान, सीमा और संरचना का विकास और सैनिकों के लिए बेहतर सुविधाएं इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। कारगिल युद्ध से प्राप्त अनुभवों ने हमारी सैन्य रणनीतियों और सीमा प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाया है। कारगिल विजय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि शांति तभी सुरक्षित रहती है जब राष्ट्र सशक्त हो। भारत सदैव शांति, सहअस्तित्व और मानवता में विश्वास रखता है, किंतु यदि उसकी संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दी जाती है तो भारतीय सैनिक उसी दृढ़ता और साहस से उसका उत्तर देते हैं जैसा कारगिल में दिया गया था। युवाओं के लिए कारगिल विजय अत्यंत प्रेरणादायक है। आज आवश्यकता है कि युवा अनुशासन, परिश्रम, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को अपनाएं। राष्ट्र निर्माण केवल भाषणों से नहीं बल्कि कर्म से होता है। यदि प्रत्येक युवा अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का संकल्प ले तो भारत विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में और अधिक सशक्त होकर उभरेगा। कारगिल विजय दिवस हमें उन शहीद परिवारों के त्याग का भी स्मरण कराता है जिन्होंने अपने पुत्र, पति या पिता को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। उनके त्याग के बिना यह विजय कभी भी संभव नहीं थी। राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। महाभारी महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां इस अवसर पर अत्यंत सार्थक प्रतीत होती हैं कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिन्ने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये पंक्तियां हमें स्मरण कराती हैं कि राष्ट्र प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जीवन का सर्वोच्च मूल्य है। कारगिल युद्ध के बाद साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता और संगीत में राष्ट्रभक्ति का नया उभार दिखाई दिया। अनेक कविताएं, गीत, संस्मरण, उपन्यास और फिल्में लिखी गई एवं बनाई गई जिन्होंने कारगिल के हीरो की गाथाओं को, कारगिल के नायक की गाथाओं को जन जन तक पहुंचाया। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां आज भी सैनिकों के अदम्य साहस की याद दिलाती हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। ये पंक्तियां राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शक्ति और साहस के महत्व को रेखांकित करती हैं। आज भारत अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। सीमाई सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर युद्ध, दुष्प्रचार और आंतरिक विभाजन जैसी समस्याएं राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती हैं। राष्ट्रभक्ति का आधुनिक स्वरूप केवल हथियार उठाना नहीं है बल्कि ईमानदारी से कर देना, कानून का पालन करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और राष्ट्रीय हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना भी उतना ही आवश्यक है। कारगिल युद्ध ने भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना को भी सुदृढ़ किया। इस युद्ध ने लोगों को एहसास कराया कि स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा सहज प्राप्त नहीं होती बल्कि इसके लिए निरंतर सतर्कता, संघर्ष और बलिदान आवश्यक है। कारगिल के शहीदों की स्मृति हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति सदैव उत्तरदायी रहें। हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाना केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं होता बल्कि उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत का मस्तक ऊंचा रखा। यह युद्ध केवल सैन्य विजय नहीं बल्कि भारतीय आत्मविश्वास, राष्ट्रीय एकता, साहस, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की विजय थी। कारगिल के वीर सैनिकों ने अपने रक्त से यह संदेश लिखा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और उसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान भी छोटा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम राष्ट्रभक्ति को केवल भावनात्मक नारा न माने बल्कि अपने दैनिक जीवन का आचरण बनाएं। राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना में नहीं बल्कि उसके जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत नागरिकों में निहित होती है। कारगिल युद्ध हमें यही संदेश देता है कि राष्ट्रभक्ति किसी विशेष अवसर की भावना नहीं बल्कि जीवन का सर्वोच्च
मूल्य है। प्रिय श्रोताओं, कारगिल विजय का इतिहास हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब राष्ट्र संकट में होता है तब भारत का सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा के लिए

0: आगे बढ़ता है। उनका साहस हमें निर्भीक बनना सिखाता है, उनका शौर्य हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है और उनकी राष्ट्रभक्ति हमें अपने देश के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाती है। आइए इस कारगिल विजय दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और गौरव की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, राष्ट्रीय मूल्यों का सम्मान करेंगे और आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करेंगे। यही कारगिल के अमर शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता के उन अमर सपूतों को विनम्र नमन जिन्होंने अपने रक्त से विजय का इतिहास लिखा। उनका बलिदान युगों युगों तक भारतवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। और सबसे अंत में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। भारत माता की जय। धन्यवाद।
1: धन्यवाद सौरभ, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे वीरों के साहस के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों चलिए इसी पर सुनते हैं एक गीत।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, जब हमारी भाषा में अच्छे शब्द होते हैं तो न सिर्फ हमारी बात अच्छी होती है बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ जाता है।
2: बिल्कुल सही कहा तनिष्का तुमने। और दोस्तों, हमारी एक अलग पहचान भी हमारे शब्द ही बनाते हैं, इसीलिए तो हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं शब्दों का पिटारा, जहां हर रोज हम दो नए शब्द सीखते हैं।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों तैयार हो जाइए अपनी शब्दावली को थोड़ा और समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि नए शब्द सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हमारी सोच को भी नया आकार देते हैं।
2: तो दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का शब्द है अभ्युदय, जिसका अर्थ है उन्नति या प्रगति, और इसके पर्यायवाची शब्द होंगे विकास या समृद्धि। इस शब्द का, इसको अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं, शिक्षा समाज के अभ्युदय की कुंजी है, या फिर कड़ी मेहनत व्यक्ति के अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करती है।
1: और दोस्तों, आज का हमारा इंग्लिश वर्ड है एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट, विच मीन्स वेरी स्किलफुल, क्लेवर एंड एफिशिएंट इन डूइंग समथिंग। हिंदी में बताएं तो निपुण, कुशल या फिर चतुर। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि क्लेवर, डेक्स्टरस या फिर प्रोफिशिएंट। और इसका वर्ड यूसेज हम इस तरह से कर सकते हैं कि द सर्जन वॉज एड्रॉइट इन परफॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स सर्जरी, या फिर शी इज एन एड्रॉइट स्पीकर हु कैन इम्प्रेस एनी ऑडियंस।
2: क्या बात है तनिष्का। दोस्तों, आज के हमारे दो शब्द थे अभ्युदय और एड्रॉइट। और दोस्तों, अब वक्त आ गया है सबसे पसंदीदा सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आज का हमारा सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि हमने आपसे कल क्या सवाल पूछा था, और जिन साथियों ने सही जवाब देकर विनर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है उनके नाम। तो आपसे हमारा कल सवाल था कि हाल ही में रामायण मास को किस राज्य में शुरू किया गया है, जिसका सही जवाब है केरलम। और जिन साथियों ने सही जवाब दिया है उनके नाम है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, चंदा चंदौली से, मुकेश प्रजापति सिगरा वाराणसी से, अंकेश कुमार सिंह ग्राम नखहरा चुनार मिर्जापुर से। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते रहिए।
1: और दोस्तों, हमारा आज का सवाल है कि सारनाथ किस राज्य में स्थित है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा आज का सवाल है सारनाथ किस राज्य में स्थित है। तो आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं हमारी इंस्टा आईडी youth वाराणसी पे, या फिर हमारी ईमेल आईडी youth@vns.gmail.com। तो जाइए फटाफट से अपना फोन उठाइए और हमें जवाब दीजिए।
2: तब तक इंजॉय करिए इस गीत को।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
0: ओ
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: दोस्तों कैलेंडर की हर तारीख अपने साथ कोई ना कोई कहानी लेकर आती है, और ऐसे ही 27 जुलाई भी एक ऐसी ही तारीख है जो विज्ञान, इतिहास, सुरक्षा और दुनिया की कई अहम घटनाओं की गवाह रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इतिहास में आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी।
5: तो दोस्तों पहले बात करते हैं 27 जुलाई 1939 की। तो इस दिन भारत को सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CRPF की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पुलिस के रूप में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद यानी कि सन 1949 में इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF रख दिया गया। आज यह देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी के रूप में से एक है।
4: और दोस्तों आज ही के दिन 1940 को वार्नर ब्रदर्स की एनिमेटेड फिल्म अ वाइल्ड हेयर रिलीज हुई, जिसमें दुनिया के सबसे लोकप्रिय कार्टून किरदारों में से एक बग्स बनी पहली बार अपने आधुनिक रूप में दिखाई दिया। इसके बाद यह वैश्विक पॉप कल्चर का एक प्रतिष्ठित पात्र बन गया।
5: 27 जुलाई 1921 को वैज्ञानिक फ्रेडरिक बैंकेट और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन को सफलतापूर्वक अलग यानी कि आइसोलेट करने में बड़ी सफलता हासिल की। इस खोज ने मधुमेह यानी कि डायबिटीज के इलाज में क्रांति ला दी, और आज भी करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में इंसुलिन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
4: और दोस्तों इसी के साथ आज ही के दिन 1789 को अमेरिकी कांग्रेस ने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्थापना की। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले संघीय कार्यकारी विभागों यानी फेडरल एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स में से एक था, जिसे विदेश नीति और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को संभालने के लिए बनाया गया था। बाद में 15 सितंबर 1789 को इसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कर दिया गया।
5: बिल्कुल। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अवसर के सूचना पर। तो दोस्तों आपको पता है हर नया दिन अपने साथ एक अवसर लेकर के आता है, और कहते हैं ना कि सही जानकारी अगर सही समय पर मिल जाए तो मंजिल तक पहुंचना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आ गए हैं हम ऐसे ही कुछ अवसरों की जानकारी लेकर। आइए जानते हैं आज की रोजगार संबंधी सूचना।
4: दोस्तों राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड यानी NICL ने असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 500 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 7 अगस्त 2026 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
5: तो जिन भी दोस्तों को आवेदन करना है तो बता दें कि आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना आवश्यक है, और आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.nationalinsurance.nic.co.in पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए अब आपको सुनाते हैं एक सुंदर गाना।

0: दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना की, जो बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना।
1: दोस्तों, हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़े। लेकिन कई बार आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस सपने के बीच कई रुकावटें आ जाती हैं। ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतरीन बचत योजना है जो बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करती है।
0: इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर खाता खोला जा सकता है। यह खाता किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है।
1: इस खाते में हर वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम राशि जमा की जा सकती है। इस पर सरकार समय समय पर आकर्षक ब्याज पर प्रदान करती है, जिससे छोटी छोटी बचत भी समय के साथ साथ एक बड़ी राशि में बदल जाती है।
0: इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बेटी की उच्च शिक्षा और भविष्य की

0: आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही यह परिवारों में बचत की आदत को भी बढ़ावा देती है।
1: प्रिय श्रोताओं, यदि आपके परिवार या आसपास किसी के घर में छोटी बेटी है तो उन्हें इस योजना की जानकारी अवश्य दें। आज की छोटी बचत कल आपकी बेटी के बड़े सपनों को साकार कर सकती है।
0: और दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं आयुषी
1: और मैं तनिष्का,
0: लेते हैं आपसे विदा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश कैल गेल। पहला स्थगन के बाद सदन का कार्यवाही फिर से शुरू भइले पर कार्मिक लोक शिकायत आ पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत कैले।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं।
0: विधेयक पेश कैल गेले के दौरान विपक्षी सदस्य नीट मुद्दा पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन में पुलिस के कथित कार्रवाई पर चर्चा के मांग करत हंगामा कैले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के अपील के बावजूद हंगामा जारी रहले पर सदन का कार्यवाही स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डारे बदे विपक्ष को आलोचना कैले हैं।
2: मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य छात्रन के भविष्य के सुरक्षित रखल हो। एगो रिपोर्ट।
3: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ए बीचे सर्वोच्च न्यायालय परीक्षा पेपर लीक के मुद्दा पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के ढेर बल प्रयोग के आरोपन से जुड़ल कई गो याचिका पर

0: बिहने सुनवाई कईले पर सहमति जतवले हवे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आ न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना का पीठ विरोध प्रदर्शन के दौरान घाही पुलिस कर्मियन के परिजनन के याचिकों पर सुनवाई कईले का फैसला कईले हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में नौजवानन के संबोधित कैले। वहां के कहने की विकसित भारत के निर्माण में देश के नौजवानन का भूमिका सबसे खास हो।
1: आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: यह कार्यक्रम में 403 नौजवान प्रतिभागियों में प्रदेश के जौनपुर का रहवैया आशीष सोनियो शामिल भइल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर योगी का पाती साझा करत आवे वाला 29 जुलाई के पड़ी रहल गुरु पूर्णिमा त्योहार के लेके अपन विचार साझा कैले हमें। वहां के कहने की गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार गुरुजनन के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता और सम्मान जतौले का मौका हवे।
2: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मनीषा एवं सनातन संस्कृति में गुरु को साक्षात परम ब्रह्म माना गया है। श्री योगी ने कहा कि गुरु शिक्षा ही नहीं देते, जीवन को दिशा भी देते हैं। गुरु स्वयं ज्ञान का आलोक है जो शिष्य को अज्ञान रूपी तम से निकालकर सत्य संस्कार और प्रकाश के पथ पर अग्रसर करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि अपने गुरुजनों का सदैव स्मरण रखें, उनके दिए आदर्शों को जीवन में उतारें। श्री योगी ने कहा कि इससे लोगों का विकास सुनिश्चित होगा तथा विकसित प्रदेश का मार्ग भी तभी प्रशस्त होगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: संत कबीर नगर जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र में कुर्थिया चौराहा के लगे आज भी नहीं एगो बेकाबू गाड़ी के सड़क किनारे बनल टिन शेड में घुस गईले से चार जने का मौत हो गई। ये दुर्घटना ओ समय भइल जब खलीलाबाद से बस्ती के ओर जा रहल एगो तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होके टिन शेड में घुस गये। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
3: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शीर्ष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शीर्ष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा। रात्रि 10 बजे सुनिएगा आपसे मिलिए। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा शहनाई वादन। कलाकार होंगे पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथी। शाम 6:30 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत। इस कार्यक्रम में आवासीय भवन बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें, इस विषय पर इंजीनियर अनूप कुमार सिंह से संतोष कुमार यादव की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही सुनिएगा खुशबू कुमारी का गाया हुआ लोकगीत। रात्रि 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे गैर फिल्मी गीत और गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। शाम 7:31 पर रसरंग और रस माधुरी का समय होगा रात्रि 8:15। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे शाम 6:10 और शाम 7 बजे। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए कल यानी दिनांक 28 जुलाई सन 2026 दिन मंगलवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 7:31 पर और दोपहर 12:45 पर सुनिएगा पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर

12:30 पर रुचि मिश्रा के गाए हुए भजन सुनिएगा। शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें मछलियों की उचित देखभाल कैसे करें, इस विषय पर डॉक्टर व्यामदेव पांडे से बातचीत करेंगे सुधीर कुमार श्रीवास्तव। साथ ही लुत्फ उठाइएगा मोहन सिंह यादव और साथी के गाए हुए लोकगीत का। इन्हीं के गाए हुए लोकगीत आप सुन सकेंगे 9:50 और 1:45 पर भी। दिन के 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया, जिसमें आंगनबाड़ी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, इस विषय पर रमिता तिवारी से बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 5:15 पर हमारे युवा श्रोता अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी, जिसमें आकर्षण होगा आज की बात, क्या आप जानते हैं, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और गीत संगीत। 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में विषय होगा आम की बागवानी, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना 6:10 पर। 6:35 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का विषय होगा जल जनित रोग, कारण और समाधान, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर राजेश जैन। 6:40 पर श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ, गुड मॉर्निंग बनारस 7:00 और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार 10:00 और व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का समय होगा दिन के 11:00। तो ये थी हमारी केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शीर्ष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया है फिल्म आ गले लग जा से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। गीत के बोल लिखे हैं अनवर सागर ने, संगीत है अनु मलिक का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: हि सः स्वर्णपदकम् आत्मसात् कृतवती। अपरत्र पेरिस ओलंपिक स्पर्धायाः पदकविजेत्री मनुभास्कर प्रतिस्पर्धायां निर्णायकं शूट ऑफ जित्वा 28 लक्ष्यवेधैः कांस्य पदकम् अर्जितवती। नवदिल्ल्याम् अद्य 22तमायां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धायाः विधिवत शुभारंभो जातः। स्पर्धायाः उद्घाटन समारोहं संबोधयन्ती दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रावोचत् यदेषा राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता सर्वेषां कृते प्रेरणास्रोतः वर्तते। इयं सहभागिदेशानां मध्ये परस्पर संबंधान् सुदृढीकर्तुं सहायिका भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने कृषि जगत।

0: पंचो राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: लाली बहन,
1: हाँ सत्तू भैया,
0: अरे कह कुल रुपनी उपनी करा गल्लू के अभी बचल है।
1: ले ये जानत हुआ खेती गृहस्थी का काम कब ओराए ला नाही, मने आज करा करत रहा दिन भर, भर दिन कमोए नाही और रात, आ खेत भी तापन उतना बड़ है ना, आ जानत हुआ एकरे संगे संगे पड़ोसिन का भी लेके हम काम बैठ गई है, तो
0: ओहो
1: चलते हा कुल आ गावत बजावत तो ही में काम होत रहे।
0: भाई, काम के का बात कहलू तो देखा, अब तो जे भैया रोपनी कर ले ले है, अब सोहनी का शुरुआत करे जाता कि भाई खर पतवार भी निकलत हैं खेत में, तब ओहू के साथ सुबेरे कर, फिर दोपहरिया में जो और घरेलू काम है, भाई बहन लोग हैं तो भाई बहन लोगों के भी तमाम काम है, भैया लोगों के भी बाजार और भी जोन काम है वो करत होंगे। लेकिन देखा, जब हमने का खेती करे नहीं जाना लाली बहन, तो भाई वो खेती में आगे का दूरदृष्टि रख के और ये सोच के चले नहीं जाए कि भाई आवे वाला समय में उमे फसल जैसे जैसे बढ़वार हुई, जैसे जैसे तैयार हुई, तो ओकरी बदे हमनी का कुछ ना कुछ विधि से ओकर उपचार, ओकर देख रेख, ओकर रख रखाव बदे हर चीज़ का तैयारी करत रह नहीं जाए।
1: बिल्कुल सही बात कहत हुआ सत्तू भैया, संगे इहो देखल जाला कि मौसम जौन अपने अनुकूल अगर रही, जैसे अब शुरू में तो दऊ इतना मनसायल रहलन कि बुझाए कि ए घड़ी धान का फसल बहुत हुई, लेकिन आज का घाम देख के तो बुझात रहला कि का दऊ का मनसा है बुझे में नहीं आवत है, आ सुरक्षा का बात कैला है ना, तो भाई दऊ तो सुरक्षा करिए हमनियों के करे के होला।
0: बिल्कुल करे के हुई, और ये जान ला कि ज्यादा से ज्यादा अपने हाथे में सुरक्षा है लाली बहिन, और ये समझ लेना कि हमने के खेती करे वाला मनई है, और जब खेती करे वाला मनई ना कहल जाओ कि सोच के विचार के आगे का जुनूस ले के चलेला, तो देखा ओके कई गो तमाम जानकारी रखे के भी होला, तमाम जानकारी लेवे के भी होला, और अब तो इतना सुख सुविधा हो गई है जानकारी प्राप्त कैला का लाली बहन, हमनी के अपने रेडियो के भी माध्यम से देनी जा, चाहे टीवी या कहल जाओ कि मोबाइल फोन, अब तो हर जगह ही है, वैज्ञानिक भैया लोग भी किताबी में छाप छाप के आवत है। लेकिन जब हमने का फसल का बुआई या फसल अब बोवे नहीं जा खेत में न लाली बहन, तो ये जान लग कि ओकर रख रखाव को जो हम बात करते नहीं है बचाव का, तो भाई ओमे जैविक विधि भी अपनावे के है, और जैविक विधि सबसे सरल और सुचारू अपनी खेती का है, और कहल जाओ कि पुराने जमाने से ही विधि चलत आई है, अब थोड़ा बहुत लोग रसायन की तरफ भी मुड़े लागल हुआ, लेकिन हमने का उम्मीद है कि वो लोग भी फिर जैविक विधि पर आ जाइए।
1: बिल्कुल सही बात कहत हुआ सत्तू भैया, जब फसले में लगे लगेला कीड़ा लगे लगेला, चाहे कौनो तरह का रोग लगे लगेला ना, तो बहुत भैया लोगन पंज भैया लोगन ही सोचेलन कि दवाई डाल के ओके तुरंते दूर कर दे, लेकिन उसे कितना नुकसानी होला
0: बिल्कुल
1: भाई, फसल के भी नुकसानी होला और जे मने वो फसल का फिर उपयोग करी ओहो के नुकसानी, तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे जैविक विधि के द्वारा अगर ओकर सुरक्षा ओकर बचाव कैल जाए तो इमन कौनो दूर आए ना हा कि सब केहू स्वस्थ रही।
0: बिल्कुल, और एमे कुछ करे के ना हो, थोड़ा सा सावधानी रखे के है कि जवन भी बीज तू बुआई करे जात हुआ ओके भाई

0: पहले ही से देख लो कि वो बढ़िया बीज है, ओके जमा के देख लो कि बढ़िया से जम जाता है कि ना। काहे से कि अगर वो घड़ी भी अगर तू लापरवाही कर देला ना, तो जब स्वस्थ बीज ना रही तो स्वस्थ तो जामी ना, और जब जामी ना तो फिर पहले ही से 10 गो दिमाग में रही कि भैया उसमें कहल जाला ना कि जब वो स्वस्थ रही तो स्वस्थ जमी, स्वस्थ ओकर पैदावार हुई। और जैसे वो पहले ही से बीमार रही तो भाई हमेशा तो बीमारे हुई ना, ओकर पौधों भी बीमार हुई, उनमें आगे भी बीमारी लगी। तो देखो वो सबसे पहले तो वो विधि के देख ला कि भैया हमार स्वस्थ बीज है। और बीज बोला के बाद ना अपने खेत में ये जान ला कि जितना हो सके गोबर का खाद, और जब पौधा जम जा तो नीम का खली चाहे लहसुन अदरक का कुल जो पेस्ट बना के लोग अपन छिड़काव करते ना, वो विधि के भी अपनावा। और संगे संगे जो तुहार मित्र कीट हो देखा ओके एकदम सुरक्षित रखे के है, कोनो कोनो हालत में ओकर नुकसान ना हो के चाहे। काहे से कि वो मित्र कीट ही तो के आधा खेती तुहार उहे करा दिया।
1: बिल्कुल सही बात कहत हुआ। देखा इतना जानकारी के बाद पंच भैया लोगन के बतावत हुआ, खेते में विज्ञानी भैया लेके ले जाके दिखावेला सुनावेला। इहे हम सोचे ला कि काहे तो इतना उन लोगन के बुलावेला भाई, जानकारी लेवे बदे। आ जानकारी रही तो सब केहू जागरूक रही। देखा ई कुल जौन जैविक विधि का चीज है ना, ये आप आसानी से घरों में आपके तैयार हो जाए। हिम्मन बहुत आपके मूल्य न खर्चा करे के होई। और जौन जमीन के सुरक्षा का बात कहिला हज भाई, जमीन जब उपजाऊ रही, रोग रहित होई, तबे फसल अच्छा होई।
0: बिल्कुल। और ये जान ला कि समय समय पर ना देखो एगो फेरोमोन ट्रैप एगो आई है, ओकर भी लोग उपयोग करते ना जोन खराब कीट हुआ। जैसे ना कहना आदमी की फतिंगा लग गई हमारी धान की या गेहूं की, जोनी भी फसल के लिए ओकरी पत्ता पर उनमें छेदक हो गई, तो वो फेरोमोन ट्रैप से भी ओकर निवारण कर जा सकेला। या एक आध गो तो ऐसा ऐसा जुन्नुस आ गए कि उनमें जाके जितना कीड़ा मकोड़ा हुआ वो चिपक जाता हुआ। तो देखो जवन कीटनाशक अपनी खेती बदे हुआ तो ओहू बदे भी ऐसा ऐसा आ गई कहलक जुन्नुस कि उसे हमने का ओकर उपचार कर सके नहीं जा, वो कीड़न के मार सके नहीं जा, ओके पकड़ के दूसरी ओर छोड़ भी सके नहीं जा। तो
1: आ
0: भाई
1: एकरे संगे संगे सत्तू भैया फसल चक्र अगर अपनावल जाए।
0: एकदम एकदम बात सही कहलू बहिन कि जवन भी खेती ए समय कैले हुआ अगली खेती के समय भैया ओके बदल दा। कहल जाओ कि बहुत पहले से परंपरागत खेती से भी चलत आई ला कि वो समय भी लोग जौना में गेहूं बोले रहा अगली बार ओके ओमे दूसर फसल बोवा, जौना में धान बोले रहा ओमे कुछ उक गन्ना का या और भी जोन खेती करे के रहे वो करा। तो ई चक्र फसल चक्र का जोन बात कैलू लाली बहन ये तो बहुत बढ़िया बात कैलू है।
1: देखा ई न सोचे कि चाहे कि ढेर का हमार फसल हो, कीटनाशक डाल दें, चाहे उर्वरक शक्ति ओकर बढ़ावे बदे तरह तरह का दवाई डाल दें कि फसल हमार तेज के बढ़ जाए। आजकल देखा जैविक फसलन का इतना मांग है ना कि वो अच्छा कीमत पर लोग ले लेते
0: बिल्कुल
1: हुआ।
0: कहल जाओ कि अरे 2 गुना 3 गुना कीमत मिल जाता हो, और लोग बाजार में ओके जाके खोजत हो कि भाई अगर जैविक विधि से कोनो अनाज है, वो विधि से खेती कैल कोनो अनाज है तो ओके हमके 2 पैसा अधिको देवे के होई, तो हम दे के वही अनाज के खाई, वही अनाज के घरे ले जाई। तो भाई ओकर बाजार में बहुत कहल जाओ कि मांग है। तो भैया जितना हो सके जैविक खेती पर ही चलल जा, और जैविक खेती कैला से हमने के आगे भी तो फायदा है, हमने की जो जमीन को उर्वरा शक्ति है वो बनल रही, अपने पर्यावरण के बचाव रही। हाँ, और हमने के सबसे बड़ा बात है कि लागत कम आई।
1: एकरी साथे साथे जौन बहुत मुख्य बात हो तो बतावल भूल गई
0: का
1: तू,
0: हो
1: वो ई है कि जौन जवानी का स्वाद है ना, वो जौन तू जैविक खेती से फसल में पैबा ना, वो औरों कोनू से नाही पैबा।
0: वाह का बात कहलू लाली बहिन। अब कहम ना कि अपनी पंचेती में और बात बत कही कल जी, लेकिन है कुछ सने से उ भैया उनके सुनावल जा ओकरे बत कही हो।
1: बिल्कुल
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: सत्तू भैया,
1: हाँ भाई,
0: देखा जानकारी के बात हमन बतियावे शुरू कैली है, अंत तक बतियावल जाए। एक ठे दिमागे में बात आवत है कि देखा हम लोगन तनी तनी पैसा जब जोड़ के रखीला, तो सबसे पहले घरे का जोन घरैतिन रहली न, उ सोचे लेन कि एक ठे रहे का ठेकान हो जाए
1: बिल्कुल।
0: आ उहो आपन हो जाए। हाँ, तो आज पंच भैया लोगन के इहे पर बतकही सुनवाई जा कि आवासीय भवन के निर्माण में कौन कौन बात पर ध्यान देवे के चाहिए। ए विषय पर आपन सत्तू भैया बतेउले हुवन इंजीनियर अनूप कुमार सिंह से, तो पंच भैया लोगन ध्यान से सुने और साथे उनकर घर इतनो।
1: बिल्कुल
2: पंच भैया लोग, देखा हमनी का खेती किसानी करे वाला मनई है यहाँ, और जब मनई खेती किसानी करके दू पैसा का आमदनी करेला, ओमे से काट छाट के दू पैसा बचावेला, घर परिवार का भी लोग इधर उधर कहीं नौकरी पेशा में हुआ, वो लोग भी अपन उनका जरूरत है, जरूरत में से ही कुछ पैसा काट के या कह जाओ कि बचत करके बचा के, और जब अपन घर द्वार का लोग निर्माण करे जाना, तो भाई उस समय कई गो ऐसा चीज होले कि ओकर हमनी के ध्यान रखे के होला कि का हमनी का मकान बनावे जात हैं जा, तो ओमे का का चीज का जरूरत हुई, का का सामग्री लागी, कैसे ओकर निर्माण कर जाए। तो ये एगो कहीं ना कहीं हर परिवार का, हर एक मनई का एगो सपना होला, और वो सपना के अगर कोई निर्माण करे जात है तो ओमे विशेष रूप से का का सावधानी रखे के चाहिए। यही पर आज विशेष बतकही हम करब इंजीनियर अनूप सिंह से कि आवासीय भवन के निर्माण के समय का का बात का ध्यान रखे के है। तो सबसे पहले इंजीनियर साहब, आपका हमनी के कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
2: इंजीनियर साहब, आप सबसे पहले हमारी किसान भैया लोग के ये बताई कि अगर वो लोग अपने मकान का निर्माण करे जाते हुए तो वो कोना कोना बात का विशेष रूप से ध्यान रखा, ये बारे में इतनी बताई।
1: देखिए, सबसे पहले तो किसान भाइयों के प्रणाम। देखिए, किसानों को घर बनाना ना एक बहुत बड़ा सपना होता है। छोटे बजट के किसान होते हैं, उनके लिए घर का बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो जिसके लिए कभी कभी ना किसान घर तो बना लेते हैं, लेकिन बेसिक चीजों को ना वो छोड़ देते हैं, जिसमें उनके पैसे का बड़ा नुकसान हो जाता है।
2: अच्छा, ऊ का चीज।
1: जैसे कि बोला, जैसे दस्तावेज हो गए, दस्तावेज अगर आपने चेक नहीं किया है, कहीं पुश्तैनी जमीन है किसी की, कहीं है, कहीं विवाद है, किसी सरकारी जमीन पे आपने कब्जा करके बना रखे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि दस्तावेज के जांच कर लिया जाए।
2: अच्छा, तो उक दस्तावेज के जांच कैसे लोग करें?
1: देखिए, सबसे पहले दस्तावेज कहते तो लोकल, जैसे आप जाके कोर्ट में अपना पेपर जो रजिस्ट्री का पेपर भी है तो दिखा सके नहीं, या फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी है वो एरिया के, जैसे कि बनारस के बात करें तो VDA बा, तो अपन पेपर के जांच जरूर करा ली हो जा, और कराने के बाद जब पेपर अगर सही हो तभी ओपर भवन निर्माण करी, अन्यथा ना करी ओपे।
2: अच्छा, तो मतलब कि दस्तावेज का बढ़िया से ध्यान रखे के हुई।
1: हाँ, बहुत
2: अच्छा,
1: जरूरी।
2: मान ली कि दस्तावेज का ध्यान लोग रखना, जाके अपन हर जगह से जांच करा चुकना, तो उकरी बात का जमनी भूमि पर उनके बनावे के है, तो वो भूमि का परीक्षण भी करावे के चाहिए उन लोग के।
1: देखिए, दस्तावेज अगर सब कुछ क्लियर हो जाता तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है भूमि परीक्षण।
2: अच्छा,
1: भूमि परीक्षण में ये चीजें आती हैं कि कभी कभी भूमि दलदली हो जाती है, या फिर बलुई हो जाती है, या फिर टर्माइट से पूरा भरा हुआ हो जाता है, तो एमा बहुत जरूरी है कि भूमि को परीक्षण करा लिया जाए। भूमि का परीक्षण होने के बाद ही जो बाकी का निर्माण कर जाओ।
2: अच्छा, कभी कभी ईद भी देखे क्या होला कि कोनो भूमि बहुत गड्ढा है, लोग वहां भी निर्माण करावे ना, तो का ओकर भी वो लोग जांच करावे कि पहले से और भी गड्ढा हो रहा हो सकेला, या ऊपर ऊपर भी करावल जा
1: ना
2: सकेला?
1: ना, देखिए, गड्ढा अगर बा पहले से तो ओपर भी कंस्ट्रक्शन हो सकेला, निर्माण कराया जा सकता है, लेकिन ओकर बेसिक ध्यान देना होता है कि गड्ढा ज्यादा ना हो, रिक्वायरमेंट लोड लेवल से इतना ज्यादा ना हो चला जाए नीचे कि हमको फिलिंग मतलब मकान बनाने से ज्यादा खर्चा हमको के भरवाई में चल जाए। ये वजह से ध्यान में देवे के पड़ी कि ज्यादा गड्ढा ना हो मकान बनाने के समय। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है ना कि ओके भूमि का परीक्षण, जैसे हमने बताया पहले ही चीज की तीन चार चीजें होला, एक तो दलदली ना होके के चाहिए, बलुई बा तो ओमे मिट्टी का कंटेंट कितना बा इकर जानकारी होके के चाहिए, और एकरा बाद सबसे

0: जरूरी टर्माइट पे आवल।
1: तनी बताएं टर्माइट के बारे में
0: देखी
1: भी कहा।
0: मकान बनावे में ना पैसा तो पूरा लग जाला किसान भाई के, लेकिन बाद में क्या होला ना कि जो टर्माइट होला वो लकड़ी पूरा मकान में, लकड़ी के रोल करीबन 30-40% पूरा मकान में होला। और जब हम अगर टर्माइट के ध्यान ना देब तो
1: टर्माइट का है।
0: टर्माइट जो अनबा ना वो दीमक कहल जाला।
1: अच्छा।
0: दीमक बात उस समय क्या होला कि जब लकड़ी जहां पे आई ना वो जब दीमक ज्यादातर से किसान भाई खेतों में ही अपना घर बनावेलन, काहे कि उनकर जमीन ओइजे बा और ओइजा खेत में ही दीमक पावल जाला। तो जब आसपास के दीमक उनके घर में जाई तो घर में जितना लकड़ी रही सब नुकसान कर दी।
1: अच्छा।
0: तो ओकरा खातिर का होला कि जब घर बनाई सबे तो बनाने के पहले जब गड्ढा खोदल जाला तो ओकरा के केमिकल से ट्रीटमेंट कर जाला। वो
1: अच्छा।
0: केमिकल के नाम हम बता देव,
1: हाँ।
0: वो केमिकल के ट्रीटमेंट करावल जाई। ओकरा बाद हर लेयर बाय लेयर ओकर स्टेप कहा कि पहले जब गड्ढा खोदल जाई फाउंडेशन खातिर तो ओकर केमिकल कर जाई, फिर ओकरा बाद जब गड्ढा भर जाई जब प्लिंथ लेवल में मिट्टी भरब जा फिर ओकरा के केमिकल करावल जाई, फिर उसके बाद जब दीवाल में प्लास्टर व्लास्टर के टाइम आवेला तो ओकरा के इंजेक्शन करके मतलब ग्राउट करके वो केमिकल कर जाला।
1: मकान बनाओ से पहले वो मिट्टी में जांच कैला से पता चल जी कि में का दीमक भूमिका है।
0: देखिए ना ये तो ना पता चलेला,
1: अच्छा।
0: लेकिन ये जरूर बा कि जहां आप खेती करतनी वहां पे घर बनाओ देन तो 100% चांसेस बा कि दीमक आई।
1: अच्छा।
0: काहे कि खेतों में नमी होला और दीमक का सोर्स ही नमी बा,
1: अच्छा।
0: जहां नमी बा वो जो दीमक चालू हो जाए।
1: आप मकान की नींव के बारे में बताएं कि अगर लोग मकान बनावे जाते हों तो उकर नींव कैसे वो लोग डालें।
0: देखिए अभी तो जैसे बनारस का जो एरिया बा वो जोन थर्ड में आ गिल बा अर्थक्वेक के जोन में। तो पहले का होत रहा कि हमनी के 2.5-3 फीट फाउंडेशन कर देते रहनी है, जहाँ 2.5-3 पे अपन 1 मंजिला 2 मंजिला घर बना दिया जात रहा। लेकिन जोन थर्ड में अला के बाद ये हो गिल बा कि अर्थक्वेक के यानी भूकंप के चांसेस ज्यादा हो गिल बा, जेकरा वजह से हमनी के अभी फाउंडेशन में कम से कम 4 फीट तक गड्ढा चाहिए। रोड लेवल से या नेचुरल लेवल से 4 फीट हमके गड्ढा करके ही फाउंडेशन बनावे के चाहिए। उसे ऊपर अगर गड्ढा हम रखत नहीं तो ई अपना मकान खातिर रिस्क में बा।
1: अच्छा।
0: काहे कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे परिवार बढ़ी तो ओकर ऊपर मकान बनावत चली आदमी तो वो रिस्क में आ जाला। ऐसे जोन बा कम से कम 4 फीट से ज्यादा गड्ढा होके के चाहिए,
1: अच्छा।
0: मिनिमम 4 फीट।
1: न्यू के ऊपर जो बीम लोग डाले ना उनमें वो लोग का ध्यान रखें।
0: देखिए बीम के बाना पहले तो घर बनावे से पहले हमारा प्लान कर लेवे के चाहिए कि हम कितना एरिया में घर बनाओ तनी।
1: अच्छा।
0: अगर वो एरिया के वो बात जो बा कि ओकर डिजाइन हुई, जैसे डिजाइन में कहे के मतलब ये बा कि अगर कालम फाउंडेशन के हो गए साइज, उसके बाद प्लिंथ बीम के साइज हुई, कहे की प्लिंथ बीम के साइज डिपेंड करी कि का साइज के हम घर बनाओ तनी।
1: अच्छा।
0: अगर नॉर्मल हम 1000 स्क्वायर फीट पे घर बनाओ तनी तो ओकरा पर 3 मीटर बाई 3 मीटर के फाउंडेशन, हर 3-3 मीटर के स्पेस पे फाउंडेशन दिया जाला।
1: अच्छा।
0: फाउंडेशन का मतलब कि ओकर बेस हो गेल बेस।
1: अच्छा।
0: जब हम प्लिंथ बीम के बात करते नहीं तो प्लिंथ बीम जोन होला कि रोड लेवल से कुर्सी जोना के कहल जाला कि
1: हाँ
0: कुर्सी
1: हाँ
0: लेवल। तो कुर्सी लेवल जब डालाई ना तो कुर्सी लेवल में क्या होला कि जैसे 3 मीटर पे अगर स्पेस बा हमार तो मिनिमम कम से कम 9 इंची के बीम होके के चाहिए।
1: अच्छा।
0: 9 इंची के बीम रही, मिनिमम 9 बाई 9 के बीम रखे के चाहिए जिसमें 6 सरिया 10 के बा और डाल सके नहीं। और वो भी डिपेंड करता है कि मकान के हाइट का ले जाता नहीं, अगर 1 फ्लोर बनाओ एक बार 2 फ्लोर बनाओ तो तब तक चल जाए, अगर उससे ऊपर ले जाए के बाद तो ओकर फिर डिजाइन करा ली कोनो आर्किटेक्चरल से या स्ट्रक्चरल से।
1: अच्छा। अगर मान लीजिए जैसे आप कहते हैं कि स्क्वायर फीट का बात करते हैं कि कितना स्क्वायर फीट में आपके मकान बनावे के बाद, तो इसमें मोटाई चौड़ाई के भी बारे में बताएं कि उसमें लोग का ध्यान रखें कि कितना आपका बाहरी दीवाल का मोटाई रहे के चाहिए या अंदर की दीवाल का रहे के चाहिए, उसके बारे में तीन भैया उनको बताएं।
0: देखिए बाहरी जोन दीवाल होला ओके तो 9 इंची कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट बा कि 9 इंची तो रखे ही के चाहिए। 9 इंची में किसान भाइयों के लिए सेफ्टी भी रहता है और सबसे बड़ा चीज ना कि नौ अगर मोटाई अगर दीवाल की रखत नहीं हम तो वो हीट इंसुलेशन के भी काम करेला।
1: अच्छा।
0: हीट इंसुलेशन भी जरूरी है क्योंकि बाहर के घर बा धूप हमेशा लागत रही तो इंसुलेट करी वो धूप के अंदर ना आवे दी। अगर पतली दीवाल रखत नहीं तो एक तो चोरी ओरी के भी डर रही, सेंधमारी के भी डर रही, उससे सेफ्टी खातिर हमने के 9 इंची कम से कम रखे के पड़ी।
1: अच्छा।
0: 9 इंची अगर रखत नहीं तो कई प्रोपर से उधर हुआ खातिर ठीक रही।
1: अगर घर में लोग सरिया डालत हो, सरिया लगावत हो, तो उनमें का उन्होंने के जरूरी ध्यान देवे के बा?
0: देखिए किसान भाई लोग के कंस्ट्रक्शन में ज्यादा जानकारी ना होला, कभी कभी लोग केहू के बातों में आके कह दलन कि 6 गो सरिया डाल द 9 बाई 9 के कालम में, केहू 10 गो कर देला, चाहे केहू के ई लागेला।

0: कि जितना मोट हम सरिया रखब उतना हमार बिल्डिंग मजबूत हो की, तो ई ना करे के चाहिए। ई कैला के कोनो मतलब नहीं के, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे चली, कोनो इंजीनियर से सजेशन ले ली, ओपर बिल्डिंग बनाई। देखी ज्यादा सरिया लगावल भी एक नेशनल हरासमेंट होला, जेमे अपना देश के नुकसान बा। जरूरी बा कि अगर मान लीजिए 1 किलो सरिया के यूज करे के बा और लोहा 3 किलो या 2 किलो सरिया लगाओ तनी, तो नेशनल हरासमेंट होला। तो ऐसे अच्छा बा कि कोनो इंजीनियर से सलाह ले ली। अच्छा बेसिक जो जानकारी हम बता दें कि अगर जैसे एक छोटा सा घर 1000 स्क्वायर फीट के हुआ के बनावे के बाद, तो 1000 के बनावे के बाद 9 बाई 9 के कालम जो बा कि सफिशियंट होला। एक बाद 9 बाई 12 इंची के भी कालम रख सके नहीं। सरिया के बात रहा तो सरिया के आंख बंद करके सरिया ना लगावल जाए। सरिया जरूरत से ज्यादा ना लगावे के चाहिए, जितना जरूरत बा उतने लगावे के चाहिए। बेसिक अगर जानकारी खातिर हम बता दें तो 1000 स्क्वायर फीट में अगर कालम के सरिया रुआ 12 mm के 4 गो दे देता नहीं तो सुफिशियंट बा। अपना मन से जैसन चाहिए वैसन सरिया ना लगावे के चाहिए,
1: वो भी अपने आर्थिक नुकसान
0: नुकसान।
1: इंजीनियर साहब, हम आपसे एक और चीज जानल चाहब कि लोग अपन जो छत है ओकर ढलाई कराओ तुम, तो ओकर भी का 1 मंजिला 2 मंजिला हर मंजिल जैसे बनवाओत हुआ, तो का ओकरी अगर पहला मंजिल बनावत हुआ तो ओकर का ऊंचाई रहे के चाहे, तो ऊंचाई के बारे में बताएं कि
0: देखिए ऐसा बना कि बिल्डिंग के अगर हाइट जरूरत से ज्यादा रखल जाओ। जैसे मान लो कि किसान भाई छोटा घर बनाओ तरन, अगर वो 12 फीट 13 फीट 14 फीट अगर रखा तरन ना, तो उसमें किसान के ही नुकसान बा। आपन जरूरत जोन बा तो 12 फीट सफिशियंट होला, 11 फीट पे भी घर बहुत बढ़िया रहेला। और जैसे जैसे हाइट बढ़ाओ तनी गैर जरूरी चीजें बा, तो ओकरा में नुकसान होला, ओमें मटेरियल कॉस्ट बढ़ी, ओमें लेबर बढ़ी, तो उसे कोनो फायदा नहीं के। जरूरत से ज्यादा रखल बिल्डिंग के हाइट ठीक ना है। आप जोन बा कि 11 फीट 12 फीट से ज्यादा रखल ठीक ना, 12 फीट ग्राउंड फ्लोर रख ली, 11.5 फीट फर्स्ट फ्लोर रख ली, यही तरह अपन 1-2 मंजिला बना सके नहीं।
1: मैंने कि जैसे जैसे बढ़त जाए उसे थोड़ा थोड़ा कम भी
0: कम कर सकेला। देखिए मिनिमम जोन बा ना कि 10.5 11 फीट चाहिए बिल्डिंग के हाइट, इतना किसान भाई के लिए सुफिशियंट बा।
1: इंजीनियर साहब देखिए, मैंने कहा तो सब लोग किसान मन ही है जा, तो भाई किसान मन ही अपन जब बिल्डिंग बनावे ला और छत ढलवावे ला, तो छत ढलवावे के समय जो सेटरिंग होला, तो उसमें भी बड़ा लोगन के मन में संशय रहला कि कितना दिन में खोले के चाहिए, का हमार छत बढ़िया से पक गई ल, पके का मतलब कि बढ़िया से ठीक से ढल गई ल, पकड़ लेले है कि ना सीमेंट और ये सब
0: कुछ।
1: एक ही बारे में तुम बताइए हमारी किसान।
0: देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि सटरिंग स्लैब की सटरिंग कब खोले के चाहिए। सटरिंग हमारा स्लैब ये सब चीजें जो है स्पैन पे डिपेंड करता है। अगर हमारा स्पैन जो है, स्पैन का मतलब कि ओकर लंबाई चौड़ाई अगर ठीक कम से कम 3 मीटर के रेंज में बात, 3 मीटर में 12-10 फीट के आसपास, तो हम ओके आराम से 15 दिन पे खोल सकेंगे। वो भी डिपेंड करता मौसम, अगर ज्यादा ठंडी पड़ता तो ओकरा के हमने के 3 हफ्ता ले जाए के चाहिए। अच्छा। लेकिन कॉन्क्रीट के जो स्ट्रेंथ बना वो अपन अगर बढ़िया से तराई होता ओकर, तो 1 हफ्ता यानी 7 दिन में 90% वो स्ट्रेंथ गेन कर जाला।
1: अच्छा।
0: तो उकरा के चाहिए अगर बहुत जल्दबाजी बा तो कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद उकरा के खोलल जा सकेला छोटा स्पैन में। अगर जैसे स्पैन ज्यादा बढ़ल बा तो उकरा के हमने के 1-15 दिन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में हमने के परमिट दे देनी जाए कि उके खोलल जा सके।
1: आप स्पैन बड़ा चीज का चीज है,
0: देखिए स्पैन का मतलब ये हो गए कि जैसे मान ली हमने के प्लाट बा 1000 स्क्वायर फीट, तो 20 बाई 50, वो 20 बाई 50 के अगर एग्जाम्पल लेते नहीं, 20 फीट बाई 50 फीट के, तो 1000 के प्लाट हो जाला। तो अगर स्पैन के जब बात कर जाला तो 20 फीट हमारी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और लंबाई हो गई 50 फीट, तो ये स्पैन हो जाता है।
1: अच्छा।
0: अब स्पैन 20 फीट के मतलब ये रेंज में आ गया 6 मीटर के आसपास में, तो एक जो बाकी 15 दिन के बाद एक सटरिंग के खुलल जा सके, ये स्पैन कहल जाला।
1: अच्छा चलत चलत हम आपसे ये जानल चाहब कि सबसे उपयुक्त समय का माना जाला अपनी मकान बनावे का।
0: देखिए सबसे बढ़िया टाइमिंग अगर मकान बनावे के है तो वो अक्टूबर सितंबर के बरसात के बाद, कहें कि ओमें जो बाना कि टाइम मिल जाला। देखिए हमारे किसानन भाई के पैसा मकान में लागेला, जिसमें हम अगर बरसात के टाइम में बनावल जाला ना, तो ओमें मटेरियल के भी लॉस और लेबर के भी लॉस होला। तो एक मकान बनावे के जो समय बा कम से कम 8 से 9 महीने का समय चल जाला। बहुत समय तनी और फिनिशिंग करब तो 1 साल का समय लग जाला। तो जो टाइम बा ना टाइम अगर रुआ अक्टूबर से चालू करते नहीं तो बरसात आवत आवत रुआ छत डाल दे प्लास्टर व्लास्टर भी हो जाला ओमे, तो एमे जोन बा की सबसे बढ़िया टाइम होला एक कम्प्लीट कर जा सके। अच्छा सबसे ज्यादा जरूरत

0: ना देखी क्यूरिंग, क्यूरिंग मतलब तराई, जो ना कि तराई कहल जाला, मकान में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ओकरा के तराई, हर देखी कंक्रीट जोन बा या सीमेंट बा एकर सेटिंग टाइम एगो फिक्स बा, लेकिन ई जोन बा ना कि बिना तराई पे ही कमजोर हो जाला, तो तराई जोन बा कि मकान में बहुत जरूरी बा। जब तक अच्छा हर चीज के तराई जोन होला 21 दिन कम से कम, हर अगर चुनाई होता तो भी 21 दिन, कॉन्क्रीट होता तो भी 21 दिन कम से कम तराई करे के चाहिए बिल्डिंग में,
1: अच्छा, मैंने कि तराई का भी विशेष ध्यान दे
0: विशेष ध्यान
1: लोग।
0: रखे के
1: और
0: चाहिए।
1: इंजीनियर साहब, चलत चलत हम आपसे आखिरी सवाल ये करब कि इंजीनियर लोगन का एगो मकान बनावे में क्या भूमिका है, एकरी बारे में तनी बताई।
0: जो जो देखिए घर तो किसान कैसे भी बना लेलन, कैसे भी बन जाला, लेकिन इंजीनियरिंग वर्ड आने का मतलब ही यही होता है कि उनके काम को बहुत सुचारू रूप से आसान कर दिया जाए। जैसे कि एक लोकल मिस्त्री भी घर बना देला, चाहे ईटा जोड़े के बा, प्लास्टर करे के बा, ये सब कर देला, लेकिन कहाँ किसानन के फायदा होके के चाहिए, कहाँ मेटेरियल ज्यादा लागता, जैसे सीमेंट प्लास्टर के रेशियो, सीमेंट ब्रिकवर्क में का रेशियो के चाहिए, सरिया कौन अब बताइए ना कि सरिया कैसे लगावे के चाहिए, तो ये सब चीज यही इंजीनियरिंग आने से फायदा बा कि इकोनॉमिकली कल जा सकेला कोई भी चीज का, कि ज्यादा कॉस्ट ना लगे, कॉस्ट में ही किसानन के अच्छा फायदा दिया जा सके,
1: मैंने कि सही और सुचारू ढंग
0: सुचारू
1: से
0: बने।
1: अपन मकान आप लोगों से राय लेके हमनी लोग बना सके नी जा। इंजीनियर साहब, आप हमनी लोगों के कार्यक्रम कृषि जगत में ही नहीं, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। लाली बहन,
2: हाँ हो,
1: देखा बात बात कही तो सुनवा दिल गई कि आवासीय भवन के निर्माण के समय कावना कोनो बात के ध्यान रखे के है। इंजीनियर अनूप कुमार सिंह से बतियनी है। और ना बहन,
2: हाँ
1: अब तनी
2: हो,
1: मन मन साइन भी करवा दिल जा।
2: ये तो हमरे मन का बात कह देला तू, तले देरी नहीं करब, खुशबू कुमारी कई किसानी गीत बहनी लोगन सुने, भैया लोगन सुने, हमानो सुनल जाए।
1: बिल्कुल सुनल जाए।

0: खुशबू कुमारी का ई गवनी पंच भैया लोगन सुनलन। चलत चलावत काल के कार्यक्रम के बारे में बता दिया जाए तो काल 6:05 पर पंच भैया लोगन खेती के बात में सुनी है, आम के बागवानी विषय पर जानकारी और जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह असंझा के हो।
1: संझा के जोन अपन यही कार्यक्रम कृषि जगत होला ना 6:30 पर, एमे भाई मछलियन का उचित देखभाल कैसे करे के है, डॉक्टर बामदेव पांडे और सुधीर कुमार श्रीवास्तव को बात बत कही हुई, यो नगद का बत कही रही भैया लोग सुनिया। और लाली बहन
0: हाँ हो
1: ना अपनी भैया लोगों से आज्ञा लिया जा
0: बिल्कुल
1: तो पंचो राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म जीत से। आवाजें हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

अगला गीत है फिल्म जब वी मेट से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है उस्ताद राशिद खान ने। शब्द रचना है इरशाद कामिल की और संगीत है प्रीतम का।

उस्ताद राशिद खान की गाए फिल्म जब वी मेट के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रोशनी चौरसिया पुत्री कल्लू चौरसिया निवासी आजाद नगर कॉलोनी थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी ये दिनांक 2 जुलाई सन 2026 को सुबह लगभग 5 बजे धमरिया आजाद नगर कॉलोनी लोहता वाराणसी से लापता हो गई। होलिया इस प्रकार है। उम्र 17 वर्ष कद 5 फीट 11 बदन चेहरा गोल और रंग सांवला है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तब इनका पहनावा काला प्लाजो काला टॉप नीला दुपट्टा और सफ़ेद चप्पलें थीं। इनके विषय में यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने को अथवा थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। अगली सूचना कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार आलोक कुमार मोदनवाल पुत्र विनोद कुमार गुप्ता निवासी 3/1708 रामपुर थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ये दिनांक 26 जून 2026 दिन शुक्रवार अपने निवास से निकले और वापस नहीं लौटे। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 16 वर्ष कद 5 फीट 5 इंच रंग सांवला है। आखिरी बार देखे जाते समय इनका पहनावा नीला जीन्स और शर्ट था। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया अपने नज़दीकी थाने को अथवा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। सूचनाएं समाप्त हुईं।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में, इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है।

0: कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
3: आरबीआई कहता है?
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
5: हर घर

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और सशक्त बनाएगा ये कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकेणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स के गठन का किया ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में प्रदेश सरकार को एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का दिया निर्देश। 2 हफ्ते में मांगी जांच की पहली स्टेटस रिपोर्ट। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल अधिकांश जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। पेश एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
3: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकेणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा पर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि एक बार प्रस्तावित कानून बन जाने और टास्क फोर्स के पूरी क्षमता से काम शुरू कर देने के बाद देश में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छी कमेटी बनी है। आप सब लोगों ने भी नाम देखा होगा, नंदन जी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बनाया है श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार ने, अपने अपने क्षेत्र के महारथियों को उसमें शामिल किया है और

0: मैं समझता हूं कि ये महत्वपूर्ण विधेयक जब कानून का सकल अख्तियार करेगा और ये टास्क फोर्स अपने जब पूरी तरीके से अस्तित्व में आकर अपने काम को आगे बढ़ाएगा तो पेपर लीक जैसे मामले देश में दोबारा हमको लगता है कि अब सुनाई नहीं दे।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन

0: कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त धनराशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने एसआईटी को जांच के संबंध में 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बताया कि लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस अधिकारी एस किरण की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में एक पुलिस उप महानिरीक्षक और एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल ने एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने के पीठ के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय की पीठ मामले के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच और मंदिर ट्रस्ट के वित्त का लेखा परीक्षा करने की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी। उधर इस मामले में अयोध्या में आज एंटी करप्शन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की है। इसको लेकर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराए।
1: हम प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा का अभियान चलवाकर पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्ति के प्रति खासतौर से हर नागरिक का को कर्तव्य बोध कराया है और ये निश्चित रूप से अपने झंडे के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फ्लैग के प्रति पूरा समर्पण भाव से सम्मान करें और आदर पूर्वक इसको अपने घर में स्थापित करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 29 जुलाई को वाराणसी से देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित ये अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलाया जाएगा। वाराणसी में इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य ने बताया कि अभियान 5 चरणों में संचालित होगा। इसका उद्देश्य गुरु रविदास के समरसता, कर्मयोग, भक्ति और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है।
2: संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है पूरे देश में संत रविदास जी के विचारों को उनके आदर्शों को ले जाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इन कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम है 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूज्य निरंजन दास जी के कर कमलों से 131 कलशों को पूरे देश में भेजा जाएगा। इन कलशों का कई जगह पर जिला मुख्यालय पर पूजन और सम्मान होगा।
0: राजधानी लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और बलिया में घाघरा खतरे के निशान के पास बह रही है। वहीं नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और सशक्त बनाएगा ये कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकेणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स के गठन का किया ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में प्रदेश सरकार को एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का दिया निर्देश। 2 हफ्ते में मांगी जांच की पहली स्टेटस रिपोर्ट। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल अधिकांश जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की उस महफिल में जिसका नाम है रसरंग। कार्यक्रम रसरंग का पहला गाना हमने लिया है फिल्म हंगामा से। आवाजें हैं अभिजीत, अलका याग्निक और सोनू निगम की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

अगला गाना है फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की, गीत के बोल लिखे हैं अहमद अनीस कुमार ने, संगीत है जवाद अहमद शारिब तोशी का।

हम हैं राही प्यार के। इस फिल्म का अगला गीत है। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

अगला गीत है फिल्म हाउसफुल से। इस गीत को गाया है तरुण सागर, अलीसा मैग्नोनसा लॉय ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है फिल्म बाजीगर से। इस गीत को अपनी आवाजें दी हैं अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीत के बोल लिखे हैं गौहर कानपुरी ने, संगीत है अन्नू मलिक का।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित

चित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आएं और बयान दें। पूर्वान्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्य

श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खरगे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खरगे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खरगे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खरगे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। यह विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थान

0: से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रस माधुरी। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने। शब्द रचना है नक्श लयालपुरी की, संगीत है खयाम का।

अगला गीत है फिल्म जुर्माना से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है आर डी बर्मन ने।

अगला और अंतिम गीत है फिल्म बेमिसाल से। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: प्रस्तुत है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के 30वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आज जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 30वां दीक्षांत समारोह बड़े ही गरिमामयी और उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। परिसर के संगोष्ठी भवन में आयोजित इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने की। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश एनसीसी के एडीजी मेजर जनरल गौरव गौतम रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्रीमती रजनी तिवारी रही। कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने विश्वविद्यालय की वार्षिक उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस कार्यक्रम में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधियां और मेडल प्रदान किए गए। अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने कहा,
1: विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्ष व हमारी प्रेरणा स्रोत माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि मेजर जनरल गौरव गौतम जी एडीजी उत्तर प्रदेश एनसीसी, अति विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्रीमती रजनी तिवारी जी, कार्य परिषद विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, जन प्रतिनिधिगण, जन भवन के अधिकारीगण, आचार्यगण, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, पत्रकार बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों, स्कूलों से आए हुए प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चों, अभिभावक गण एवं उपस्थित देवियों और सज्जनों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं और आज के इस गौरवपूर्ण एवं पावन अवसर पर मैं सभी स्वर्ण पदक व पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय कुलाधिपति जी का हृदय से वंदन करती हूं, जिनके कुशल निर्देशन से प्रदेश की उच्च शिक्षा में नूतन चेतना व दूरगामी सुधारों का सूत्रपात हुआ है और पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। यह विश्वविद्यालय शोध, नवाचार व अकादमिक उत्कृष्टता का केंद्र बन गया है। मुझे यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि एडुरैंक 2026 में विश्वविद्यालय को एशिया में 1268वां, भारत में 160वां तथा उत्तर प्रदेश में 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भी विश्वविद्यालय ने दक्षिण एशिया में 397 तथा एशिया रैंकिंग में 1201 से 1300 बैंड में स्थान प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय का क्यूमुलेटिव एच इंडेक्स 50 से अधिक होना हमारी शोध की गुणवत्ता का प्रमाण है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में 205 शोध पत्र व 10 पेटेंट प्रकाशित हुए हैं एवं शोध गंगा पे 10,117 शोध ग्रंथ अपलोड किए गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 12वां स्थान प्राप्त किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक विज्ञान के समन्वय हेतु बहुविषयक शोध समूहों का भी गठन किया गया है जो योग, जल और जैविक परिवर्तन जैसे विषयों पर अनुसंधान कर रहे हैं, जिसमें प्रारंभिक परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक हैं।
0: अपने वक्तव्य के साथ राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्रीमती रजनी तिवारी।
2: आज इस दीक्षांत समारोह में आकर के मुझे बहुत ही गर्व की और हर्ष की अनुभूति हो रही है। अभी मैंने बच्चों को उपाधि दी, मेडल दिए और आपको मेडल देते समय जितनी प्रसन्नता आपको हो रही थी, आपके माता पिता को हो रही थी, उतनी ही प्रसन्नता हम सबको भी हो रही थी यहाँ पे। सबसे पहले मैं उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करती हूं, साथ में आपके माता पिता, आपके गुरुजनों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूं। आपने तो परिश्रम किया, आपने तो त्याग किया, लेकिन इसके साथ साथ में आपके माता पिता ने भी जो त्याग

इसी के साथ रसमाधुरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 30वें दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

0: किया, आपके गुरुजनों जी ने जो मार्गदर्शन दिया उसके कारण ही आज आपने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं कहना चाहूंगी आज आप यहां पे पहुंचे हैं, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूर्ण हुआ और आप नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से आपका परिवार, आपका विश्वविद्यालय, समाज, राष्ट्र आपसे अपेक्षाएं करना शुरू कर देगा और आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जो ज्ञान कौशल संस्कार लेकर के निकल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वयं तो प्रकाशित होंगे ही अपने आसपास के वातावरण को भी प्रकाशित करने का काम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके जीवन का जैसा कि मैंने कहा एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा हुआ है, किंतु यह अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का शुभारंभ है। आज आप, आपके परिवार ने आपको संस्कार दिए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि तीनों का समन्वय करते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका आप निभाएं। माने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय कार्य कर रही है। हमें माननीय राज्यपाल महोदया का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आज राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल अवसंरचना, शोध नवाचार, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर, कौशल विकास और उद्योगों से समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का प्रत्येक विद्यार्थी आत्मविश्वासी, रोजगारोन्मुख, तकनीकी रूप से दक्ष और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो। विश्वविद्यालय केवल ज्ञान का केंद्र नहीं होता बल्कि चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला होता है। ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता, सहिष्णुता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रभक्ति जैसे मूल्य ही आपको एक सफल और आदर्श नागरिक बनाते हैं।
1: मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश NCC के ADG मेजर जनरल गौरव गौतम ने कहा,
2: हम जो भी कार्य पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं वही सच्ची पूजा है। आपने गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश तो सुना ही होगा, कर्म कर फल की चिंता मत कर। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, उसके परिणाम का नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कार्य पर ध्यान देते हैं तो परिणाम हमेशा बेहतर आते हैं। अच्छे कर्म न केवल हमें सफलता और मानसिक शक्ति देते हैं बल्कि समाज में हमारा सम्मान भी बढ़ाते हैं। दूसरों की भलाई करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना ही श्रेष्ठ कर्म है। अपनी अपनी उपाधियों के साथ आप समाज में विविध क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। सेवा काल में कभी कभी परिस्थितियां हमारे आशानुकूल नहीं होती, ऐसे में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, आपको अपनी काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है सदाचारी लोगों के मन में जो बात होती है वही बोलते हैं और जो वो बोलते हैं वही करते हैं। उनके मन, वचन और कर्म में पूर्ण समानता और ईमानदारी होती है। जब हम अपने दैनिक जीवन, पढ़ाई या कार्य क्षेत्र में सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो हम एक मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं। बच्चों, बेईमानी हमें शायद कुछ पल के लिए सफलता या लाभ दे लेकिन वो कभी स्थायी नहीं होती। इसके विपरीत ईमानदारी हमें समाज में सम्मान, आत्मसम्मान और मन की शक्ति प्रदान करती है। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने कर्तव्य और सत्य के प्रति दृढ़ रहे हैं उन्हें ही दुनिया ने हमेशा याद किया है। आइए हम सब आज ये संकल्प लें कि हम हर परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी का पालन करेंगे, क्योंकि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति से ही एक सशक्त और आदर्श राष्ट्र का निर्माण होता है। ये मेरा सपना ही नहीं बट मैं चाहता हूं ये वास्तविक में हो कि हमें भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है और ये कार्य आप युवा करेंगे। जब तक महिला वर्कफोर्स में 50% भाग ना हो देश आगे तरक्की कर ही नहीं सकता। ये पूरे देश में किए गए रिसर्च का अध्याय यही है कि महिला को वर्कफोर्स में 50% भाग आना ही लाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है महिला सशक्तिकरण। और ये कार्य

0: दोनों यानी कि पुरुष और महिला ने मिलकर साथ करना है। इसके ऊपर मंत्री रजनी मैम ने काफी बातें बोली हैं, इसलिए मैं अगला दूसरा पॉइंट पे आता हूं, वो है कल्चर। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और जीवन संस्कृतियों में से एक है। विविधता में एकता इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह कई शताब्दियों से ऐतिहासिक विकास, धर्म दर्शन, कला, संगीत और खान पान का एक अनूठा संगम है। यहां अध्यात्म, योग और कर्म के सिद्धांत सदियों से भारत जीवन का मूल आधार रहे हैं। इन्हीं मूल्यों के बल पर भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में है। इसके लिए हमें अपनी ज्ञान परंपरा, संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के साथ साथ विश्व के कल्याण में भी सक्रिय योगदान देना होगा। तीसरा है स्वच्छ भारत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत था। हमें यह समझना होगा कि स्वच्छता केवल सरकार का दायित्व ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेवारी भी है। आओ हम सब मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें।
1: अपने संबोधन के साथ उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल।
2: मेरे लिए सुखद अवसर है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के 30वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर ज्ञान साधना और परिश्रम की इस पावन यात्रा के सफल पथ बने आप सभी विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का साक्षी बन रही हूं। महर्षि यमदग्नि की तपोभूमि और भगवान परशुराम की जन्मस्थली जौनपुर की अपने एक विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान रही है। यह वह पावन भूमि है जिसने इतिहास के अनेक स्वर्णिम अध्याय को जन्म दिया और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सांस्कृतिक वैभव, ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्य को अक्षुण बनाए रखा। गोमती नदी के तट पर बसा यह नगर प्राचीन काल में यमदग्निपुरी के नाम से जाना जाता था और कालांतर में अपनी विद्वत्ता, कला, संस्कृति तथा स्थापत्य वैभव के कारण सिराज हिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोमती और गंगा की पवित्र धाराओं के बीच इस धरती ने सदियों से मनीषियों, संतों और साधकों को आकर्षित किया है और इसी वजह से मैं एक और काम आपको देती हूं। सभी यूनिवर्सिटी 40 और प्राइवेट 50, लगभग सभी यूनिवर्स का नाम ऐसे महापुरुषों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं सभी अध्यापक और वीसी को ये कहना चाहती हूं, कोई काम करना है आपको, कि जो यूनिवर्सिटी जिस नाम से नामकरण हुआ है उसके बारे में हमारे विद्यार्थी जाने, पढ़े, लिखे, इस पर बोले, स्पीच करे, पेंटिंग करे और ऐसे स्थान देखने के लिए जाए जो उसको प्रेरित कर सके। मित्रों, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करो जिसकी वजह से आसपास जो कुछ हमारे पास है, जो टूटा हो, फूटा हो, कोई भी स्थिति में हो, इसके बारे में जाने, इसमें से कुछ प्रेरणा ले। मित्र, ये करवाइए और दीपावली के बाद स्पीच में जो पहले आए होंगे, पेंटिंग में जिसने लिखा होगा, जिसने छोटी सी बुक अपने विचारों से लिखा होगा, ये सबको जनभवन में आमंत्रित करेंगे और इसमें आपको ये बोलना है। मित्रों, नामकरण तो हुआ लेकिन हम करते हैं कितना इसमें, तो मूल काम ये है मित्रों, और इसी वजह से करिए मित्रों, इसमें कितना बदला है, कितना भूले हैं हम, कितना विलुप्त हो चुका है, ये सब भी निकालिए मित्रों, और विलुप्त हुआ है इसको सजीवन करने के लिए प्रयास करिए मित्रों। ये सरकार का भी दायित्व है और यूनिवर्सिटियों का भी दायित्व है कि वो देखें। और हमारे,
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय

0: व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं या स्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरतदाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।

0: एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीति मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Public exam.

0: में बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में पेपर लीक मामलात में सख्त तरीन कार्रवाई करने की तजवीज है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान बार बार मुलतवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट अतियात की मुबैना चोरी की तहकीकत के लिए IGP की क्यादत में एक 4 रुकनी SIT तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की भी हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय शहरी की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बायस ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और दौलत मुश्तरका गेम्स में वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने खवातीन के 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दो नौजवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई से मुतालिक अपोजिशन पार्टियों के शोर शराबे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में आज अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तरमीम करने के लिए है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐवान में ये बिल पेश किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अराकीन पर जोर दिया कि वो बिल पर बहस होने दें। उन्होंने कहा कि इस बिल पर बहस के लिए 6 घंटे वक्फ किए गए हैं और 91 तरमीमात मौसूल हुई हैं।
1: मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज्यादा अमेंडमेंट के नोटिस में आए। इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें।
0: क्योंकि शोर शराबा जारी रहा, इसलिए प्रिसाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 एक अहम कानून है जो मुल्क के करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल, जफाकशी और उम्मीदों से वाबस्ता है।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। सभी मान्य सदस्यों से आग्रह, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए।
0: इस दौरान राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी मामले पर कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल जब ऐवान की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई, तो उमूर दाखला के वजीर ममलकत ने कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 पे बहस के लिए पेश किया। इस बिल का मकसद कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम के कानून 1971 में मजीद तरमीम करना है। मुजवदा कानून वंदे मातरम को कौमी तराने जनगणमन जैसा ही कानूनी तहफ़ फराहम करना चाहता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मानसून इजलास के दूसरे हफ्ते के पहले रोज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार मुलतवी की गई क्योंकि अपोजिशन के अराकीन नीट मामले पर एहतजाज के दौरान तालिब इल्मों के खिलाफ दर्ज की गई FIRs को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। लोकसभा की कार्रवाई 4 बार मुलतवी की गई जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 5 बार मुलतवी की गई। अपोजिशन के शोर शराबे के माबैन अवामी इम्तहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तरमीम करने के लिए पेश किया गया है। इस कानून का मकसद एक जाम कानूनी लाहे अमल कायम करने के साथ साथ तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ़ फराहम करके इम्तहान के निज़ाम में शफाफियत, ईमानदारी और इसके वक़ार को मुस्तहकम करना है। इसमें बहुत सी अहम शिकें हैं जिनमें 10 साल तक की सज़ा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और कसूरवार ठहराए गए मुजरिमों की इमलाक को जब्त करने समेत सख्त गुंजाइशें शामिल हैं। चेयर और हुकूमत की बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन के अराकीन दोनों

0: जवानों में शोर शराबा करते रहे। चूंकि शोर शराबा और मुखालफत का सिलसिला जारी रहा, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल यानी मंगल के रोज दोबारा शुरू होगी। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में मौसूल होने वाले अतियात की मुबैना चोरी की जांच के लिए लखनऊ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस की सरबराही में एक 4 रुकनी खसूसी तहकीकती टीम SIT तश्कील दी गई है। इस टीम में DIG ओहदे के एक अफसर, एक पुलिस सीनियर सुपरिंटेंडेंट और एक एडिशनल SP शामिल होंगे। अदालत आलिया ने रियासती सरकार से कहा है कि वो SIT के 5वें रुकन के तौर पर फॉरेंसिक एक ऑडिटर को भी शामिल करे, जो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत की बेंच उन बहुत सी उजरदारियों पर समाप्त कर रही थी जिनमें मंदिर ट्रस्ट के अतियात की चोरी और ऑडिट के इल्जाम के मामले में CBI के जरिए जांच की दरखास्त की गई है। इस दौरान आज उत्तर प्रदेश में खसूसी अदालत ने राम मंदिर अतियात की चोरी के मुबैना मामले में तमाम 8 मुलजिमीन की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसी कर दी है। वजारत खारजा ने एक तजारती जहाज MV ओमोरफी पर हमले के बाद आज भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर ओलेग्जेंडर पोलिशकुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया है। इस वाकये पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने सख्त अल्फाज में तजारती जहाजों पर इस तरह के हमलों की मजम्मत की है। वजारत ने बहरी जहाज रानी के तहफ्फुज, जहाज रानी की आज़ादी और बैनुल अक्वामी तजारत पर इन हमलों के मनफी असरात को उजागर किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सफीर से दरख्वास्त की गई है कि वह यूक्रेन के हुकाम को तजारती जहाजों को निशाना बनाने पर भारत की शदीद तशवीश से आगाह करें। वजारत ने यादा किया कि इस तरह की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जहाजरानों की जिंदगियां खतरों में पड़ जाती हैं। इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं और इनसे बचना चाहिए। सऊदी अरब ने आज कहा कि उसने इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया की जानिब से दागे गए ड्रोन्स मार गिराए हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी वजारत दिफा का बयान आज ऐसे वक्त पोस्ट किया गया जब अमरीका और ईरान ने हफ्तों की कशीदगी के बाद गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं। बयान में मजीद कहा गया कि इन ड्रोन्स में मशरिकी सऊदी अरब और राजधानी रियाद में पेट्रोलियम मराकज को निशाना बनाया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने चीन के अपने दौरे का आगाज आज CPC बैनुल अक्वामी महकमे के नायब वजीर सन हयान के हमरा मीटिंग के साथ किया। उन्होंने लीडर सतह की रहनुमाई, तरजीही मामलात और वसीतर सियासी, अवाम से अवाम, तालीमी और थिंक टैंक तबादलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और चीन के दरमियान नथुला पास के जरिए सरहदी तिजारत अगले महीने की 1 तारीख से दोबारा शुरू हो जाएगी। ये तिजारत COVID-19 वबा के बाद साल 2020 से मुअत्तल थी। तिजारत दोबारा शुरू होने की तकरीब में तवक्को है कि दोनों मुल्कों के हुकाम शिरकत करेंगे। तवक्को है कि तिजारत के दोबारा शुरू होने से सरहद पार की तिजारत को फरोग मिलेगा, जिससे इंदराज शुदा ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और मुंसलिक कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। ओडिशा शदीद मानसून से दोचार है, क्योंकि बहिरे बंगाल पर बने गहरे दबाव की वजह से रियासत भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ओडिशा के कई जिलों से ताजा सैलाब, पानी भर जाने, फसलों के नुकसान और बुनियादी ढांचे के नुकसान की खबर है। रियासती हुकूमत ने तैयारी और आफात से निमटने के इकदाम को मुस्तहकम करते हुए जिला इंतजामिया को सूरत हाल से निमटने के लिए 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। तफसील हमारे नामानिगार से।
0: बहिरे बंगाल पर बने गहरे दबाव की वजह से उड़ीसा भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ताजा सैलाब आ रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ जिले शदीद तौर पर मुतासिर हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने इस महीने की 30 तारीख तक रियासत के मयूरभंज, क्योंझार, बालासोर, भद्रक, जयपुर, देवगढ़, अंजुल, ढेनकनाल, सुबर्णापुर, बौद्ध, नौपारा और बलांगीर में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भद्रक जिले की 7 ग्राम पंचायतों में सैलाब जैसी सूरत हाल बरकरार है, जबकि सुबर्णापुर जिले से फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। रियासत के महसूल और कुदरती आफात से निमटने के वजीर सुरेश पुजारी ने आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए सभी जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट के दौरान 24 घंटे चौकसी बरतने और राहत और बचाव के फौरी इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उड़ीसा से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब,

चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, वस्ती महाराष्ट्र, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक और विदर्भ में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहने की पेशगोई की है। उत्तराखंड हुकूमत ने अपने सभी जिलों की इंतजामिया को अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है। उत्तराखंड हुकूमत ने चारधाम यात्रियों, सयाहों और रिहायशियों को सफर से पहले मौसम से मुतालिक अपडेट हासिल करने का मशवरा दिया।

आइए सुनते हैं एक और गजल। गजल का मतलब है, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। आवाज़ है गुलाम अली की।

0: आपके लिए और शेर है,
1: तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चरा,
0: तेरी हर चाप से यानी हवा के झोंके से कुछ पत्ता हिलाया पर्दा हिल गया, आठ आठ को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चराग, इन्हें खुशी कि शायद महबूब आ गया वो।

0: आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपसे मिलिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी वाराणसी से मैं चंदन सिंह आप सभी का आपसे मिलिए कार्यक्रम के एक और विशेष अंक में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, कला सिर्फ रंगों का मिश्रण नहीं है बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, और जब वह अभिव्यक्ति काशी की मिट्टी से उपजी हो तो उसमें एक अलग ही आध्यात्मिक सुगंध मिल जाता है। श्रोताओं, आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने ब्रश से ना सिर्फ कैनवस पर रंग भरे हैं बल्कि कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीजों को उकेरा है जिसे पूरा विश्व आज निहार रहा है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी। आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी हैं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी।
1: हमारे श्रोताओं को सर ये बताएं कि आपका बचपन कैसा था, आप कला से जुड़े हुए हैं, बचपन कैसा था, कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई और कला की तरफ आपका रुझान कैसे आया?
2: जहाँ तक कला के प्रति रुझान की बात है, मैं आपको और श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि कला प्रकृति प्रदत्त जरूर होती है लेकिन उसे प्रोत्साहन करने वाले कुछ लोग होते हैं। और मेरे कला की शुरुआत जब हुई, जब मैं स्कूल में पढ़ने नहीं जाया करता था, मेरे घर पे लोहे लकड़ी का काम होता था और लकड़ी के पट्टों पे मैं दुधिया चाक जिसको बोलते हैं उससे मैं कुछ चित्र बनाया करता था, और उन चित्रों को देख करके मेरे पिताजी बड़े प्रसन्न होते थे, और प्रसन्न ही नहीं होते थे, वो मुझे पुरस्कृत भी करते थे और कहते थे कि तुम्हें समोसे खाने के लिए पैसा दूंगा, और देते भी थे। धीरे धीरे मुझे कॉपी पेन दिया उन्होंने और पेंसिल दिया, रबर दिया, और बराबर वो प्रोत्साहित करते थे। और इतना ही नहीं, जो भी हमारे यहाँ फर्नीचर वगैरह का काम भी होता था, लोहे का काम होता था, तो जब भी कोई आता था हमारे दुकान पर तो उसे दिखाते थे उन चित्रों को कि ये मेरा बेटा बनाया है, और मैं कहीं कोने से मैं सुन रहा होता हूँ तो वो सुन करके मेरे अंदर बहुत अच्छा लगता था। मैंने किसी बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए तो पिताजी हर रोज मुझे एक कॉपी देते थे और कहते थे यदि इसे भर दोगे सुंदर चित्रों से तो दो कॉपी खरीदने का पैसा दूंगा और फिर समोसे खाने के लिए पैसा दूंगा।
1: क्या बात है।
2: तो मैं एक कॉपी एक दिन में भर देता था, तब कॉपियां मोटी हुआ करती थी
1: जी,
2: 20-25 पन्ने की, और पिताजी पैसे देते थे और उससे मैं समोसे भी खरीदता था लेकिन कला की सामग्री भी खरीदता था, और प्रतिदिन मैं एक कॉपी भरता था। फिर पढ़ने लिखने तो मैं बाद में जाया।
1: स्मृति में आपके है कि आपकी आयु उस समय क्या होगी और क्या आपके मन में विचार चलता?
2: 5 वर्ष से कम आयु थी मुझे ऐसा लग रहा है
1: जी।
2: और मेरे पिताजी जब मैं बनाता था तो ऐसे पहले गणेश जी का चित्र बनाना शुरू किया था क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता था कि किसी मनुष्य के धड़ के ऊपर किसी हाथी का सिर है, और बहुत सुंदर वो लगता था, गणेश जी का एक नटखट सा स्वरूप, तो उसी से शुरुआत किया था। और धीरे धीरे कैलेंडर में जो भी चित्र दिखते थे, राम के, हनुमान के, वो सारे चित्र मैं बनाने का प्रयास करता था, और फिर वही चित्र मैं कॉपियों में बनाना शुरू किया और पिताजी उसे प्रोत्साहित करते थे।
1: शिक्षा की अगर बात करें सर, तो शिक्षण जो पठन पाठन है उस क्षेत्र में आप मतलब विशेषता किन सब चीजों को पढ़ाई करते थे?
2: देखिए, हमारे मऊ में, मैं मऊ कोपागंज का रहने वाला था
1: जी,
2: और बापू इंटर कॉलेज से पढ़ाई किया, सरकारी स्कूल है, तो तब तक कक्षा 1 से लेकर 12 तक हमारे यहाँ कला का कोई विषय नहीं हुआ करता था। आज तो बहुत ही बढ़िया है कि सभी स्कूलों में कला विषय अनिवार्य है। तब कला विषय किन्हीं किन्हीं स्कूलों में हुआ करता था, हमारे स्कूल में होता ही नहीं था, जिले में एकाध स्कूल में होता था। तो मैं 12वीं तक तो बायो से पढ़ा हूँ, और बायो मैं लिया इसीलिए कि मेरा चित्र बनाने का अभ्यास अच्छा
1: जी
2: था।
1: जी, उसमें ड्राइंग्स काफी करने को मिलता
2: जी
1: है।
2: जी जी, और मैं अपना फाइल बनाता था और 50-100 अपने साथ जुड़े विद्यार्थियों का जो बनवाता था उसका बनाता था, तो तब भी मेरा अभ्यास चलता रहता था। और मेरे साथ ईश्वर कृपा से, भाग्य ऐसा ईश्वर ने दिया था कि मैं कभी भी किसी विषय में फेल नहीं हुआ और अच्छे अंकों से पास हुआ, और अब तक फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ 12वीं तक, उसके बाद भी।
1: तो सर, जब आप चित्रकारी करते थे, सेल्स की पिक्चर्स बनाते होंगे आप, क्योंकि आपने बताया कि आप बायोलॉजी आपने जानबूझ कर लिया क्योंकि उसमें ड्राइंग करने का आपको अवसर मिलता था
2: जी,
1: तो बायोलॉजी में तमाम चित्रों को बनाते होंगे आप, सर बनाते थे जब, तो कभी आपके दोस्तों से या आपके जो शिक्षक थे उनसे कुछ विशिष्ट बताया गया कि आप बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं, ऐसा कुछ कोई स्मरण हो ऐसा?
2: नहीं, वो तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं बहुत तेज बनाता था और बच्चे जो फाइल बनवाते थे हमसे, जो हमारे साथ के मित्र थे, और लोग भी बनवाते थे, जिले के और अन्य स्कूलों से भी मैं चर्चा

0: हो गया था कि वहां एक लड़का है जो फाइल और चार्ट पे वो चित्र बना देता है, और बिना देखे मैं बना देता था,
1: जी
0: चाहे मेढक के अंतरांग का चित्र हो, चाहे काकरोच के अंतरांग का। ये सबसे कठिन होता था, डिसेक्शन के बाद जो अंदर का
1: जी
0: दृश्य होता था।
1: जी
0: और ऐसे सामान्य पशु पक्षी और जो सेल के चित्र होते थे
1: जी
0: पौधों के, वो तो मैं बना ही लेता था। तो जब भी टीचर पढ़ाते थे, बायो का हमारा क्लास चलता था, तो टीचर जब बनाते थे तो उन्हें समय लगता था बनाने में। तो किसी ने बताया कि ये सुनील बहुत तेज बनाता है सर, इससे बोल दीजिए। कभी कभी टीचर एक चित्र बनाने में पूरा उनका क्लास खत्म हो जाता था, फिर
1: जी
0: वो चित्र बोलते थे कि छोड़ दो, दूसरे दिन इस पे पढ़ाएंगे। तो कभी कभी कोई मिटा भी देता था। तो किसी ने बताया तो टीचर ने कहा कि फिर तुम बनाओ, मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं कोर्स तैयार करके आता था, आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं, और मैं वो चित्र बिना देखे ही बना देता था और उसका नाम भी लिख देता था। टीचर बड़े खुश होते थे और मुझे भी बड़ी खुशी मिलता था। लोग प्रोत्साहित करते थे, बड़ाई करते थे कि सुनील बहुत बढ़िया चित्र बनाता था। तो यही सब चीजें एक कला क्षेत्र में किसी कलाकार को आगे बढ़ाने में काम आती हैं।
1: तो सर, वहाँ से आपने कला की तरफ जो रुझान आया आपका, वो वहाँ से
0: जी,
1: किन-किन विषयों को लिया, क्या रूट बनाया आपने सर?
0: 12वीं के बाद, पहले से ही 8वीं में जब पढ़ता था तो दूर पढ़ाते थे, एक हमारे कस्बे में नहीं पढ़ाते थे, श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी, अब स्वर्गीय हैं, वो हमारे गुरु थे। तो वो शादी विवाह में दीवालों पे चित्र बनाते थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि इसको भी ले जाया कीजिए अपने साथ, इसका बड़ा मन लगता है चित्र बनाने में। तो मुझे साथ ले जाते थे कहीं भी, दीवालों पे चित्र बनाना हो, शादी विवाह में, किसी भी फंक्शन में। पहले लोग बनवाते भी थे, लेकिन 12वीं के बाद उन्होंने ही बताया कि इसी विषय का पढ़ाई होता है बनारस में। तब मुझे बड़ा खुशी हुआ, जबकि मेरे भैया चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं,
1: जी
0: बायो से मैं पढ़ा था, फर्स्ट डिवीजन पास भी था,
1: जी
0: लेकिन मेरी रुचि चूंकि इसमें थी, और मैंने अनायास ही फॉर्म मंगवा लिया और BFA का फॉर्म भरा, और BHU में मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद घर वाले कोई आपत्ति नहीं किए कि किस विषय में पढ़ने जा रहे हो। पिताजी तो ऐसे भी चाहते थे कि मैं आर्ट पढ़ूं,
1: जी
0: भैया केवल नहीं चाहते थे और परिवार में कुछ लोग और नहीं चाहते थे। लेकिन जब एडमिशन हो गया BHU में, तो BHU हमारे इधर बहुत नाम था कि BHU में जिसका एडमिशन हो जाता था वो कुछ कर लेता है जीवन में। तो ऐसा सोच के उन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं किया और मैंने फाइन आर्ट की पढ़ाई यहाँ से शुरू कर दिया था।
1: जी अपने क्लास के, अपने कक्षा के
0: जी
1: बोर्ड पर मेढक के चित्र बनाने वाला, सेल्स के चित्र बनाने वाला, किसे पता था कि वो प्रभु श्री राम लल्ला के उस मनमोहक बाल स्वरूप को एक चित्र उकेरेगा? हमें लगता है सर, बहुत जल्दी उस विषय पर आ जाना चाहिए।
0: जी जी
1: तो मैं चाहूँगा कि इस प्रसंग के बारे में आप स्वयं बताएं कि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर है, वहाँ पे जो बाल स्वरूप की जो मूर्ति लगी हुई है, उससे
0: जी
1: आपका
0: जी
1: प्रसंग कैसे जुड़ा हुआ है?
0: ये मूर्ति स्थापना से लगभग 2 वर्ष पहले की बात है। पूरे देश भर से चित्र मंगाए जा रहे थे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तरफ से,
1: जी
0: और सच्चिदानंद जोशी जी हमारे अग्रज हैं, हमें स्नेह करते हैं, उनको पता है कि मैं बचपन से राम जी का चित्र बनाता हूँ। तो उन्होंने ट्रस्ट को सुझाव दिया कि एक सुनील नाम के आर्टिस्ट हैं, उनको भी ये भेजना चाहिए चित्र बनाने के लिए। 85 चित्र आ चुके थे। तो
1: जी
0: माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी का फोन आया था कि ऐसा एक चित्र बनाना है आपको, हम लोग इसकी मूर्ति बनवाना चाहते हैं। कोई भी मूर्ति बनती है तो पहले उसका एक चित्र बनता है,
1: स्केच बनता है
0: हाँ,
1: जी।
0: जिसके आधार पे मूर्ति बनती है। हमने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने जो स्वरूप का वर्णन किया वो मेरे लिए बहुत बहुत ही कठिन था। उन्होंने बोलना शुरू किया कि राम की आयु 6 वर्ष की होगी और एक बाल सुलभ मुस्कान होगा उनके चेहरे पे। उसके साथ साथ ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि राम देवता थे तो देवत्व तो दिखना चाहिए, राम पुरुषोत्तम थे तो वो भी भाव दिखना चाहिए, राम भगवान थे, राम पुरुषोत्तम थे, आदर्शवादी थे। ये बहुत सारी चीजें उन्होंने बताना शुरू किया,
1: उनके पूरे व्यक्तित्व का चित्रण
0: पूरे
1: किया।
0: व्यक्तित्व का, और एक बाल सुलभ उस निश्चल मुस्कान में ये सारी चीजें कैसे दिखाया जाए
1: जी
0: कि ये पूरे विश्व का नेतृत्व किए राम। तो ऐसा नेतृत्व वाला चेहरा कैसे बनाया जाए, तो मेरे क्षमता से बाहर था। मैंने हामी तो भर दिया कि मैं बना के भेज रहा हूं, लेकिन जब से मैंने स्वीकार किया तब से मैं केवल ईश्वर की प्रार्थना करता था कि प्रभु आप बन जाइएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं सुबह स्नान करके मैं चित्र बनाने बैठा और एकाएक वो चित्र बन गया।

0: 1.5 घंटे लगे, और लोग पूछते हैं कि कुछ तो आश्चर्य होगा, आपने दर्शन पाया होगा ईश्वर का। तो निश्चित रूप से दर्शन तो नहीं, लेकिन बनाते समय मैं कहाँ था मुझे नहीं पता था। और जब भी मैं कोई चित्र बनाता हूँ तो रबर से मिटाता हूँ
1: जी
0: त्रुटियों को, लेकिन वो चित्र बनाने में मुझे कहीं भी रबर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो चित्र मेरे द्वारा जरूर बना होगा, लेकिन वो बनवा रहे थे खुद प्रभु श्री रामचंद्र जी। क्योंकि अक्सर मेरे साथ होता है कि 8-10 बार मैं मिटाता हूँ, लेकिन उस समय मुझे कोई जगह मिटाना ही नहीं पड़ा और चित्र अपने आप जैसे बन रहा हो ऐसा मुझे आभास हुआ। और चित्र सिलेक्ट हो गया भेजने के बाद, और जब ओरिजिनल चित्र मंगाया गया तो तीन चित्रकारों में मैं था, माने दो चित्रकार और भी थे। फिर
1: जी
0: वहाँ भी जूरी बैठी, गोविंद देव गिरी जी महाराज थे, माननीय चंपत राय जी थे, नृपेंद्र मिश्रा जी थे, और ऐसे 5-6 लोगों की टोली थी। बैठक हुआ और चित्र सेलेक्ट हुआ मूर्ति बनने के लिए, और फिर मूर्ति बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये ईश्वर की ही कृपा है।
1: तो सर, जिस समय चित्र आपके जूरी के सामने आया, उस समय आपसे कुछ मतलब पूछा गया कि
0: जी
1: किस,
0: जी
1: उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा।
0: असल में सबसे पूछा गया तीनों चित्रकारों से, मेरी भी बारी आई। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी कल्पना क्या थी, आप कैसे बनाए। तो मैं पहले यहीं पे मैंने बताया कि वास्तव में मेरा काल्पनिक चित्र नहीं है। राम कल्पना के थे नहीं, राम तो सबके हृदय में वास करते हैं शुरू से ही, सब लोग जानते हैं कि राम ऐसे थे। तो ये मेरे भाव चित्र है, मेरी भावना से निकला हुआ चित्र है। और जैसा आप लोगों का इंस्ट्रक्शन था कि अजान बाहु बनने चाहिए, उनके चेहरे में ये भाव आना चाहिए, तो वही सारी चीज़ें मैंने दिखाया है। इस बात पर वहाँ बैठे माननीय गोविंद देव गिरी महाराज जी थे तो मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे अंदर से आभास हुआ कि जरूर उनको मेरा चित्र पसंद आया है।
1: जी
0: और फिर हम तीनों लोगों को बाहर बैठा दिया गया, और थोड़ी देर बाद चंपत राय जी बाहर आए और उन्होंने बताया कि आपका चित्र जो है मूर्ति बनाने के लिए चयनित किया गया है कमेटी के द्वारा। तो ये प्रकरण था उसका।
1: कैसा आभास हुआ था उस समय?
0: देखिए, आभास तो यही कि जिस किसी बच्चे को कोई उसका मनचाहा चीज मिल जाए और अंदर से वो उछल पड़ेगा, वैसा ही मेरे साथ हुआ। और मैं प्रभु को बार बार धन्यवाद दिया कि वास्तव में ये बहुत ही अहम कार्य था, और मेरे लिए बड़े मेरे संतुष्टि की बात थी कि मैं बचपन से देवी देवताओं का ही चित्र बनाता रहा, और आज मुझे इस इतने बड़े मंदिर में राम जी के लिए वो स्केच बनाना पड़ा और वो चयनित भी हुआ। तो मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया, और अंदर से बस उसी बच्चे की तरह जिससे मनचाहा कोई खिलौना मिल जाए और खुश हो जाए।
1: आपके चित्र के हिसाब से जब सर मूर्ति बनकर के तैयार हो गई,
0: जी
1: तो मंदिर जाकर के देखना होगा उस मूर्ति को।
0: नहीं, क्योंकि बहुत गोपनीय तरीके से वो बनाया गया,
1: जी
0: और हम लोगों को भी बताया गया था उस समय कि जब तक मूर्ति स्थापना न हो जाए तब तक किसी भी प्रक्रिया का किसी से बातचीत नहीं करना है, न किसी मीडिया से, न किसी मित्र से। और जैसा कि पेपर में आया होगा उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने पत्नी तक को नहीं बताया था कि ये राम मंदिर के लिए मैंने चित्र बनाया है, तो किसी से भी नहीं बताया। और स्थापना के बाद ही मैंने बताया, और मीडिया में भी 22 को उद्घाटन हुआ,
1: जी
0: मैं वहीं वहाँ पे उपस्थित था। फिर वहाँ से आने के बाद 23 तारीख को मैंने मीडिया को बताया और 24 को पेपर में आया।
1: तो पहली बार सर जब रामलला की मूर्ति को आपने देखा, मन
0: जी
1: में सर क्या भाव आए? मैं उस भाव को जानना चाहता हूँ।
0: नहीं, जैसे ही मूर्ति मेरे सामने आई तो बस मैं समझ गया कि ईश्वर ने स्वरूप ले लिया है, और बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि स्थापना से कुछ दिन पहले ही किसी ने उसको फेसबुक वगैरह पे डाल दिया था, सोशल
1: जी
0: मीडिया पे डाल दिया था,
1: जी
0: तो हालांकि पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि वही मूर्ति है जो योगीराज जी ने बनाया है, लेकिन मूर्ति देखने के बाद बहुत ही संतुष्टि हुई कि ईश्वर ने जो रूप अपने लिए निर्धारित किया था वो उन्होंने ले लिया है, और बहुत ही प्रसन्नता हुई।
1: ये तो सर रामलला की बात हुई, निसंदेह ही इसमें आपका जो योगदान रहा है और उस योगदान को जो है पूरा विश्व जो है आज देख रहा है सर। इसके साथ साथ और अन्य कार्यों में भी आपने सर अपनी सहभागिता दिखाई है। अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो
0: जी
1: उसमें और क्या क्या कार्य आपने किया है सर, उसके बारे में बताएं, मैं
0: देखिए, इसके
1: श्रोताओं को।
0: बहुत पहले मैंने काशी के विश्वनाथ मंदिर

0: का जो दालान है,
1: जी
0: अभी तो बड़े दालान में वो चित्र लगा दिए गए हैं, रिलीफ चित्र है, उसके लिए भी हमने कुल काशी खंड पर आधारित सारे चित्र बनाए थे और उन चित्रों को रिलीफ मूर्ति में उसको उकेर करके काशी विश्वनाथ जी के दालान में लगाया गया है। तो उन चित्रों का कभी किसी ने चर्चा भी नहीं किया और वो चित्र लगे हुए हैं, बार बार मैं दर्शन करता हूँ। इसके अलावा उज्जैन में मैंने जो वहाँ का महालोक बन रहा है,
1: महाकाल मंदिर
0: महाकाल
1: जो
0: का
1: है
0: कॉरिडोर,
1: जी
0: तो वहाँ की मूर्तियों के लिए अभी हमने स्केच बनाए हैं, तो वो सारे मूर्ति भी वहाँ बन रहे हैं। और पेंटिंग का तो काम मैं लगातार कर रहा हूँ म्यूजियम इत्यादि के लिए।
1: तो सर मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि जब आप किसी चित्र को उकेरते हैं सर, तो मन में भाव क्या रखते हैं? कुछ खुद ब खुद भाव बनते चले जाते हैं या फिर आप कुछ पहले से प्रीप्लान्ड होकर के करते हैं एक चित्रकार होने के नाते सर बताएं।
0: देखिए, एक जब भी किसी चित्र को बनाने की जब बात आती है, अभी मैं 64 योगिनियों पे काम कर रहा हूँ, 64 चित्र बनाने हैं हमें, तो जब एक योगिनी माता के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो एक दृश्य सा उभर के आता है कि सर्पस्या देवी हैं, तो इनका स्वरूप क्या है, पुराणों में वर्णित है। और जैसे ही मैं उसको पढ़ता हूँ, वो सारा दृश्य अपने आप जो है सामने उभर के चला आता है। बस मेरा काम अपने अभ्यास के द्वारा कैनवस पर उकेर देना है। तो एक चित्र, एक छवि अपने आप बन जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं तो एक छवि बनती है, बस हमें कैनवस पे सजोना कैसे है, कैसे रखना है, बस ये हमें तय करना रहता
1: अच्छा, रामलला के
0: है।
1: स्वरूप के अलावा और अन्य मंदिरों में जो आपने बनाया है
0: जी
1: उसके अलावा सर आपकी कुछ ऐसी कृतियां रही हैं जिसको आपको लगा कि ये मेरी बहुत ही अच्छी कृति है और लोगों के बीच में शायद ये उतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है जितना और होना चाहिए था, कुछ इसके बारे
0: नहीं
1: में?
0: नहीं प्रचलित तो देखिए समाज में बहुत सारे चित्र मेरे हुए। रामनगर का रामलीला एक पूरा मैंने सीरीज बनाया और 50-60 चित्र बनाए और लगातार अभी बनाते जा रहा हूँ। और वो चित्र बहुत प्रसिद्धि पाया जब राम जी को कंधे पे उठा करके राम लक्ष्मण तीनों मूर्तियों को जब लेके आते हैं, उस दृश्य को मैंने बनाया और उस चित्र पर मुझे राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार भी मिला, ललित कला एकेडमी का। वो चित्र आज भी मेरे मन को बहुत भाता है और सबको भी बहुत पसंद आता है। और एक कलाकार ने ऐसा कहा था कि वास्तव में यदि आप स्वयं से संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के कोई चित्र बनाते हैं और उस चित्र को देख करके आप स्वयं बहुत प्रसन्न हैं, तो निश्चित रूप से समाज उसे पसंद करेगा। यदि आप ही तुष्ट नहीं है, आप ही प्रसन्न नहीं है, तो समाज से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आपको, समाज उसे पसंद करेगा।
1: सर एक सवाल मेरा और है यहाँ पे चित्रों से संबंधित ही। कई बार आपको सर ऐसा एहसास होता होगा किसी चित्र को बनाने के बाद कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है, और हो सकता है कि आपके सामने ही कई लोग बोल देते होंगे कि उतना अच्छा तो है नहीं है, या एक रिजेक्शन टाइप का इसको कहते हैं सर,
0: जी,
1: तो कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्या भाव मतलब कैसे इसे संभालते हैं आप?
0: नहीं
1: क्योंकि
0: ये
1: बहुत ही मुझे लगता है कि कलाकार सर बहुत ही सेंसिटिव होता है,
0: जी,
1: तो इसको कैसे संभालते हैं?
0: ये परिस्थितियां आती है, बहुत बार आती हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे ही सामने मेरे चित्रों को लोगों ने फाड़ दिए उससे असंतुष्ट होकर के। लेकिन ऐसी स्थिति में एक कलाकार जो साधक होता है अपने आप को साम्य करना भी जानता है। यदि वो साम्य नहीं कर पाता है तो उसकी साधना की ऊंचाई तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, वो चित्रकार आगे नहीं बढ़ पाएगा। और शायद यही कारण है कि बहुत सारे कलाकार काम करते हुए जब समाज उन्हें आलोचित कर देता है तो वहीं पे रुक जाते हैं, वहीं पे उनकी गाड़ी रुक जाती है, आगे बढ़ नहीं पाते। और मैं समाज के उन सभी कलाकारों से कहना चाहूंगा कि समाज में ऐसी परिस्थितियां बार बार आएंगी, लेकिन उसे प्रेरणा लीजिए कि कहां पे कि कोई हमें गलतियां बता रहा है
1: जी
0: और उसे सुधारने का प्रयास कीजिए। और आपको भी भान होना चाहिए कि जो समाज बता रहा है वो वास्तव में गलत है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, आपने कहानी सुना ही होगा कि एक चित्र किसी आर्टिस्ट ने चौराहे पे लगा दिया, गलती बताओ, तो पूरे चित्र पे गलतियों के लिए लाल कलम चल गए।
1: जी जी
0: जब कह दिया गया सुधार दो तो किसी ने नहीं छुआ।
1: जी
0: तो गलतियों को समझना स्वयं कलाकार को भी चाहिए कि हमने गलती की है कि नहीं। ऐसा चित्र मत बनाइए कि समाज ही उसको बताए कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया।
1: जी
0: तो एक साधक अपने बनाए गए कृतियों को खुद भी जानना चाहिए कि कि वो किस स्तर

0: का बनाया है। मैंने पहले भी बताया कि खुद तुष्ट होगा, खुद प्रसन्न होगा, तभी समाज उसे वो प्रशस्ति पत्र देगा कि आपने बहुत अच्छा चित्र बनाया।
1: तो सर, जैसे हम कलाकार कहते हैं उसे आप साधक कहते हैं। यहाँ पे मेरा प्रश्न सर अगला ये है, जैसे मैं कार्यालय में कार्य करता हूँ, और भी लोग जो है कहीं टीचर हैं, कहीं प्रोफेसर हैं, वो अक्सर बोलते हैं शाम के 5 बजते ही कि थक गया हूँ मैं। एक कलाकार थकता है क्या?
0: देखिए, यदि कोई भी काम यदि आप अपने रुचि से करते हैं, मन से करते हैं, हृदय से करते हैं, तो वो काम कभी आपको थकाता नहीं मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से कोई ऐसा श्रम साध्य काम है, कोई सामान उठाना है, रखना है, तो थक जरूर जाएगा, शरीर थक जाएगा, लेकिन मन उसको करने के लिए प्रेरणा देता रहेगा हमेशा। जैसे हम लोग कोई पेंटिंग बनाते हैं, सुबह से शाम तक उसे बनाते हैं, और चित्र पूर्ण नहीं हुआ, अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, या ऐसी परिस्थिति आई कि अब हम नहीं कर पाएंगे, तो वो तुरंत सुबह उठ करके मुझे करने की इच्छा होती है। इतनी ऊर्जा होती है कि कब मैं उस चित्र को पूर्ण कर दूं, तो उससे थकता नहीं है व्यक्ति, और उससे ऊर्जा मिलती है और आगे काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो जब भी कोई काम मन लगा के किया जाए ना, तो फिर उसमें थकान नहीं होती है।
1: अगला सवाल सर मेरा ये है कि भारत में अगर कला की बात करें, खास करके चित्रकला की बात करें, हम देखते हैं अक्सर छोटे बच्चों को, उनको कहा जाता है कि आप सीनरी बनाओ, तो बस वो दो पहाड़ और उसके बीच में सूर्य और जो तमाम चीज़ें हैं, झरना, और बना देते हैं। इसी चीज़ को लेकर के जो है बहुत ही फेमस आलोचक हैं वो कहते हैं कि भारत में क्रिएटिविटी जो है ये बचपन से ही मार दी जाती है उस बच्चे की। उसको बस ये बताया जाता है कि आप अगर सीनरी बनानी है तो दो पर्वत बना दो, सूरज बना दो। तो आप सर ये इसको कैसे देखते हैं?
0: देखिए, बचपन में वो उन्होंने कुछ बातें सच भी कही, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं और कला का विषय पढ़ते हैं, तो मैंने पहले बताया ना अपने जीवन में
1: जी
0: कि मैं जब पढ़ने नहीं गया तभी से चित्र बनाता था, और कहीं से देखा और चित्र बनाना शुरू कर दिया। तो देख के ही बनाता है बच्चा। जब वो बचपन में किसी स्कूल में गया होगा, कला की पुस्तक में लिखा होगा कि ये दृश्य चित्रण है, और दृश्य चित्रण में वो किताब में बना हुआ मिला सूर्योदय का दृश्य, पहाड़ है, झरना गिर रहा है, नदी है, बत्तख उसमें तैर रहे हैं, एक किनारे में कोई छोटी सी झोपड़ी है, वहां से रास्ता निकल रहा है। तो ये दृश्य जो है लगभग कला की सभी किताबों में दृश्य चित्रण के रूप में होता है, और वो हर बालक के मन में फीड हो जाता है।
1: जी,
0: इसी वजह से यदि उसे वो दृश्य न दिया जाता तो स्वतंत्र हो जाता कुछ भी बनाने के लिए, लेकिन वो दृश्य दे दिया गया तो वो बध गया एक तरह से। लेकिन वो केवल उनकी जो बात थी, जिनकी बात बता रहे हैं, जिन्होंने कहा आलोचक ने, वो किसी एक सामान्य स्तर तक है। हम लोग जब फाइन आर्ट की पढ़ाई शुरू करते हैं, मैं खुद अभी अध्यापक हूं, जब पढ़ता था
1: जी
0: तब से भी हमारे अध्यापक ऐसा कोई चित्र नहीं दिए दृश्य चित्रण के रूप में।
1: जी
0: उन्होंने हमेशा प्रेरित किया कि तुम नेचर में जाओ, प्रकृति में जाओ, और पेड़ पौधे देख करके बनाओ, उसका चित्रण करो, घाट के चित्र बनाओ। ऐसा उन्होंने हमेशा प्रेरित किया, और उस समय से दृश्य चित्रण का एक स्वरूप ही चेंज हो गया। फिर वो पहाड़ नदी उससे हट गया व्यक्ति।
1: चलते चलते ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई गार्जियन है, कोई माता पिता है, वो अगर देखते हैं उस अपने बच्चे में चित्रकला से संबंधित कुछ देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं, तो वो क्या करें कि उनका ये इंटरेस्ट उस बच्चे के भविष्य को उज्जवल करें?
0: देखिए, मैं तो कहूँगा कि
1: जी
0: वास्तव में कलाएं जो भी विषय हैं, जैसे संगीत हो, चित्रकला हो, चाहे डांस हो, ये प्रकृति प्रदत्त कलाएं होती है। वो पूर्व जन्म से व्यक्ति लेके आता है। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं, बहुत अच्छा गाने लगते हैं, बस हमें जरूरत होती है उन्हें प्रोत्साहित करने की। आज हमारे पिताजी प्रोत्साहित न करते तो मैं चित्रकला का चौबी नहीं जानता, कुछ भी नहीं बना पाता, किसी दूसरे विषय में भटकता, और मेरा जीवन कहाँ होता मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे पिताजी ने प्रोत्साहित किया और चित्र बनाने के लिए इतना प्रेरित किया कि मैं इसी को अपना पूरा जीवन यापन का साधन भी बना लिया। तो मैं तो बस सभी गार्जियन से यही आग्रह करूँगा कि यह कलाएं प्रकृति से दी हुई होती है, ईश्वरीय होती हैं, बस हमें केवल प्रोत्साहित करना है उन्हें। कई बार क्या

0: होता है कि गार्जियन कहते हैं तुम पढ़ते नहीं हो, दिन भर यही बनाते रहते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि बालक चित्र बनाता है तो वो अन्य विषय में भी उसकी रुचि उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि ये एकाग्रचित करने वाला विषय होता है। अन्य विषयों में उसकी रुचि बढ़ेगी और उसमें भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी उदाहरण हूँ। मैं कभी भी सेकेंड डिवीजन नहीं पास हुआ, हमेशा फर्स्ट डिवीजन पास हुआ।
1: जी
0: हम मेरा अन्य विषय भी उतना ही अच्छा था, केवल चित्र बनाने की वजह से। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि कभी भी उन्हें इस विषय के लिए डांटे नहीं, फटकारे नहीं, प्रोत्साहित करें। निश्चित रूप से वो बालक उस कला में आगे बढ़ेगा और उसको बहुत आगे बढ़ेगा, पूरे देश का भी नाम रोशन करेगा।
1: डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने जीवन के उन तमाम संघर्षों को, अपने जीवन में बनाई गई उन तमाम कृतियों के बारे में इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, श्रोताओं से मिलने का अवसर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपसे मिलिए।

0: रोशन करेगा। डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने जीवन के उन तमाम संघर्षों को, अपने जीवन में बनाई गई उन तमाम कृतियों के बारे में इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, श्रोताओं से मिलने का अवसर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपसे मिलिए।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

0: दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश अब नए अवतार में, यानी फिर एक बार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। जी हाँ, डीडी फ्री डिश में अब हैं 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, 51 एजुकेशनल यानी शैक्षिक चैनल्स, साथ ही 48 रेडियो चैनल्स भी। बस एक बार सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई मासिक या अतिरिक्त खर्च नहीं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाइए, डीडी फ्री डिश घर लाइए। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर डीडी फ्री डिश का नया अवतार, यानी मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में पंडित कृष्णाराम चौधरी और साथी का शहनाई वादन। राग है केदार।

अभी आप सुन रहे थे पंडित कृष्णराम चौधरी का शहनाई पर बजाया राग केदार। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
1: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV Omorfi पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर $89 और $0.74 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में